मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन

है शनिवार, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 59 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात

0: भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, खेती और किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज जायद में हरी खाद उत्पादन विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी।
3: प्रभात। जैसे जैसे हमारी खेती आधुनिक हो रही है, वैसे वैसे

0: कुछ नई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। मसलन फसल उत्पादन में धान गेहूं आधारित फसल चक्र बहुतायत से लोग अपनाते हैं और अपनाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें जितनी बड़ी मात्रा में शुरू हो गया है अब पहले की अपेक्षा, उसका मूल कारण यह है कि पहले जो सूक्ष्म पोषक तत्व या जीवांश हमारी मिट्टी में हुआ करते थे वह धीरे धीरे इन रसायनों के प्रयोग के कारण खत्म होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता वही पुरानी बनती है कि खाद की आपूर्ति के लिए हमें गोबर की खाद या फिर हरी खाद का प्रयोग करने की स्थिति उत्पन्न करनी होगी। ढांचा हरी खाद के रूप में बहुत पहले से उगाया जा रहा है और आज और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। कारण यह है कि जो भी रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं उनके कुप्रभाव को समाप्त करने, फसल को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आगे आने वाली फसल के लिए भूमि की दशा को सुधार करने में यह बहुत बड़ा सहयोग देता है। इसलिए ढांचा की हरी खाद जरूर आप अपनाएं। प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यह उपलब्ध करा देता है। ढांचे के हरे पौधे में लगभग आप मान के चलिए कि आधा प्रतिशत से लेकर 0.8% तक नाइट्रोजन, 0.8% फास्फोरस और 0.6% के आसपास पोटाश पाया जाता है। भूमि की भौतिक रासायनिक जैविक स्थिति में तो सुधार होता ही होता है। ढांचा में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से सोडियम लवण हटाकर भूमि की क्षारीयता कम करती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाएगी और भूमि संरक्षण में इससे सहायता मिलेगी। भूमि एवं भूमि की तैयारी करनी होगी इसके उत्पादन के लिए, कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य तरीका यही है कि ढांचा की खेती विविध जलवायु दशाओं में लगभग सभी भूमियों में चिकनी, बालू, रेतीली, कम या अधिक पीएच वाली भूमि में आसानी से की जा सकती है। लेकिन बढ़वार की दृष्टि से बलुई दोमट से दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। क्षारीयता के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण इसे 9.5 से 10 पीएच पर भी उगाया जा सकता है। बुआई से पूर्व भूमि को पलेवा कर लेना बेहतर माना गया है। बुआई का जो समय है इसका धान की रोपाई से 45 दिन का, तो जब भी आप लक्ष्य बनाए हैं धान की अपनी रोपाई का उससे 45 दिन पहले इसकी बुआई करें, यानी ढांचा बोएं खेत में। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम लीजिएगा, अगर ऊसर भूमि है तो उसमें 60 किलोग्राम। बीज शोधन भी कर लेंगे तो अच्छी स्थिति होगी। बीज को रात भर पानी में भिगोना भी एक बेहतर स्थिति पैदा करता है। बीज छिटक कर सुबह या फिर शाम को बोएं, जब भी एक सामान्य सी स्थिति बने। हाँ, पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त नमी आवश्यक है, इसलिए वर्षा शुरू होने के पूर्व 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता अमूमन पड़ ही जाती है। सामान्यतः अच्छी भूमियों में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु बहुत कमजोर भूमि में बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है और यही वृद्धि हमें हरी खाद प्राप्त करने में सहयोग करती है। फसल को मिट्टी में पलटना भी आवश्यक होता है। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है अमूमन, तब पलटने वाले हल से इसे पलट दिया जाता है। यदि धान की रोपाई करना हो तो इसके 3 से 4 दिन पूर्व पाटा लगाकर फसल को गिराएं और मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके भूमि में 15 सेंटीमीटर गहराई में दबा दें, 15 सेंटीमीटर पानी भर दें। यदि धान की फसल न भी लेना हो तो भी हरी खाद बनाने के लिए ढांचा की बुआई करके उसे जमीन में संरक्षित कर सकते हैं। धान के खेत में ढांचा की हरी खाद प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाएगी। अब आप इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कितनी यूरिया की बचत आप कर पाएंगे। इसलिए हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि इसकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने तथा भौतिक रासायनिक एवं जैविक स्थिति में सुधार के लिए जब हरे तथा बिना सड़े पौधों के किसी भाग या संपूर्ण पौधे को खेत में पलटकर सड़ा दिया जाता है तो इसे हरी खाद देना ही कहते हैं। हरी खाद के लिए कई फसलों का तो प्रयोग करते ही आप ढांचा के अतिरिक्त सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं, यह भी बेहतर होती है। वैसे जो जायद में मूंग या उड़द बोई गई है उसको भी आप खेत में पलटकर हरी खाद बना सकते हैं।
1: जायद में हरी खाद उत्पादन, इस विषय पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

0: और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुविचार। आज का सुविचार है धर्म की शरण।
1: धर्म को परिभाषित करना कठिन कार्य है। इसको समझना समुद्र में अनाड़ी की भांति तलहटी में पहुंचने जैसा है। विश्व इसी लघु शब्द के कारण नाव की तरह टकमगा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म एक शक्तिपुंज है। इस ढाई अक्षर के अर्थ में मानवता उलझ गई है। तभी तो अधर्म सभी जगह शीर्ष में दिखता है। अन्याय अत्याचार का बोलबाला, भ्रष्टाचार शिष्टाचार का गुरु बनने का प्रयास कर रहा है। मानवता कोने में सिसक रही है और दानवता उच्च पदों पर झूठा आमोद बना रही है। मैं एक दिन एक संत के श्री चरणों के पास ही बैठा था। दोनों शांत थे। गंदा नाला गंगा में मिलने का प्रयास करता है, तभी श्रीमुख खुला। ईश्वर न्याय नहीं करता, इतना कहकर भी चुप हो गए। मन को एक झटका सा लगा। प्राण ने चेतना से पूछा, जिनकी सभी वासनाएं शांत हैं, आत्मा आत्मा में रमण कर रही है, आनंद सागर जिनको ओत प्रोत किए है, जिनकी ये वाणी कि ईश्वर न्याय नहीं करता, काफी समय तक संत महाराज मौन रहे। मेरा मन उत्तर सुनने को आतुर था। मैं पुनः सोच में डूब गया। चतुर्दिश अन्याय का राज्य है। मानवता दानवता की गुलाम बनी हुई है। शिक्षा ने विद्या का स्थान ले लिया है। परमार्थ पुस्तकों में बंद है, जिसको धीरे धीरे दीमक खाकर समाप्त कर रही है। ऐसे में भगवान की तरफ ही तो न्याय की आशा है। मेरे मन की अकुलाहट को पढ़कर उनकी वाणी खुली। ईश्वर न्याय नहीं दया करता है। अगर वो न्याय करे तो हमें दंड ही देगा। अपराधी को न्यायाधीश दंड ही देता है, ना कि पुरस्कार। जीव रात दिन अपराध ही करता है, परंतु परमात्मा दया बरसाकर उसका उद्धार ही करता है। धर्म धारणा का विषय है। धर्म वाह आडंबर और प्रदर्शन की स्थिति नहीं है। मन बुद्धि चिंता अहंकार के कारण शरीर की यात्रा में सारथी बनकर धर्म सर्वोच्च सत्ता अथवा आनंद सत्ता में विलय कराकर स्वयं विलीन हो जाता है। वही धर्म है। वास्तविक रूप में धर्म बाहर तभी दर्शित होता है जब अंदर से उसकी झांकी बाहर छलकने लगे। सद्गुणी और पवित्रता का अंकुरण अंतःकरण में फूटने लगे, तभी धर्म दया प्रेम कर्तव्य भावना में समाहित होकर दूसरों को सुख संतुष्टि की अनुभूति कराता है। वस्तुतः धर्म उन्माद का यही कारण प्रतीत होता है कि धर्म का प्रवेश अंदर नहीं हो पाता, बाहर मात्र उसका स्वांग सा प्रतीत होता है। अंतःकरण में सत्य का नहीं बल्कि मोह और लोभ का राज्य रहता है। यही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में उथल पुथल का मुख्य कारण है। धर्म में सृजन है, विनाश नहीं। धर्म में दया है, क्रूरता नहीं। धर्म में शांति है, अशांति नहीं। धर्म में क्षमा है, पशुता नहीं। धर्म धारणा की प्रथम शिक्षा परिवार से ही मिलती है। धर्म की अंतःकरण की यात्रा सद्गुरु के चरणों में बैठकर प्रारंभ की जाती है। जीव जहाँ से आया है वहाँ पहुँचा देने वाली सत्ता का नाम गुरु है। जीव परमात्मा का पुत्र है। शिष्य इन्हीं सद्गुरु के चरणों को पकड़कर बैठ जाता है, तभी धर्म का रहस्य खुलना शुरू हो जाता है। यही चरण कमल तीनों शरीरों पंचकोशों की यात्रा कराते हुए सच्चिदानंद के सागर में विलय करा देते हैं। फिर न धर्म का पता रहता है, न धारण करने वाले का। केवल एक तत्व शेष रहता है, वो है आनंद। हिंदू मंदिर में दीपक, मुस्लिम मस्जिद में अगरबत्ती, ईसाई गिरजाघर में मोमबत्ती और पारसी अग्नि जला करके ईश्वर की आराधना करते हैं। भाव यह है कि सभी एक परम तत्व की साधना में रत हैं। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और चैतन्य स्वरूप हैं। आइए ऐसे धर्म की शरण में चलें। धर्मम शरणम गच्छामि।
0: राकेश खरे के स्वर में धर्म की शरण, ये था आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:15 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

हे माँ, हम अज्ञानियों को आपकी अपार ममता का अभी तक कोई ज्ञान ही नहीं था। हम तो यूं ही प्रेम और ममता की खोज में भटकते रहे हैं। अब तो मेरी यही लगन है कि अपनी माता की भक्ति में लीन हो जाऊं, उनकी ममता को पालूं।

प्रभु श्री कृष्ण, जिनको मीरा मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं, उनके जीवन में प्रभु के सिवा और कोई नहीं। हर समय उन्हीं की पूजा करती, उन्हीं की आस्था में अपना समय व्यतीत करती मीरा प्रभु के मनमोहक रूप का गुणगान करते हुए कुछ यूं अपनी बात उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, चाहे सारा संसार मेरा साथ छोड़ दे, परंतु आप मेरा साथ मत छोड़ना। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है।

हे प्रभु, हमारा जीवन तो बहते पानी के समान है। अगर रास्ते में किसी को शीतलता दे पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। आइए अपने जीवन को जनहित के काम में लगा दें, क्योंकि जो समय व्यर्थ चला जाता है वो तो कभी वापस लौट कर नहीं आता ना।

हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी माया अपरंपार है, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपको अपने मन मंदिर में बसाकर पूजा करना है।

माता वैष्णवी की ममता हम सभी भक्तों पर है। माता की ममता मई छाया में आकर हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जपते हैं माता का पावन नाम और दूर करें अपने सारे कष्ट।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय पाठ।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: जयराम की स्वरों में ये था आज का रामचरितमानस का संगीतमय प्रसंग। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार।

0: विकासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुःसप्ततिसहस्राधिकैकलक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अनार के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है एक ऐसा फल जिसे न केवल अपने खूबसूरत रंग और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी इसे खास बनाते हैं, ये है अनार। अनार को अक्सर फलों का रत्न कहा जाता है और ये नाम इसके पोषण और गुणों की वजह से ही मिला है। इसके छोटे छोटे लाल दाने न केवल खाने में स्वादिष्ट होते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अनमोल हैं। अनार का सेवन भारत में प्राचीन काल से ही औषधीय गुणों के लिए किया जाता रहा है। ये आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि मानी जाती है जो खून बढ़ाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। अनार में मौजूद आयरन खून की कमी को दूर करने का सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय है। ये हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर करता है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए अनार बेहद फायदेमंद है। पाचन तंत्र के लिए भी अनार बहुत उपयोगी है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। अनार का रस पेट की जलन को शांत करता है और गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत दिलाता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, उनके लिए अनार एक वरदान की तरह है। अनार का एक और बड़ा लाभ है इसकी इम्यूनिटी को मजबूत करने की क्षमता। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अनार का नियमित सेवन सर्दी खांसी और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव करता है। ये शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। अनार का दिल के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स दिल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और हृदय को स्वस्थ रखते हैं। दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए अनार का सेवन एक बेहतरीन विकल्प है। त्वचा के लिए अनार किसी जादू से कम नहीं है। ये त्वचा को नमी और पोषण प्रदान करता है। अनार का रस त्वचा को साफ और चमकदार बनाता है। ये झुर्रियों को कम करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करता है। इसके अलावा अनार का तेल भी त्वचा की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता है। बालों के लिए अनार जड़ों को मजबूत करता है और उन्हें घना और चमकदार बनाता है। अनार वजन घटाने में भी मददगार है। ये लो कैलोरी फल है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और भूख को नियंत्रित करता है। जिन लोगों को वजन घटाने की चिंता है उनके लिए अनार का जूस या इसके दान

0: का सेवन एक स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर विकल्प हो सकता है। अनार का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है। इसे सीधे फल के रूप में खाया जा सकता है, इसका रस निकाला जा सकता है या इसे सलाद के रूप में शामिल किया जा सकता है। अनार का मुरब्बा और चटनी भी बेहद स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। हालांकि अनार का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन कुछ लोगों को पेट में भारीपन महसूस करा सकता है, लेकिन सही मात्रा में इसका उपयोग आपके शरीर के लिए अनगिनत लाभ प्रदान कर सकता है। श्रोताओं, अनार केवल एक फल नहीं है, ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। इसके छोटे छोटे दाने सेहत, स्वाद और ताजगी का संगम है। इसे अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं और इसके गुणकारी लाभों का आनंद उठाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अनार, इसके बारे में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी हमें जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। और श्रोताओं, अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से, और रात्रि 9:30 का समय रहेगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से। इसमें आज आप सुनेंगे संत कबीर नगर और झांसी जिलों की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी गुफ्तगु होगी। और आज के मेहमान होंगे अतिया बी और समुनदेशिती होगी सैयद मोहम्मद उमेर की। आज सुबह नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:31 से। विश्व आलू दिवस, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे सनई ढेंचा की उन्नत खेती, इस विषय पर डॉक्टर देवेश पाठक की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 से आज आप आनंद लेंगे सीमा वर्मा एवं डॉक्टर विजय लक्ष्मी के युगल स्वरों में गाए अवधी लोकगीतों का। और इसी कार्यक्रम में कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे इन्हीं लोक गायिकाओं को। खेल युवा तरंग, युवा साथियों का यह दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी विश्व आलू दिवस पर।

नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का, जिसमें आज विकास समाचार के साथ साथ विमर्श क्रम में आज आशीष जानकारी देंगे व्यवसाय योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण उद्यमी अनुभव इस विषय पर। लोक आयतन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज चर्चा होगी बिजली की बचत और बढ़त के बारे में। साथ

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे दिन में 11 बजे से शाम 6:50 पर। खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे गन्ने की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन विषय पर डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह की भेंट वार्ता, और इस विषय पर आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में चर्चा भी होगी हमारे इसी कार्यक्रम में। शाम अवध में फिल्मी गीतों का लुत्फ आप उठाएंगे शाम 7:43 से। रात्रि 8:10 से कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे स्वाति रिजवी के गायी गजलों का। तो ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा। नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन, हमारे भोजन, हमारे किसानों और हमारी खाद्य सुरक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है विश्व आलू दिवस।
1: तुम हो यार आलू।

0: दोस्तों, हर वर्ष 30 मई को विश्व आलू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसल के महत्व, उसके पोषण मूल्य और कृषि क्षेत्र में उसके योगदान के प्रति जागरूक करना है।
1: ना तुम हो यार आलू, ना हम है यार गोभी।
0: दिखने में एकदम साधारण सा आलू वास्तव में मानव जीवन के लिए अत्यंत ही उपयोगी फसल है। दुनिया के लगभग हर देश में इसका उपयोग किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। जी हाँ, भारत में तो आलू लगभग हर रसोई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। चाहे सब्जी हो, पराठा हो, चाट हो, पकौड़ी हो या फिर कोई अन्य व्यंजन, आलू हर स्वाद में आसानी से घुल मिल जाता है।

आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं और यही कारण है कि इसे एक पौष्टिक और उपयोगी खाद्य पदार्थ माना जाता है। दोस्तों, आलू को गरीबों का मित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कम लागत में अधिक पोषण देने वाली फसल है। जी हाँ, ये आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली फसल है और हर वर्ग के लोग इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और आलू हर रसोई घर में मिल ही जाता है।

और दोस्तों आपको बता दें कि भारत विश्व के सबसे बड़े आलू उत्पादक देशों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर इसकी खेती की जाती है। ये फसल केवल भोजन का साधन ही नहीं बल्कि लाखों किसानों की आजीविका का आधार भी है। आज के समय में जब दुनिया खाद्य संकट, महंगाई और पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब आलू जैसी फसलें लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक भी आलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि खेतों में पैदा होने वाला हर अन्न किसानों के लिए मेहनत और प्रकृति के आशीर्वाद का परिणाम होता है। जब हम भोजन की बर्बादी करते हैं, तब हम केवल अन्न ही नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और प्रकृति के संसाधनों का भी अनादर करते हैं। आज आधुनिक जीवन शैली में लोग फास्ट फूड और बाहरी खान पान की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आलू अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। उन खान पान का भी हिस्सा है आलू जो हम बाहर खाते हैं या फिर अपने घर में बनाते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोगों के भोजन में आलू किसी न किसी रूप में अवश्य शामिल रहता है। ये उसकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है।

विश्व आलू दिवस हमें ये संदेश देता है कि साधारण दिखाई देने वाली चीजें भी जीवन में असाधारण महत्व रखती हैं। जी हाँ, आलू जैसी फसलें केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि समाज की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाती है। दोस्तों, हमें अपने किसानों का सम्मान करना चाहिए और कृषि के महत्व को समझना चाहिए। यदि किसान समृद्ध होंगे तभी देश मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही हमें पौष्टिक भोजन अपनाने और भोजन की बर्बादी रोकने का भी संकल्प लेना चाहिए। अंत में बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगी कि अन्न केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार है और किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र की समृद्धि के सच्चे निर्माता हैं। आइए हम सभी कृषि किसानों और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझें और स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के कार्यक्रम विविधा से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।

0: ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को

0: रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल 2 पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
4: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
5: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गाँव विकसित होंगे।
2: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की

0: पीठ ने टीईटी को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टीईटी पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
0: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन

0: करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 7:31 हुए हैं। अब से बस थोड़ी देर में हम लेकर हाजिर होंगे ज्ञान, मनोरंजन और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा कार्यक्रम आज सुबह।

0: आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण आप सुन रहे हैं हमारी केंद्र से, और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और आज सुबह कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं हर मंगलवार और शनिवार सुबह 7:31 से। तो आइए शुरू करते हैं नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम आज सुबह। नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह की सुनहरी किरणों और ताजी उम्मीदों के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का विशेष कार्यक्रम आज सुबह। और आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही।
1: जी हाँ, और आपके साथ मैं भी हूँ लवी सिन्हा। स्वीकार करें हम दोनों का
0: नमस्कार।
1: और साथ ही हम आपका स्वागत करते हैं आपके उस कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं आज सुबह। तो समय हो चुका है सीमा, और जब समय हो चुका होता है तो हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं,
0: बिल्कुल
1: और काम के आगे बढ़ने के साथ ही हमारे जो उद्देश्य होता है हमारे काम का उसको भी बताते हैं, और कैसे हम शुरुआत करते हैं आइए जानते हैं कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल। देखिए लवी, हर नया दिन अपने साथ कुछ नया सीखने, जानने और समझने का अवसर लेकर आती है ना, और इसी उद्देश्य के साथ अगले कुछ समय तक हम रहेंगे आपके साथ, बात करेंगे विशेष दिवसों की, इतिहास की रोचक घटनाओं की, मौसम के हाल की, और साथ ही सुनेंगे आपकी पसंद के प्यारे प्यारे गीत।
1: जी, तो अब प्यारा सा गीत आप कह रही हैं, तो हमें लगता है कि पहले सुविचार हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए सकारात्मक सोच और मीठी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं आज की सुहानी प्रस्तुति की, और शुरुआत करते हैं एक सुविचार से।

0: तो आज का सुविचार है, अन्न का सम्मान और किसान का आदर एक समृद्ध समाज की पहचान है। वास्तव में देखिए ना लवी, हमारे जीवन का आधार अन्न ही तो है ना, और अन्नदाता किसान हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ना।
1: जी बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, हमें इसका आधार ये भी समझना है कि जो अन्न उगाया जाता है उस धरती माता की कोख से निकला हुआ जो अन्न है वो कितना कीमती होता है, और उस पर परिश्रम करने वाला जो हमारा कृषक है वो भी बहुत ही मेहनत करता है। तो हर एक अन्न के महत्ता को समझना चाहिए और साथ ही उसकी कीमत को न सिर्फ समझना चाहिए बल्कि सम्मान भी देना चाहिए, यानी कि अन्न की बर्बादी ना होने पाए इसका खास ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए हमें भोजन के महत्ता को तो समझना ही चाहिए, उसकी बर्बादी से भी बिल्कुल बचना चाहिए, है ना।
1: जी
0: तो चलिए, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है लवी, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने श्रोताओं को एक गीत से, मधुर गीत से उनका मन मोह ले।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ कहना है और मुझे लगता है आप भी बहुत कुछ कहना
0: कहना
1: चाहती हैं
0: चाहती
1: मुझसे, लेकिन क्या कहना चाहती हैं चलिए शुरुआत करते हैं।

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इजाजत है।

0: जी हाँ, ये जो फिल्म है, मुझे कुछ तुमसे है कहना इस गीत के लिए। जो फिल्म है ये है हद कर दी आपने, और ये एक काफ़ी लोकप्रिय गीत है सन 2000 में आई फिल्म का, जो कि आनंद राज आनंद ने इसको संगीतबद्ध किया और रुत नारायण और विभा शर्मा ने अपनी आवाज़ दी। बिल्कुल, अभी हमें भी अपने श्रोताओं से बहुत कुछ कहना
1: जी,
0: है ना? और जब बात कही जाए, कहना है, तो फिर शुरू कर दिया जाए। इंतजार किस बात का?
1: बिल्कुल, हम तो बैठे ही हैं कहने सुनने के लिए, क्यों?
0: या और देखिए ना, आज बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तो जब बातें होती हैं आज की महत्ता की, आज की महत्वपूर्ण बातों की, तो क्यों ना हम शुरुआत करते हैं आज के उस दिन की, यानी कि आज जो खास बात है वो है विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस की।
1: जी, और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य लोगों को तंत्रिका तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना है। और लवी, देखिए, आज विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस के उपलक्ष्य में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: जी, तो
1: तो
0: आइए सुनते हैं।
1: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं इस संबंध में KGMU के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से ये विशेष वार्ता। प्रस्तुत करता है डॉक्टर रमनप्रीत सिंह।

आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज कुमार, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज आपके समक्ष मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी के संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें कि दिमाग की जो नसें होती हैं उनमें हमारे ही जो प्रतिरोधक सेल्स होते हैं, जो हमारी शरीर को इम्यूनिटी देते हैं, वो हमारे ही ब्रेन के सेल्स को, न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगते हैं। इस बीमारी के जो लक्षण हैं उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर किसी मरीज को आँखों की रोशनी में अचानक कमी आ जाए, एक आँख या दोनों आँखों में, या किसी मरीज को हाथ या पैर में लकवे जैसे संभावना आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, या हाथ या पैर दोनों ही कमजोर हो जाएं जिससे कि मरीज बिस्तर पे हो जाए, पेशाब से संबंधित समस्या आ जाए, अचानक बोलने में लड़खड़ाहट या चक्कर जैसा आना, जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। यह बीमारी 20 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोगों पे, महिलाओं में ज़्यादा होती है, इसलिए इस बीमारी को जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन लक्षणों को गंभीरता से लेते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी जाँच की जाए और उचित इलाज किया जाए। तो जांचों में ये बीमारी के लिए लक्षणों के हिसाब से या तो ब्रेन की MRI

0: एनजीएमआरआई की जाती है, पानी की जांच, सीएसएफ की जांच की जाती है, आंखों की जांच की जाती है, और अगर ये बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस निकलती है तो उसका इलाज भी किया जाता है। इस बीमारी में ये बहुत ज़रूरी है कि इलाज निरंतर हो, समय से हो और एक डॉक्टर के देखरेख में हो, क्योंकि ये बीमारी एक बार में सही होने वाली नहीं है। ये शरीर पे, दिमाग पे बार बार इसका प्रभाव पड़ेगा और जितनी बार इसका अटैक आएगा उतना ही डैमेज आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ये बीमारी ऐसी है जिसमें इलाज भी करना जरूरी है, इलाज में पैसे भी खर्च होते हैं और जांचों में भी खर्च होते हैं, और बीमारी भी लंबे समय तक चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं मरीज के संबंधित लोगों को, परिवार वालों को फाइनेंशियल भी इसका बर्डन होता है और बीमारी से मानसिक तनाव भी होता है। इस बीमारी को अगर हम लोग देखें तो हमें एक सपोर्ट, फाइनेंशियल और सोशल सपोर्ट की भी इसमें ज़रूरत रहेगी, जिसमें मरीज को उचित देखभाल मिलता रहे। ये बीमारी का अलग से एक क्लिनिक चलती भी है न्यूरोलॉजी विभाग में, जिसमें भी मरीज देख के और इलाज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बीमारी पे विजय पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका सही समय पे जांच हो और निरंतर इलाज हो, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें लंबे समय तक इलाज होता है और मरीज के दिमाग पे ही इसका डैमेज होता है, तो कई बार मरीज डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि वो सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसमें जब ज़रूरत पड़ती है तो साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली जाती है, मरीज को भी काउंसिल किया जाता है, परिवार वालों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार द्वारा, अस्पताल द्वारा भी दिया जाता है। तो बीमारी पे विजय पाने के लिए, बीमारी को सही से समझने के लिए और उसका इलाज करने के लिए एक मानसिक सहयोग भी प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता रहती है, जो कि मरीज के सही होने में एक मुख्य भूमिका निभाता। आप सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, देखिए, विश्व मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस विषय पर अभी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी केजीएमयू डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जी ने। प्रस्तुतकर्ता थी रमन प्रीत सिंह।
2: जी हाँ, बिल्कुल। और सीमा, हमें लगता है कि हम बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी जो हमारी मानसिक परेशानियां भी होती हैं और मानसिक बीमारियां होती हैं, तो इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमेशा सावधानी भी बरतना चाहिए, क्योंकि हम इसको पहचानने के लिए बस इसके लक्षणों पर ही इसको पहचान सकते हैं। और बहुत ही अच्छी जानकारी तो आपने सुनवाई ही, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आज के उस महत्वपूर्ण दिवस के और भी बातों की।
1: जी
2: तो चलिए हम महत्वपूर्ण बातों की ओर चलते हैं और जानते हैं आज की ताज़ा खबर।
1: जी

0: मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया।
1: जी हाँ, आज की ताज़ा खबर लेकर के आ गए हैं। और ताज़ा खबर में देखिए, जब बात करते हैं ताज़ा खबर देने वाला जो हमारा न्यूज़पेपर जो होता है, ये बहुत ही खास होता है सुबह के साथ। और साथ ही साथ हाँ, आज सुबह भी आपका है जो आपको ताज़ा खबर भी देता है। और साथ ही हमारे आकाशवाणी में जो ताज़ा खबर आपको समाचार के माध्यम से भी पहुँचते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब समाचार पत्र काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ताज़ा खबर का एक जरिया हुआ करते थे, है ना। और 30 मई एक यादगार दिन हुआ करता है जो भारत में हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने देश के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। और नाम उदंत मार्तंड का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। और जानती है सीमा, ये उदंत मार्तंड हर मंगलवार को प्रकाशित होता था और इसका उद्देश्य हिंदी भाषी आबादी को समाचार पहुंचाना था। कितनी खास बात थी, सोचिए 1826 की बात है ये, है ना। और उस वक्त इतना ख्याल रखना जरूरी होता था क्योंकि हम सभी गुलामी की जंजीरों में घिरे हुए थे।

0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदी पत्रकारिता के योगदान को आज के दिन ही याद किया जाता है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई लवी। तो आगे बढ़ते हैं, और एक और दिवस हमारे बीच, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज है विश्व आलू दिवस भी।
1: ओके
0: और ये दिवस देखिए आलू जैसी महत्वपूर्ण खाद्य फसल के महत्व को समझाने और लोगों को उसके पोषण और कृषि में योगदान के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ना।
1: जी बिल्कुल। और हमें लगता है ना कि आलू तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे बच्चों के लिए, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसा सस्ता और आसान माध्यम है, इतना इतना अच्छी फसल है ये कि ये हर जगह उपलब्ध हो जाती है, चाहे चाट फुल्की हो, चाहे रसोई घर हो, चाहे बाहर हो, है ना। हर जगह मिल जाता है ये।
1: जी
0: देखिए, और
1: तो
0: कहते हैं कि भारत विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है। हमारे लाखों किसान इस फसल में जुड़े इससे जुड़े हुए हैं, और उनकी आजीविका का ये महत्वपूर्ण साधन भी है। क्यों, सही
1: जी
0: कहा ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि आजीविका का साधन है, और साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल भी हो चुकी है। और इसमें जाहिर सी बात है कि भारत भी काफ़ी आगे है, अग्रणी देश हो चुका है।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथ तभी हम कह सकते हैं ना कि आलू हमारे बच्चों के टिफिन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण
0: हिस्सा
1: स्थान
0: है,
1: ले चुका
0: बिल्कुल।
1: है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब बात आलू की है, फसलों की है, और फसलों के साथ साथ जब मौसम के हिसाब से फसलों का उत्पादन होता है, तो क्यों ना चलिए मौसम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जानकारी देते हैं, और जानकारी देने के साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं ये गीत।

हाँ, ये जो गीत है ये फिल्म जानवर से लिया गया है और ये विशुद्ध रूप से किसी एक शास्त्रीय राग पर आधारित नहीं है। ये एक रोमांटिक सुगम संगीत है जिसे आनंद मिलंद ने संगीतबद्ध किया और इसे मुख्य रूप से इसमें राग यमन और राग पहाड़ी की हल्की झलक मिलती है। इस सदाबहार गाने को अलका याग्निक और मनहर उदास ने अपनी आवाज दी है।

0: बिल्कुल, मौसम तो बदल रहा है। और चलिए अब रुख कर देते हैं, लेते हैं मौसम की ओर ही, क्योंकि गर्मी का मौसम तो अपने पूरे प्रभाव में है और लोगों की नज़र मौसम की ताज़ा जानकारी पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी से।
1: जी, गुड मॉर्निंग।
0: आज सुबह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: गुड मॉर्निंग।
0: तो सर, हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लखनऊ और उसके आसपास हमारे क्षेत्रों में आज का कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, हमारे श्रोताओं को प्लीज बताएं।
1: जी, मौसम की बात करें तो आज भी मौसम काफी खुशनुमा रहेगा। खुशनुमा हवाएं चलेंगी और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी का असर आज भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कहे

0: आज और कल थोड़ा हल्की बूंदाबांदी का असर रहेगा, मौसम खुशनुमा रहेगा। बाकी परसों से धीरे धीरे फिर हल्के हल्के तापमान में बढ़ोतरी आएगी। तो कुल मिला के आज और कल 2 दिन हमको बचाव रखने की आवश्यकता है।
1: जी जी दानिश जी, यानी कि बढ़ते पारे के बीच थोड़ी सी बूंदों की ठंडक रहेगी, है ना?
0: जी बिल्कुल, अभी से तेज हवाएं गरज चमक के साथ और जितने की संभावना है आज।
1: बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सावधानी हमारे श्रोताओं को रखनी पड़ेगी। और दानिश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
2: तो देखिए लवी, ये थी मौसम की जानकारी। ये मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में।
3: जी, और देखिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने की बात है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि आज कौन से दिवस है।
2: क्योंकि देखिए इतिहास के पन्नों को जब टटोलें तो हर दिन देखिए कोई रोचक जानकारी किसी रोचक सफर से हर दिन जुड़ा होता है। तो आपको बता दें कि 1987 में गोवा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये दर्जा मिलने के बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना और इसके विकास को नई गति मिली, है ना?
3: जी, और सन 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। और साथ ही साथ अगली जानकारी,
2: और देखिए 1919 में लवी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और पत्रकार अज्ञेय का जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि अज्ञेय जी ने हिंदी साहित्य को आधुनिक सोच और नई अभिव्यक्ति प्रदान की थी। उनकी रचनाएं आज भी साहित्य जगत में एक विशेष स्थान रखती है ना?
3: जी बिल्कुल, और यादगार भी है। और इसी के साथ ही बता दें कि आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गहन प्रदर्शन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई यानी कि आज के दिन सन 1919 को अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता के इस कदम ने भारतीय जनता के साथ गहरा जुड़ाव पैदा किया जो औपनिवेशिक अत्याचारों के खिलाफ सामूहिक अंतरात्मा और प्रतिरोध का प्रतीक था।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी लवी जी। क्योंकि देखिए इतिहास में हर कुछ नए चीजें जुड़ी होती हैं। तो चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और आप काफी सारी जानकारियां और लेकर आएंगे।
3: जी हाँ, जानकारियाँ तो देखी है ही कि क्योंकि हमारे जो शहर में जो गतिविधियाँ होती रहती हैं हमें उसका भी ख्याल रखना होता है क्योंकि उसी के हिसाब से हम उसमें शामिल हो सकते हैं। और देखिए आज जो हमारे शहर लखनऊ की बात है तो सत्यम साहित्य संस्था गोमती नगर की ओर से पुस्तक लोकार्पण समारोह यूपी प्रेस क्लब में दोपहर 3:30 से आप इसमें शामिल हो सकते हैं और जा सकते हैं। यूपी प्रेस क्लब स्थान है। और साथ ही साथ जो अगला है ये कार्यक्रम, ये है खैराबाद फाउंडेशन की ओर से सदा इजिया ए सूफी नाइट उर्दू अकादमी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। वक्त होगा शाम 6 बजे का। और अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ एवं रंग भारती के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह आयोजित हो रहा है। स्थान है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हजरतगंज में शाम 6 बजे से।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो श्रोताओं आप भी शामिल हों और इन गतिविधियों पर नजर रखें। आपने सुन लिया हमने जो बताया आपको, इसमें ध्यान में रखें इसको। और देखिए लवी, समय तो बहुत तेजी से बीत रहा है तो चलते हैं, अब चलने का भी समय हो गया, लेकिन उससे पहले एक प्यारे से गीत सुना दें।
3: जी बिल्कुल, और देखिए गीत इसलिए भी सुनना जरूरी है क्योंकि हमारी जो मन है मन मस्तिष्क को ताजा कर देता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले गीत के साथ जो कि मोहम्मद रफी की आवाज में है और इस गीत को राग जौनपुरी पर आधारित है जो कि असावरी थाट से संबंधित है। और इस गीत को कवि नीरज ने लिखा है, फिल्म कन्यादान का ये गीत है। आपको इस गीत के साथ छोड़े जाते हैं लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम में आप सबसे लेते हैं इजाजत। तो अब लवी सिन्हा और
2: सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

लखनऊ का ये खास प्रोग्राम आज सुबह इसी के साथ नमस्कार लखनऊ का ये सेगमेंट अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और सुबह के 8 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा समाचार प्रभात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइन 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण

0: के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के

0: 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार।

0: दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, डॉक्टर राजेश शर्मा जी।
1: जी नमस्कार।
0: और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसा कि विश्वविद्यालय में जनसंचार और मास कॉम के जो है आप पत्रकारिता में संबंध रखते हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि जैसा कि आज 30 मई है जिसे हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस दिवस को हम क्यों और किस लिए मनाते हैं, इसका क्या महत्व है?
1: मैं जो हूँ एक विश्वविद्यालय में डीन हूँ जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग का।
0: जी
1: और
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मेरे पास जिम्मेदारी है कि मैं आने वाली पीढ़ी को पत्रकारिता के लिए और जनसंचार के लिए उनको पढ़ाई करवा सकूं और उनको इस क्षेत्र में शिक्षित कर सकूं। और जहां तक बात है आज के दिन की, तो आज जो 30 मई है, तो 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे जो कलकत्ता में थे, और उन्होंने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्टन का प्रकाशन शुरू किया था। उदंत मार्टन का मतलब शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है उगता हुआ सूरज। और ये एक साप्ताहिक अखबार था जो हर मंगलवार को प्रकाशित होता था, इसीलिए आज भी इस दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाशवाणी के माध्यम से सभी सुनने वालों को बधाई देता हूं पत्रकारिता दिवस की, क्योंकि ये पत्रकारिता जो है वो 14 स्तंभ है भारत की तमाम लोकतंत्र का। तो वो चौथे स्तंभ को सुदृढ़ रखने के लिए और चौथे स्तंभ को मजबूत रखने के लिए हमें पत्रकारिता में नए लोगों को लाना होगा, और जो हमारे देश की जो समस्याएं हैं, हमारे देश की जो गतिविधियां हैं, उसको पूरे संसार में व्याख्यायित कर सकें, उनको प्रसारित कर सकें, प्रचारित कर सकें। आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितना भी अभी तक काम हुआ है, चाहे राजनीतिक हुआ हो, चाहे सामाजिक हुआ हो, चाहे वैज्ञानिक हुआ हो, या किसी भी तरीके से, या शैक्षणिक हुआ हो, चिकित्सा पे हुआ हो, भौगोलिक हुआ हो, ऐतिहासिक हुआ हो, उन सबके पीछे शिक्षा तो काम करती है, लेकिन उन सबको व्याख्यायित करने के लिए, उन सबको लोग दुनिया के सामने लाने के लिए पत्रकारिता काम करती है। तो पत्रकारिता के कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं कि किसी भी चीज की ऑथेंटिसिटी को, कि जो वस्तु परखता है उसको मापते हुए समाचार को सामने लेके आए। और इसमें एक पीत पत्रकारिता होती है, येलो जर्नलिज्म जिसे कहा जाता है, तो वो ये होता है कि मतलब आप किसी खास चीज को विशेष आकर्षण देके या विशेष उसे लोभ देके या विशेष उसे जामे पहना के दूध लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही खराब चीज है जिसे पीत पत्रकारिता कहते हैं या जर्नलिज्म कहते हैं। तो असली चीज है कि पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के पास स्पष्ट खबरें आए, सार्थक सूचनाएं आए, जो भी हमारे समस्याएं हैं, जो भी हमने अचीव किया है, उसका लोगों को पता लगे। तो दुनिया के सामने कोई भी खबर जाना, अब जैसे कि हमारे पास अमेरिका की खबर है, जापान की खबर है, रूस की खबर है, ये हमें युद्ध की जो खबरें मिल रही हैं, है ना, वो एक जब हम ऑथेंटिक कोई चैनल पाते हैं तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो दूरदर्शन का डर है उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं बनस्पित इसके, क्योंकि प्राइवेट चैनल का मालिक कोई होता है, हो सकता है वो वहां से आपको सही खबरें ना मिले।

0: लेकिन दूरदर्शन जो कि भारत सरकार की देन है, भारत सरकार का एक चैनल है, तो
1: जी
0: आपको उसकी खबर पे भरोसा कर सकते हैं,
1: जी
0: है
1: ये
0: ना?
1: विश्वसनीय ये रहता है कि हाँ ये दूरदर्शन की तरफ से है तो वो
0: जी
1: विश्वसनीय ही होगी, सत्यता होगी। जी
0: जी जी जी इसी तरह आकाशवाणी से जो भी प्रसारण होगा वो ऑथेंटिक होगा, उसमें कोई भी विज्ञापन नहीं होगा, उसमें कोई भी उसमें किसी भी किस्म का कोई उद्दीपन नहीं होगा।

0: किस्म का कोई उद्दीपन नहीं होगा किसी चीज,
1: नहीं
0: वो जो भी
1: फोटो
0: होगा
1: तो
0: वो सत्य सत्य होगा। तो इस सत्यता के प्रति ही पत्रकारिता का झुकाव होना चाहिए, इस सत्यता के ही प्रति लोगों का आकर्षण होना चाहिए, और दरअसल लोग सत्य जानना चाहते हैं, सत्य समझना चाहते हैं।
1: जो आपकी पत्रकारिता है शर्मा जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, सकारात्मक उसमें बताइए आप।
0: जो आज की पत्रकारिता है,
1: जी
0: आज की पत्रकारिता जो है वो बहुत ज्यादा बायस हो चुकी है
1: जी
0: और पत्रकारिता पे लोगों का यकीन नहीं रहा है, इसीलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ। और मैं अपने संस्थान में इस तरह के बना रहा हूँ, गढ़ रहा हूँ कि वो सत्य की पत्रकारिता की तरफ आगे जाएं, क्योंकि जो आजकल क्या है कि ग्लोबलाइज होने से और ये डिजिटलाइज होने से बहुत सारे पोर्टल, बहुत सारे
1: जी
0: चैनल्स खुल गए हैं, है
1: जी
0: ना, और उन पर कोई हमारी रोक नहीं है ना,
1: जी
0: कुछ सरकारी रोक नहीं है, तो वो कुछ भी चाहते हैं, अनाप शनाप बकने लगते हैं, अनाप शनाप कहने लगते हैं, झूठ सच दिखाने लगते हैं। और इन छोटे छोटे जो छुटवइये चैनल्स हैं, इनका मकसद ये होता है कि लोगों को बदनाम करके उनसे पैसा वसूलना
1: जी
0: और लोगों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाना, जबकि
1: नहीं
0: पत्रकारिता ये नहीं कहती है।
1: कहती,
0: तो
1: पत्रकारिता
0: जी
1: ये कहती है कि सत्यता सामने आए और
0: जी
1: लोगों को सही और
0: हाँ
1: जानकारी मिले ताकि विश्वास
0: जी जी
1: बढ़े।
0: जी जी जी उसके लिए हमारे प्रेस क्लब्स भी काम करते हैं, हमारे पत्रकारिता से जुड़े पुराने लोग भी काम करते हैं। तो ये एक बड़ा ऐसा दौर है कि जब हमें संघर्ष ज्यादा करना है, जब हमें लड़ाई ज्यादा करनी है, लेकिन कभी भी सत्य छुपता नहीं है, सत्य का कभी भी
1: जी बिल्कुल,
0: चरण नहीं होता, तो सत्य हमेशा सामने आता है और लोग सत्य ही पसंद करते हैं।
1: सीढ़ियां जरूर होती है
0: तो
1: पर सत्य आता जरूर है सामने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षण के हर चीज से लड़के, हर चीज से संघर्ष करके, हर चीज से जीत कर सत्य तो सामने आता ही है, ये इस दुनिया का नियम है
1: जी
0: ना।
1: आपने श्रोताओं तक पहुंचाई डॉक्टर
0: जी
1: राजेश शर्मा जी, बहुत
0: जी
1: बहुत धन्यवाद आपका।

श्रोताओं, फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। और इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और श्रोताओं, आज जैसा कि बात करें कि आंधी बारिश से थोड़ा सा जो मौसम का असर है वो बहुत अच्छा हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही साथ लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये मिला जुला मौसम हो रहा है, एकदम से गर्मी होती है फिर एकदम से आंधी तूफान आकर के मौसम ठंडा हो जाता है, तो इसमें ख़ास ख्याल रखें अपना। बच्चों का ख़ासतौर से भीषण गर्मी, बच्चे बुखार और डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। बार बार मौसम बदलने से बच्चों को खांसी और जुकाम भी हो रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार को 150 से अधिक बच्चे पहुंचे और गंभीर बच्चों को वार्ड में भर्ती किया गया। दोपहर तक वार्ड में 35 बच्चे भर्ती थे, जिसमें अधिकांश डायरिया और बुखार से ग्रस्त थे। और साथ ही साथ जुकाम, सर्दी, खांसी भी बच्चों को लगातार इस समय बना हुआ है। तो इसलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों का खास ख्याल रखें। ये मिला जुला मौसम जो है राहत तो देता है, साथ में

दिक्कतें भी बढ़ाता है। और गुरुवार को दिन भर जिस तरह मौसम विभाग की ओर से आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया जा रहा था, उसे बिजली विभाग के अधिकारियों की भी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि लगातार अब जो होता है आपके फोन पर भी अलर्ट मैसेज आता है कि अपना ख्याल रखें और जहां कहीं भी हों वहां आप सुरक्षित हों। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो तापमान है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप आज का जो तापमान है 30 मई का, वो 33 डिग्री सेल्सियस जो है रहेगा, और बिल्कुल भी गर्मी से आपको जो है बहुत राहत रहेगी, लेकिन इसमें अपना खास ख्याल रखें। जगह जगह राहत तो मिली है, लेकिन जगह जगह जो इसका असर है वो हमारे जनजीवन पर भी पड़ता है। जगह जगह पेड़ों का उखड़ के गिर जाना और आंधी बारिश में नुकसान भी जो है काफ़ी हो जाता है। साथ ही इसलिए अपना खास ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें। इस मौसम में होता क्या है, एकदम से जो है थोड़ा ठंडक हुई, फिर एकदम से फिर गर्मी हो गई, भीषण गर्मी होने लगी, नौतपा जैसा लगने लगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो उस चीज़ को एकदम से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो एकदम से गर्मी हुई, हमको शरीर में पानी की कमी हुई, दिक्कतें बढ़ गई। और अगर मौसम ठीक हुआ, शुष्क हुआ, तो कहीं सर्दी खांसी जुकाम। और इन दिनों अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें, ज़्यादातर रात में दही का सेवन ना करें, रायता वगैरह जो है रात में अवॉइड करें, उसे आप दिन में ले सकते हैं, लेकिन इस मौसम को देखते हुए दिन में भी अवॉइड करें। आपकी जो दिनचर्या है उसमें अपना विशेष ख्याल रखें।

और श्रोताओं, अब बरेली शहर की कुछ खास खबरें। 13 केंद्रों पर 5,561 अभ्यर्थी देंगे बीएड प्रवेश परीक्षा। 31 मई को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8:30 बजे तक ही मिलेगा प्रवेश। तो श्रोताओं, हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस किसी को भी परीक्षा देनी हो तो टाइम से वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी आईडी वगैरह लेकर के टाइम से आप लोगों को 8:30 बजे तक वहां पहुंच जाना है। दो पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। प्रवेश सुबह 8:30 बजे तक ही मिलेगा। परीक्षा की तैयारियों के संबंध में शुक्रवार को रुशनलखंड विश्वविद्यालय में समन्वय बैठक भी की गई। पल्स पोलियो अभियान में 7 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी 2 बूंद जिंदगी की। जी हां, जिले में 28 जून से पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 0 से 5 साल तक के लगभग 7 लाख के बच्चों को दवा 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह जी ने शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर अभियान को 100% सफल बनाने के निर्देश दिए हैं और अभियान के पहले दिन विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर विशेष पोलियो बूथ स्थापित कर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी।

आईवीआरआई में पशु विज्ञान सम्मेलन एक से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आईवीआरआई में ब्रज विज्ञान भारती के सहयोग से बेसिक 2026 भारतीय एनिमल साइंस कॉन्क्लेव और साइंस एक्सपो का आयोजन 1 और 2 जून को किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त निदेशक शोध डॉक्टर एस के सिंह ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य वैज्ञानिक मंच होगा, जिसका उद्देश्य है जैव विज्ञान, विशेषकर पशु और पशु चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से विकसित भारत @2047 के निर्माण के लिए सतत विकास की दिशा में वैज्ञानिक नवाचारों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एक साथ जोड़ना है। इसकी केंद्रीय थीम है परंपरा से प्रौद्योगिकी तक। बरेली कॉलेज का तरणताल होगा शुरू, बनेगा आय का जरिया। कोविड के बाद से रख रखाव के अभाव में बदहाल स्थिति थी स्विमिंग पूल की, और आधुनिक फिल्टर प्लांट लगाने के साथ टाइल्स और परिसर का होगा सुंदरीकरण। दशकों से शहर के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा बरेली कॉलेज का तरणताल, अब जल्दी ही फिर से अपनी पुरानी रौनक लौटाने जा रहा है। बीते 5 वर्षों से बदहाल स्थिति में पड़े इस स्विमिंग पूल के जीर्णोद्वार का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद इसे एक बार फिर कॉलेज के लिए आय के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा।

और श्रोताओं, 5 डिग्री लुढ़का पारा, फोन पर मिला अलर्ट। जी हाँ, जिले में शुक्रवार को मौसम खुशनुमा रहा, हवा चलती रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री लुढ़ककर 35.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रात का पारा भी 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में रात के समय भी अधिक गर्मी महसूस नहीं हुई और दोपहर में निकली चटक धूप ने भी थोड़ा ही परेशान किया। सभी के फोन पे मौसम विभाग की ओर से आपात अलर्ट जारी किया गया, जिसमें क्षेत्र में मौसम खराब होने की संभावना जताई गई थी। अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 30 मई को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दोपहर के समय जरूरी काम से निकले लोग विशेष सावधानी बरते नजर आए, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप अपना रखें खास ख्याल, क्योंकि ये जो मैसेज आता है अलर्ट मैसेज, ये फ़ोन के माध्यम से आप सभी के पास फ़ोन होता ही होता है, इसलिए किया जाता है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप तुरंत सुरक्षित हो, इसीलिए अपना रखें विशेष ध्यान। 31 मई को भी यानी कि कल झोंकेदार हवा और आंधी चलने की संभावना है, इसलिए मौसम तो खुशनुमा रहेगा ही, साथ ही आप भी खुश रहें और अपना और अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें।

0: श्रोताओं, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय की कद्र करनी चाहिए।
1: करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: और श्रोताओं, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग कहते हैं ये छोटी बात। जिंदगी में जब हम छोटी छोटी बातों का ही खास ख्याल रखते हैं ना, तो बड़ी बातें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं।
1: करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: और श्रोताओं, एक लक्ष्य बनाकर दिन रात उस पर मेहनत कीजिए। दिन 24 घंटे आप दीजिए उसे, और ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आप उसे पा ना पाए।

0: और उसमें सफल ना हो सकें।
1: करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: और श्रोताओं, अब हमें घड़ी इशारा कर रही है कि हम आपसे जो है कार्यक्रम नमस्ते बरेली से लें अब अनुमति। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और अब आप आनंद लेंगे लोकगीतों का। और लोकगीत में आज कलाकार हैं योगेश कुमारी।

श्रोताओ, इसी के साथ लोकगीत अभी ही संपन्न होते हैं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों को। आज कलाकार थी योगेश कुमारी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे विद्युत भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कदर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि हम लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

बे सबरू की तरह ताक कर, खोल दे दिल की खिड़की, देख ले झांक के, संकट ना आए कोई पापा की नाक पे। कहो काम कब सारे बाकी करोगे, कुछ करोगे या खाली।

सर्दी के मौसम में हीटर के जैसी हूँ मैं, टेम्परेचर नापूं अच्छा, थर्मामीटर सी हूँ मैं, खुद का ख्याल मुझको ना कोई बेखुदी, तेरी नजरों से फिर क्यों होती है गुदगुदी।

तितली हूँ मैं बिन सोचे उड़ जाऊंगी आवारा, तितली हूँ मैं बिन सोचे फुर्र बको पूछ के कब तुम बेबाकी करोगे, कुछ करोगे।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर निट्स ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशर मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

0: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती 2।
1: The fucker, so the fucker.

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्या कुमार की आवाज, प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। मित्रों, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में

0: न किसी की नजरों में। जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार मिश्र का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि हैं बरेली के फोकस पैथलैब फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का केंद्र 100.4। आज का विषय हर घर से जुड़ा हुआ है, जंक फूड जनरेशन। क्या टेस्ट के चक्कर में हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, खास तौर पर जब समर हॉलीडेज के दौरान बच्चे घर पर हैं? और टॉपिक है जंक फूड।
0: जी डॉक्टर मोहित जी, ये जंक फूड है कौन कौन से?
1: पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स। आज सिर्फ फूड नहीं रहे, एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
0: जी,
1: बच्चों की बर्थडे पार्टी हो रही है तो पिज्जा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, उसके बिना बर्थडे पार्टी नहीं हो सकती। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं बच्चा कुछ तो खा रहा है, बच्चा कुछ खाता ही नहीं है। अरे पिज्जा तो खा रहा है, कम से कम कुछ जा तो रहा है पेट में इसके। लेकिन सवाल ये है, क्या बच्चे सिर्फ पेट भर रहे हैं और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा है या उनका पेट भर रहा है? ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। आज का जंक फूड उनको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन दे सकता है, उनका फ्यूचर कितना डार्क हो सकता है इस जंक फूड की वजह से, उनकी कितनी हड्डियां खोखली हो सकती हैं और कितनी तंदुरुस्ती पे असर आ सकता है, ये कभी आप सोचा है आपने? बच्चों को अगर घर का खाना बोरिंग और जंक फूड एक्साइटिंग लग रहा है तो ये क्यों लगता है, हमने कभी सोचा है क्या? इसका सिर्फ एक सिंपल रीजन है।
0: डॉक्टर साहब, कारण क्या है ये जरूर बताएं।
1: उस जंक फूड में एक्सेस अमाउंट में चीनी होती है, शुगर होती है, एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट होता है, एक्सेस अमाउंट में फैट होता है। एक्सेस अमाउंट, किसी से मैंने एक बार यही जिक्र किया था कि एक्सेस अमाउंट में शुगर होती है, तो उन्होंने कहा ये मीठा तो नहीं है, ये तो कुरकुरे हैं, ये कोई मीठा तो है नहीं। मतलब ये नहीं मीठा, मतलब उसके अंदर जो ट्रांस शुगर होती है, ट्रांस फैट होता है, उससे मतलब है। वो इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है बॉडी के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, जी जी।
1: अगर ना खाए, अगर भूखा रहे तो ज्यादा अच्छा है जंक फूड खाने से, मैं ये बोल सकता हूँ।
0: बिल्कुल,
1: ये सब कॉम्बिनेशन जो है, एक्सेस शुगर, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस फैट, ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है, ये ब्रेन को टेम्पररी प्लेजर देता है, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। अरे आदमी को क्रेविंग होती है, एक खाया चिप तो दूसरा अपने आप हाथ बढ़ जाएगा, तीसरी बार फिर से हाथ बढ़ जाएगा, इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है। मतलब एक तरह से नशा करती है और धीरे धीरे हमारी क्रेविंग इतनी बढ़ती है कि अगर हमें वो नहीं मिलता तो हम कुछ और खाना नहीं चाहते। कंपनीज आपके बच्चे को टेस्ट, एक स्वाद सेल कर रही है, ना कि न्यूट्रिशन, ना कि हेल्थ। पेट भर रहा है लेकिन बच्चे को तंदुरुस्ती नहीं आएगी, उससे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम सिर्फ अकेजनल पिज्जा के लिए नहीं है। मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कभी भी मत खाने दो। कभी कभार चलो ठीक है, आपने 10-15 दिन में एक बार खा लिया, हफ्ते में भी एक बार खा लिया, कुछ भी चीट डे कर लिया, कोई बात नहीं। बात हो रही है उसकी जो रेगुलर खा रहे हैं, कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं साथ में, रोज पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, रोज कोल्ड समोसा खाया जा रहा है, रोज बर्गर खाया जा रहा है, पिज्जा खाया जा रहा है, पास्ता खाया जा रहा है।
0: और डॉक्टर साहब, गर्मियों की छुट्टियों के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: और समर हॉलीडेज में मैंने ये टॉपिक से चुना क्योंकि समर हॉलीडेज में सबसे ज्यादा होता है। समर हॉलीडेज में बच्चे का रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, लेट सोएगा, लेट उठेगा, मोबाइल पे गेम खेल रहा है या मोबाइल पे यूट्यूब देख रहा है, टीवी चल रहा है लगातार, है ना, कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कभी किसी ऐप से, कभी किसी ऐप से, वरना घर में ही आजकल तो सब चीजें अवेलेबल है, घर पे ही पास्ता बन रहा है। घर का पास्ता भी बुरा है, ये नहीं कि बाजार का पास्ता ही बुरा है, घर का पास्ता ही बुरा है, उसमें भी मैदा है ना, ये नहीं है कि वो बुरा नहीं है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। हमें क्या करना है कि भाई आउटडोर गेम्स बच्चों को ज्यादा खिलाने हैं और स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है, ये बेसिक फंडा है। आजकल बचपन एक्टिव कम हो गया है और ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया, ऑटोमेशन आ गया है। मैं कभी कोई जना आपको, मगर बच्चों को कभी टीवी दिखाना है, कभी स्क्रीन टाइम देना भी है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप टीवी पे दिखा दीजिए, टीवी की स्क्रीन बड़ी है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है
0: जी,
1: है ना, तो बच्चे की आंखों पे ज्यादा जोर पड़ेगा। आपको कोई कार्टून दिखाना है बच्चों को तो आप टीवी पे दिखाइए, ना कि मोबाइल पे। मोबाइल बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
0: बच्चों की माएं अगर ये बात सुन रही हो तो कृपया ध्यान जरूर देना इस बात पर, कार्टून दिखाएं।
1: हमारी जनरेशन थी, थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, क्योंकि मैं भी, मुझे लगता नहीं कि मैं टू ओल्ड टू से कि हमारी जनरेशन थी, लेकिन फिर भी जो हमारी जनरेशन थी वो धूल में भी खेलती थी, है ना, धूप में भी खेलती थी। आज की जनरेशन को बहुत धूप लगती है,
0: बहुत
1: पसीना आता है, एसी के बिना रह नहीं सकते, उनको हमेशा स्क्रीन चाहिए, उनको हमेशा एक स्लाइड करना है। बच्चा कुछ ना कुछ सीखे सीखे हाथ उंगली घुमाना सीख जाता है ऐसे ऐसे करके कि स्लाइड कर रहा है, जैसे कैरोसेल देख रहा हो। अब इसका इफेक्ट समझते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये क्या बात है जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं?
1: बच्चों में मोटापा।

0: आप अपने में याद करिए, आप बचपन में थे तो आपके स्कूल में या थोड़े सिक्स सेवन्थ के टाइम में या एट्थ क्लास में जब होंगे आप, तो कितने लोग मोटे थे क्लास में?
1: बिल्कुल
0: याद करिए कि कितने लोग मोटे थे आपकी क्लास में या आपके पड़ोस में या कहीं और। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इनकी इसलिए डायबिटीज भी जल्दी हो रही है, लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किडनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैटी लिवर आ रहा है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही हैं। और फीमेल्स में अभी आप देखा होगा बच्चे जो हैं बेचारे, किसी किसी का जो मंथली शुरू होता है, मेंसेस शुरू होते हैं, वो 10 साल में शुरू हो जाते हैं, जो होने चाहिए करीबन 12 से 14 साल।
1: ये खान पान की वजह से है,
0: खान पान की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जा रहा है
1: जी,
0: या इरेगुलर मेंसेस हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा। हेल्दी दिखना और हेल्दी होना दोनों अलग अलग बात है ना। लोग कहते हैं यार मोटा हो गया यार, थोड़ा पतला हो जा, कपड़े वपड़े सही से नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ ये रीजन नहीं है पतला होने का। पतला होना मतलब हेल्दी होने का मतलब है, हमें हेल्दी रहना, हमें अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है
1: जी।
0: इससे बच्चों को लो इम्यूनिटी हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, कुछ बच्चे कम बीमार होते हैं, कुछ बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में 100% रहती है, कुछ बच्चों की अटेंडेंस स्कूल में कम रहती है, क्योंकि वो उनको जब सीजन चेंज होता है तब वो बीमार पड़ जाते हैं, है ना, या कभी वैसे ही उनको खांसी हो जाती है या कभी दस्त हो गए। तो क्यों? क्योंकि वो जंक फूड से कैलोरी तो दे रहा है जंक फूड, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, इसलिए उनकी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है।
2: डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी, फैटी लिवर के बारे में बताएं, वो कितना प्रभावित होता है इन सब चीजों से?
0: जो कि देखिए बड़े लोगों को होता है या किसी
1: जी।
0: बच्चों को हो रहा है शॉकिंगली। आजकल हम देख रहे हैं यंग चिल्ड्रंस को, बच्चों मतलब बच्चों को जो 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसको फैटी लिवर मिल रहा है। तो देश कहाँ जा रहा है हमारा? कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड हल्के हल्के लिवर को खाते हैं, डैमेज करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस कार्य में थोड़ा मैं डिटेल बात करना है, पीसीओडी जो फीमेल्स में होता है, बच्चों में टीनेज गर्ल्स में होता है
1: जी।
0: ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। आप अगर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से कभी बात करें या कुछ करें तो आपको बहुत लोग मिलेंगे बच्चे जो कि 13 साल के हैं, 14 साल में उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम मिल रही है। वो ज्यादातर बच्चे लड़कियां या तो उनको वेट गेन हो रखा होता है या वो जंक फूड बहुत खाते हैं या उनकी बिल्कुल भी खेलना कूदना बंद है ना। बच्चों की हम ये नहीं कहते बच्चों को एक्सरसाइज कराओ, बच्चे को खेल कूद लें, वही एक्सरसाइज है बच्चों की ना। पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि उनको एक्सरसाइज कराया जाए, खेले कूदें, बाहर कूदें, या उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है या बहुत स्ट्रेस में है, और जैसे स्क्रीन देखने से भी स्ट्रेस बढ़ता है, अब स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सब होने से बच्चों को पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि एक हार्मोनल इशू है, लाइफस्टाइल इशू है। पेरेंट्स को अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसमें, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसा आप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। हर रेगुलर पीरियड को इग्नोर मत करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो हार्मोनल हेल्थ को कभी प्रोटेक्ट करती हैं।
2: प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं जान है तो जहान है कार्यक्रम में बरेली के फोकस पैथलैब, फोकस एमआरआई डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल एमबीबीएस एमडी को। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है गर्मी का और इन दिनों ठंडे पे बहुत पिए जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं से जो इस समय आपको सुन रहे हैं और बहुत ही ध्यान से गौर से सुन रहे हैं?
0: अब बात कोल्ड ड्रिंक की है ना, कोल्ड ड्रिंक है ना, समर में बच्चा ये मांगता है कि भैया मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, शुगर ओवरलोड है, चीनी बहुत मात्रा में है, कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज है। एम्प्टी कैलोरीज मतलब होता है कि उसमें जो कैलोरीज हमें मिल रही हैं वो हमारे लिए बिल्कुल खराब है, एम्प्टी कैलोरीज है। फिर एनर्जी क्रैश है, एकदम शुगर होगी हाई मिलेगी आपको, एकदम आपकी शुगर बढ़ेगी
1: जी,
0: मतलब ना एकदम आपकी स्पाइक आएगा और एकदम वो नीचे आएगा, तो वो बॉडी को बहुत हार्म करता है, आपके स्पेशली पैनक्रियास को बहुत हार्म करता है ये स्पाइक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कूल नहीं करती हमें, क्वाइटली डैमेज करती हैं, हल्के हल्के। एक्सेस शुगर ओबेसिटी लाती है, डायबिटीज रिस्क लाती है जिसकी जिसकी हमने बात करी है ना, बॉडी वीकनेस लाती है, फैटी लिवर लाती है। पेशेंट्स, मैं उनको पेशेंट्स बोलूं या बच्चे बोलूं मतलब समझ में नहीं आ रहा,
1: बच्चे बोलिए
0: बच्चे ही बोलता हूं। इसका रीजन क्या है, पेरेंट्स अननोइंगली बिना सोचे समझे या उनकी लापरवाही की वजह से कुछ गलतियां कर देते हैं। बच्चे ने अच्छा काम किया तो उसको चॉकलेट दे दी। हाँ, चॉकलेट आप खा सकते हो, ऐसा मैंने ये चॉकलेट के अगेंस्ट हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब है ना, उसको वो बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा है ना। उसकी बच्चा अगर रो रहा है तब मोबाइल पकड़ा दिया, या उसके मतलब बच्चा रो रहा है और वो खाना भी खा रहा है और मोबाइल भी देख रहा है, तीनों चीज एक साथ हो रही है। बच्चे के आंसू टपक रहे हैं, बच्चा मोबाइल देख रहा है और बर्गर खा रहा है, ये कॉम्बो आप सोचो ऐसा चल रहा है। बच्चा रोता है लोग चिप्स दे देते हैं कि बच्चा चुप हो जाएगा, बच्चा रो रहा है मोबाइल दे देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, आप जितना ये करेंगे उतना बच्चा हट्टी मतलब एक जिद्दी होता जाएगा कि जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, चिप्स नहीं मिलेंगे या कुछ और जंक फूड नहीं मिलेगा, मैं ये बात नहीं

0: बस जिद पकड़ के ले ही लेगा वो चीज़।
1: ले लेगा फिर वो
0: जी।
1: आज हम बच्चों को खाना नहीं, क्रेविंग्स बढ़ा रहे हैं उनकी। ये क्रेविंग्स, क्रेविंग का क्रेविंग बड़ा अच्छा सा वर्ड लगता है ना, बोलो क्रेविंग। क्रेविंग से मेरा हमेशा से मतलब होता है नशा। क्रेविंग क्या है? किसी चीज की तलब होना, है ना। जैसे किसी को सिगरेट की तलब होती है, किसी को कुछ और नशे करने की तलब होती है। तो क्रेविंग किसी भी चीज की हो रही है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, वो तलब है,
0: वो तलब है
1: और वही नशा है। तो ये भी एक नशा है जंक फूड। इसको आप ये मत सोचिए कि बच्चा खा रहा है तो वो नशा नहीं है, ये बच्चों का नशा है ना, क्रेविंग होना। तो दिस इज नॉट गुड। मतलब इसको कहीं से भी आप एडवोकेट नहीं कर सकते कि ये सही चीज है। अब इसमें आप चलो ये सब तो निगेटिव बातें हो गई, अब गुड न्यूज क्या है, अच्छी बात क्या है?
0: जी अच्छी बात बताइए।
1: हेल्दी फूड भी टेस्टी हो सकता है, जो कि न्यूट्रिशियस फूड है, जो कि हमारे को तंदुरुस्त रखेगा, बढ़िया रखेगा, वो भी टेस्टी बन सकता है अगर हम चाहें तो। पहले तो हमको ये सब चीजें जो हैं खराब चीजें उनको बिल्कुल ही स्टॉप करना पड़ेगा
0: जी।
1: हर तरीके से देखिए हो गई अब बहुत सारी निगेटिव बात। अब हम गुड न्यूज बताते हैं आपको। सबसे बढ़िया गुड न्यूज क्या है कि हेल्दी फूड जो कि न्यूट्रिशियस फूड है, हेल्दी फूड है, वो भी टेस्टी बन सकता है। लेकिन वो टेस्टी लगता क्यों नहीं है? क्योंकि जंक फूड चल रहा होता है साइड में,
0: इसीलिए।
1: अब कहते हैं ना राक्षस हावी हो गया तो देवता भी क्या करेंगे ना। तो इसलिए जंक फूड हमें बिल्कुल स्टॉप करना है और बच्चों को हेल्दी फूड देना है। उसमें हाँ थोड़ा सा उसको टेस्टी बना दीजिए, एक्स्ट्रा टेस्ट में। आप बच्चों को कोकोनट वाटर पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, है ना, उनको अच्छा लगेगा। लेमन वाटर दीजिए, है ना, उसमें शहद डाल दीजिए, बच्चों को मजा आएगा। फ्रूट्स खिलाइए, सीजनल फ्रूट्स खिलाइए, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, आम आ रहा है, बच्चों को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दही में थोड़ी स्मूदीज बना दीजिए, दही मतलब दही में कुछ फ्रूट्स डाल सकते हैं, खीर बना सकते हैं घर पे, है ना। उसमें चीनी की मात्रा हटा दीजिए, उसको उसमें शहद डाल दीजिए, बन जाएगा बढ़िया, है ना। मखाना है उसको रोस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, वो खिलाइए बच्चों को। फिर घर के स्नैक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम सब लोग पहले खाते थे लड्डू, खाते थे, है ना, गोंद के लड्डू खा रहे हैं, है ना। उसमें मतलब जो एक हमारी रिफाइंड शुगर है उसकी जगह आप शहद का उपयोग करिए, थोड़ा कभी कभी गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी वो भी खराब नहीं है इतना, लेकिन रिफाइंड शुगर का बिल्कुल उपयोग मत करिए। घर का सिंपल फूड बॉडी के लिए बेस्ट फ्रेंड है, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हेल्दी हैबिट्स बच्चों को बचपन में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, हॉस्पिटल में नहीं।
0: जी बिल्कुल, एक और आदत डालनी तो अच्छी आदत डालिए।
1: बच्चे सुनते कम है
0: जी,
1: है ना, किसी के बच्चे नहीं सुनते, बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे कॉपी कैट होते हैं, जो आप करेंगे वो करेगा। अगर आप घर जाके मोबाइल देख रहे होंगे तो उनको भी स्क्रीन देखने का मन करेगा। तो आपको कुछ भी घर पे मोबाइल मत देखिए, मोबाइल पे हम एक बार बोल चुके हैं बहुत, इसलिए अभी मैं नहीं बोल रहा। तो जंक फूड आप खाएंगे तो बच्चा भी खाएगा, एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। पेरेंट्स लाइफ स्टाइल के लिए, बच्चों की जो बच्चों का लाइफ स्टाइल है उसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों हर पेरेंट्स आता है बच्चा सक्सेसफुल हो, मेरा बच्चा हेल्दी बने, हमेशा खुश रहे, हमेशा उमंग भरा हुआ रहे, लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारा किचन भी डिसाइड करता है कि हमारा बच्चा कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। टेस्ट सिर्फ 5 मिनट का होता है, हेल्थ हमेशा के लिए होती है।
0: बिल्कुल जी,
1: आज की हैबिट्स कल की हमारी रिपोर्ट्स बनेंगी। हेल्दी बच्चे देश का फ्यूचर है, सिर्फ आपके परिवार का फ्यूचर नहीं है, मेरे देश का भी फ्यूचर है, इसलिए मुझे इसकी चिंता है। चलिए इस समय एक फैमिली चैलेंज स्टार्ट करते हैं, हम कम जंक फूड खाएंगे, ज्यादा मूवमेंट करेंगे, ज्यादा होम फूड फूड खाएंगे, ज्यादा आउटडोर लाइफ रखेंगे। मैं हूं डॉक्टर मोहित अग्रवाल, आप सबको हेल्दी और हैप्पी समर हॉलीडेज की विशेष देता हूं। और याद रखिए, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
2: बहनों भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बरेली के फोकस पैथ लैब, फोकस MRI एंड फोकस डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल MBBS MD को। और अब आज का जान है तो जहान है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए अपने दोस्त रविंद्र मिश्रा को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले शनिवार।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है, है?
2: पता नहीं इनकी नाम भूलने की बीमारी कब जाएगी। इतनी सारी साड़ियाँ लेकर क्या कर रहे हो?
1: अरे भाई, कल तुमने जो 15-20 साड़ी खरीदी थी ना, है ना, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी को इस्त्री मारनी है। डार्लिंग विश्वजीत,
2: परमजीत।
1: कौन परमजीत?
2: मेरा नाम परमजीत है जिससे तुमने शादी की है।
1: अभी अभी सोना बेटा, तुम्हारी बात को बोलो ना। अच्छा क्या बात बात में चिल्लाते रहने का है?
2: ओहो डैडी, मेरा नाम सोना नहीं मोना है।
1: ये साड़ी की उलझन में मैं इसका नाम भी भूल गया, परिमल।
3: डैडी जी, मेरा नाम परिमल नहीं, अनमोल है।
1: ए यार, तेरे को क्या हो गया चुनीलाल?
2: मणिलाल।
1: कौन मणिलाल?
2: तोड़ा नाम मणिलाल है, मणिलाल पटेल।
1: ये नाम मैंने कब रखा?
2: बचपन से।
1: बचपन से? बचपन से मेरा ये नाम है, और मुझे अभी बताती हो तुम? ले, अभी मैं याद रखूंगा, मेरा नाम मेथी लाल है बस।
2: ओ जीसस।
1: जीसस, अभी तुमने बोला ना मेरा नाम मेथी लाल है, अभी जीसस।
2: गेट आउट।
0: परेश रावल की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। परेश मानते हैं कि हेरा फेरी की सफलता का सारा श्रेय जाता है इस फिल्म के लेखक नीरज वोरा को, जिन्होंने कॉमेडी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया था।
4: भैया, आप गांव में घर है ना आपके?
5: नहीं है। क्यों
4: नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह भटकोगे।
6: देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा?
4: देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका।
5: सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा।
7: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
4: ये इसके दिल में खोट है।
6: तेरे दिल में खोट है? मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता।
4: हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
6: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
4: हाँ तो करना तू।
6: हाँ तो तू भी करना।
4: हाँ तो कागज लेके आना तू।
6: तू कागज ले आ।
4: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
6: मैं
4: क्यों? तुम दोनों में से दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ।
5: इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
4: हेलो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में।
6: बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर।
8: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
7: क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया?
6: गाना?
4: ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला।
6: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर।
8: फुल माल है भाई, सब फुल माल है।
7: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
6: कौन सा गाना?
7: मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है।
4: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया पिस्टल उठाओ, बाहर फेंक दो इसको।
6: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने।
9: हेलो
4: हेलो, देवी प्रसाद?
6: चमाल नहीं, देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
4: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
6: वो तो मैं खा गया।
9: खा गए?
6: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
0: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक

0: कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
1: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
0: पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिजड़े का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं, और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हीरा फेरी फिर हीरा फेरी, आंखें आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, मालामाल वीकली, गोलमाल, हलचल, छुप छुप के, भागम भाग, शंकर दादा, भूल भुलैया, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, दे दनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को लाते?
1: अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घूमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा?
0: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
3: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी, हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई है ना, चुप हो गई है। घर एकदम शमशान हो गया था, और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई है।
0: सन 2001 में फिल्म हेरा फेरी के लिए परेश रावल चुने गए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन फिल्म फेयर की ओर से। सन 2003 में आवारा पागल दीवाना फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता।
1: ये मेरा गला बैठने को आया है? तू क्या कान दुकान पे बेच के आया है साला बेरा? इधर कचरा नहीं डालने का? ये तो तू नया है ना, इसके लिए मैं प्यार से बात करता हूँ। ये गुलाब वाले तेरा नाम क्या है?
4: लिसन जेंटलमैन,
1: ये साला कौन सा नाम है? समझ में नहीं आता, इधर कचरा नहीं डालने का।
4: I'm sorry.
1: अबे सॉरी क्या इंडिया समझे? गुना करो, सॉरी बोलो,
5: क्या हुआ बड़ी जी?
1: अबे ये साला घन चक्कर को मैं एक कलाक से समझा भी नहीं थकी गया, इधर कचरा नहीं डालने का। इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
0: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं,

0: ये कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
1: किसे भेजनी है नोटिस?
2: भगवान को।
1: मिस्टर भगवान? सरनेम?
2: पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं हैं।
1: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
2: हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं।
1: अच्छा है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दीवाने।
1: तो नमस्कार मित्रों, मित्रों मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं रेडियो सुनता आया हूँ, और दोस्तों रेडियो में जो गाने बजते हैं वो मधुर गाने और वो आवाज, आज भी उसमें दम है, उसमें जादू है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

0: और आप ऐसे सुनते रहिए और ऐसे आनंद लेते रहिए, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों संगीत सुनने से मन मधुर हो जाता है, तन मधुर हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।

बूंद बूंद कीमती है, जल का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। अपने घर की छतों पर, बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये सब हैं वृक्षों के उपहार। पर्यावरण संरक्षण में अपना भरपूर सहयोग दें और अपने आसपास के वातावरण को भी साफ स्वच्छ रखने में पूरा सहयोग करें। यातायात के नियमों का पालन कीजिए। धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचिए। आज की बचत, कल की सुरक्षा।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी लोगों का फर्स्ट कमेंट हम तक पहुंचा हुआ है। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं, जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करुला मुरादाबाद से हैं, अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान का। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का। पुराना शहर बरेली से हैं, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य का। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिश्री, गोर्धनधरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का का। सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं, पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा का। जसपुर उत्तराखंड से हैं, रियासत हुसैन सिद्दकी, नाजमा बेगम सिद्दकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। नागपुर महाराष्ट्र से हैं, कमल सहाने, डॉक्टर अब्दुल मलिक, संदीप मक्कर, रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं, निप्पी सहाने और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त।

दोस्त बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर काजल बड़वाल, लखवीर रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण शीतल, नवीन रंगीला, निशान अनमोल और प्यारे बेटे चटकू मटकू। नाज रेडियो क्लब करेली से हैं निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजत फातिमा, अब्रार अहमद अंसारी, इस्टार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ पन्ने और पप्पू भाई अंसारी का जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। पटेल नगर मलोट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू का। पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेव रा से हैं दिनेश चौहान, डांगरी से हैं बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे का। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली, युवान और आर के राजा का। धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से हैं गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और मधुकर येले। गांव बॉन्डी वाला फजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल का। दमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल का। कर्मा चौक लोहारीडीही जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी लालिमा साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरश्री यादव का। निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं रागिनी और मुस्कान, साथी हैं विनेश। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह का। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का। रामपुर रोड हल्द्वानी से हैं अमित कुमार, गंगा सिंह रावत और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, महेश दानिश सिद्दीकी। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म बैराग का ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। जहाँ हैं आप वहाँ हैं हम। और ये कमेंट आप सभी का हम तक पहुँचा है। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का। चंदौसी रोड उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम और बेटी हैं शालू गौतम। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून का। सब्जी मंडी बरेली से हैं सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान।

0: रजा, अफजल रजा, मोनिश सादिक और इनके मम्मी पापा साथ ही हैं, संजीदा भी और शाना भी। सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। प्रांत अल्लाह डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। जिला रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का। दही गांव नादुरा से हैं आप सभी लोग धोड़ू भातुरकर, मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल और समाधान भातुरकर का। संत नगरी शेगांव से हैं शुभम राउत और कुमार रुद्र राउत का। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और राम भाऊ तांदले का। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजान, सहिमा नवाज, हसीन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा का। गांव लोहरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुतीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी का। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर और विविधा बंडलकर का। गिरगांव महाराष्ट्र से हैं गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का। गांव जाखोस से हैं शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक का। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पाहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बाबूदीन है मेरठ कैंट से। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान का। गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी मामिका और वाणी थांदी का। पश्चिमपुरी दिल्ली से हैं उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा, सीमा साहिबा, अनमोल जुनेजा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। बड़ौदा बाजार छत्तीसगढ़ से हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। श्रोताओं, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने।
1: मैं तुझे प्यार करूं।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और ये कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा है फेसबुक पर। पंचकूला चंडीगढ़ से हैं रचिता खुराना, राहुल खुराना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का। गांव भोजपुर तगा सहनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद का। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी।

नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का। शनि बाजार कस्बा उघेती से हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन देव, प्रियल गुप्ता, कैरव गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पटियाली कासगंज से हैं मोहल्ला मिश्राना से राजीव कुमार शाके और इनके सभी दोस्त। मौलागढ़ नई बस्ती भोजीपुरा जिला बरेली से हैं तरन्नू मंसारी, तराना अंसारी, भाई अजरुद्दीन, मोहम्मद हसन अंसारी। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत। ग्राम कालापारा से हैं रामचंद्र गुप्ता और राम राजवाड़े का। अलखनाथ मंदिर के सामने से हैं गंगवार बैग लाइन से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव और इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित, राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद्र सैनी और रोविन भाई का। जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू। और जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता, ऋषिवन लाल, चंद्रहास, हीरेंद्र कुमार, त्रिलोक कुमार और मास्टर अरजीत सिंह साहू का। राजनगर मधुबनी बिहार से हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत और बिटिया हैं इनकी चुलबुल रानी। एटा रोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी और डीएच बच्चन का। परवेज अहमद का ये कमेंट हम तक पहुंचा हुआ है और ग्राम चांदूर बिस्वा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े। ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से हैं राज गवई और राजवीर गवई का। और ये जो परवेज अहमद जी का हमारे पास कमेंट आया है ये आया है शुकुलपुरा बनारस से। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। और ये कमेंट आप सभी का हम तक पहुंचा है। अलागंज जनपद शंझापुर से हैं भेजने वाले आप सभी लोग मोहम्मद रफी, डॉक्टर आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से हैं आप सभी लोग भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी, टिवांशी, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कोल्हापुर से हैं गणेशवाड़ी, संभाजी जागरूक, सारिका। तासगांव सांगली से हैं दिलीप पांबले, विश्वजीत। जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। गांव खोकारा वाले श्री गंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा का। मौला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से हैं केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, गुलनाज शमसी और रजिया शमसी का। साथी हैं बेबी मंसूरी रेडियो लिसनर्स के लिए बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। भीड़ शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय ट्यूबवेल और पीबी कुलथे का। मारहरा दरवाजा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का। जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति और एसपी जायसवाल का। गांव भटूनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं ईश्वर लाल मेहर, सुमित्र मेहर, रेहांश मेहर, सृष्टि मेहर और इनके परिवार के सभी सदस्य। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव।

0: और किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, और जिला बिजनौर से हैं असीफ चौधरी, राफत अदीब और कादिर चौधरी का। राजपुर मध्य प्रदेश से हैं घिसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे का। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन, सावन, सचिन और शक्ति का। हजारीबाग झारखंड से हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, राहुल और ऋषि का। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर पंजाब से हैं सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा संधु और मैक्स का। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह और सुनीता सिंह। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी वाई हिमाक्ष का। ग्राम धुरा बांधा बाटावारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज साहू का। शिरटे जिला सांगली से हैं हनुमंत शिंदे और बरेली सिटी से हैं सुनीता मौर्य, मानसी पायल, कृष्णा रामगोपाल मौर्य। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है सच्चा झूठा और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोताओं, आपकी पसंद में ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। मनकारा मंदिर कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह का। मलियाना सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन साहब, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का। रघुवीर नगर नई दिल्ली से हैं शमशाद खान, मोहम्मद नौशाद, अशोक कुमार जी और सिकंदर खान का पप्पू मास्टर जी। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया आफिया, इब्राहिम और सदाम का। मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश चौहरी का। गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं रेवण भाविष्टे, अनीता भाविष्टे और राहुल भाविष्टे का। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। तल्लीताल नैनीताल से हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या रावत का। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कस्बा उघेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय का। गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर राही और शाहीन फातिमा का। सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश दले और जीविका का। पुनावले पुणा से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अभिका, विशाखा सोनवने का। बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से हैं अरुण कुमार मालवीय और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पीपर पारा पालचुवा मुंगेरी छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका। रामपुर मोड़ से हैं आप सभी लोग बरेली से हैं सगीर अहमद, एमपी सिंह, ओपी सिंह यादव, पवन उपाध्याय और अजय गुप्ता जी का। श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से हैं हरिभाव बिड़वे, चिरंजीव अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रावण और सौभाग्य अनिता बिड़वे का। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत और मोहम्मद इंतजार का। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल।

राहुल शर्मा का। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर और कनी सकीरा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का। सदर बाजार कुरावली से हैं अनिल कुमार, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, राजकुमार वर्मा और अशोक वर्मा, राजकुमार वोडाना। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी का। आमा खोड़रा जिला कवर्धा से हैं राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह नेताम, दक्षप्रिया गीत सरगम नेताम। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, सोपान तैड़े, नारायण इंगले और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं आप सभी लोग। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दिव्या नेवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का। ग्राम देगवाव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात का। ये कमेंट हमारे पास आया है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु गोलू, कुसुमबाई बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का। कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन से हैं मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु का। फरीदपुर से हैं आप सभी लोग अरहान आयान, ताज सरसाज और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सुहेन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, शिव कुमार शर्मा, वेवी वेदेही जोशी, वेवी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता। अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं श्रीमती जयवंती केवट जी। खटवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। ग्राम करेली जिला बरेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी और साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह मीता। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पियामन भाई। इस गीत को गाया है हेमलता ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीतों को। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। ग्राम अझुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हैं हसमुख जी, हसान, समस, इनाया और शानूर, फलकनूर, ताज, मोहम्मद अब्बानूर और गुप्ता जी का। नई बस्ती गंजुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी का। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। रायपुर अनी जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन का। शास्त्री नगर बीट शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का। गंजुंडवारा से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी। और छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक का। ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश कोहर और सुनील पाठक का। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और के संजीव डावे राव का। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। सरलाही सोकनहा नेपाल से हैं अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके बहुत सारे साथी। फुलाय नगर बीड महाराष्ट्र से हैं बालाजी प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा का। चक पांच एमडी पत्रोड़ा से हैं मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और सुनील जनागल का। ओखला संगम विहार दिल्ली से हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का। सागर लखनातौन मध्य प्रदेश से हैं आप सभी लोग लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे का। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ का। गांव थाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का। संबलपुर काकेर से हैं फागूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु। और ये कमेंट हमारे पास आया है गोंडा उत्तर प्रदेश से है कर्नलगंज से सुशील कुमार यादव। गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से हैं रतनमाला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस प्रियांशी पुष्पा और गौरव मौर्य का। साथी हैं चंद्र प्रकाश मौर्य। पीलीभीत से हैं आप सभी लोग सुरेंद्र पाल, विजेंद्र पाल और धर्मेंद्र कुमार भाई का। मझरा दौलतपुर आंवला जिला बरेली से हैं आप सभी लोग देव सिंह यादव, अर्पित यादव और भगवान सिंह यादव का। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा का। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत।

यूपी से हैं आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सारिक अली खान का। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और सुमन का। जालंधर सिटी पंजाब से हैं सोनू रवि, राज, गुलशन, लकी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांधीनगर गुजरात से हैं सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा का। और ये कमेंट हमारे पास आया है, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं सुरेश कुमार साहू, कमल कुमार साहू, देवेंद्र कुमार, गजेंद्र, रवि कुमार, सोनू, धर्मेंद्र, राघवेंद्र, भावना, यशदीप साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जिया हुलक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का। भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। सल्लर पहलगाम कश्मीर से हैं परजादा मिराज उद DLN का। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रतेश संघई और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। धनबाद झारखंड से हैं अमरिक सिंह खनुजा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना सिंह, मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, आर्यन कृष्णा और पीहू सोनकार का। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित देविका, गजेंद्र कुमार चंदन और हियांश कुमार चंदन का। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हैं मेहराज जहां, गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी, आराध्या खड़से, आराध्या गणेश खड़से, वैष्णवी कार्तिक, देविका, स्वाति प्रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। शाहू नगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर का। साथी हैं रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। MLB रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरफ खुराना और SK पप्पी का। नर्मदा पार्क मंगलावेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल का। रदावली जिला मुरादाबाद से हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और अजीत कसाना। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोहित, जयलक्ष्मी। और ये कमेंट हमारे पास पहुंचा है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी और आरुष। साथी हैं शौर्य दिनेश। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य का। गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से हैं सज्जन कुमार जागड़ा, कार्तिक, वेदांश। और सेक्टर 18 जागाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी का। छज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है फना और इस गीत को गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे सब रंग, और सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये भजन हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ में।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोता लीजिए, सुनिए अब ये गजल पंकज उधास के सर में।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए ये गजल मिताली सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और लीजिए अब सुनिए ये गीत दलेर मेहंदी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे लोकगीतों को।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं लोकगीतों को आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए अब सुनिए ये लोकगीत नीलम वर्मा के स्वर में।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। आज कलाकार थी नीलम वर्मा और प्रतिभा पी दवे। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
1: चार मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@CBS.gmail.com।
0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे अगले कार्यक्रम जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में

0: अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजीन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का, ओह माय गॉड। इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में, विशाल दादलानी और कुमार का लिखा हुआ गाना, संगीत है विशाल शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और पहला पत्र आप सभी का हम तक पहुंचा है आज ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाह के, ज्योति शाह के, अंकित, पूजा शाह के और सक्षम शाह के का। वजीरगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात कमल वाशने, अमरीश, सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशने का। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। चनेठी बरेली से हैं आप सभी लोग विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घबड़ाकर, राही, सरिता घबड़ाकर, सिद्धांत घबड़ाकर, प्रिंस एकांश घबड़ाकर। और बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश घबड़ाकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि घबड़ाकर, साथ ही हैं परी। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति का। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनिष सेतिया का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है दलाल और इस गीत को गाया है कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति ने।

0: ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर का। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहनलाल, सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव का। ग्राम केली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू बिस्तरी अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा का। कुंज निवास धाकुंज इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पी जौहरी और शायना बी का। ग्राम बठेना पाटन से हैं बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम। छोटा सारा गांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और क्रश वर्मा का। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार का। गांव कुमारहेड़ा जिला सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया का। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप मुगलानी, जगमोहन सिंह प्रजापति का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तुरुपति साहू, थरक्ष और आरू साहू का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं नीलम पत्ता, मुकेश पत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश पत्ता का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है साजन फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और कयाग्निक ने, शब्द रचना है समीर की और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है साजन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से ये पत्र हमारे पास पहुंचा हुआ है आप सभी लोगों का। फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा, बबलू अलवी भेड़ी से हैं, अंजुम भाई और खालिदा बेगम। प्राण तालाब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अरमा नाज अंसारी और इनकी बेटी है सोनम। सारिमपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से हैं विश्वनाथ साहू, चर डोगरी परिया से हैं दुर्गाराम साहू, पीरबहुड़ा बरेली से हैं आजाद खां, दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर का। ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुस्ताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। अजीत नगर मलोट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनकदीप कौर का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है हस्ती और इस गीत को गाया है साधना सरगम, कुमार सानू और साथियों ने।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार का। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद से हैं बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। मनकारा मंदिर वीडियो कॉलोनी करगना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ पंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती।

श्रीमती ओमवती भारती, रपनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह का। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर का। दसमल चौक परतूर जिला जालना से हैं सुरेश अप्पा दसमले, सौरभ दसमले, सुधाकर दारजी सरजे। दसमले चौक परतूर जालना से हैं जय श्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा काटे और उनके परिवार के सभी सदस्य। मस्तानपुरा से हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत। वीरम गांव गुजरात से हैं अजीत भवसार, भावेश सनी, हेतल कृष्णा, जैमिन भवसार। और ये पत्र हमारे पास आया है सुदामा नगर राजस्थान से हैं, रटलाई से आप लोग। हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी का। कृष्णा टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गंज डुंडवारा से हैं मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, मेहजबी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं दुर्गा प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। गांव चौहलादा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल। और ये पत्र हमारे पास आया है कस्बा बिरसी जिला बदायूं से हैं रहमान अलवी, मनोखम बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानकी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत, शाहीन, अहिल बाबू और आदिल अलवी का। आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दामिनी और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। शब्द रचना है समीर की और संगीत से सजाया है इस गीत को नदीम श्रवण ने।

0: चार मेगा हर्ट्स यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का, जमशेदपुर से हैं, बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जयपुर निशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान का। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। लक्षनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक। मोपका भाटापारा से हैं भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा। और सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। डाबर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, अमान भारद्वाज, महीपाल, प्रदीपाल, नमन, संतोष और नितेश सोनू का। परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, अल्ताफ खान, नबील, असलम सैफी, एजी खान। और गंज डुंडवारा से हैं शमसुल कमर और शाहीन कमर। लक्सर हरिद्वार से हैं आजाद नगर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। मोहल्ला गड़गिया बरेली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी, रजिया शमसी और बेबी का। वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति का। पुराना होली चौक ग्राम गरगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता, वीर, संदीप, चंचल, सूरज शर्मा, चिंकी, अबरार अंसारी और साथ ही इनके सभी दोस्त और इनके परिवार के सभी सदस्य। पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन, वंशिका दिवाकर। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं प्रमीलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू वाई वर्मा, माया वर्मा, शुभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा का। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड, मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय,

श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला गाजीपुर से हैं, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय राजनंदगांव से हैं, याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा जेल रोड रायगढ़ से हैं, रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिवा तिवारी और डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय का चंडीगढ़ से हैं, सतीश अनेजा और विमला अनेजा बठिंडा पंजाब से हैं, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। और ये पत्र हम तक पहुंचा है छावनी अशरफ खां मंदिर के सामने बरेली से हैं आप सभी लोग, जय श्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, रामप्रसाद शर्मा, वंश छोटी, गौरी काकू, रीता और विनोद कुमार का, साथ ही इनके परिवार के सभी लोग, साथ ही इनके दोस्त। मनोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। और ये पत्र हम तक पहुंचा है जिला जलगांव से हैं आप सभी लोग, सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रविंद्र सोनार, रविंद्र डंगवाल, संतोष कुमार सोनार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है बाजीगर। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और विनोद राठौर ने, शब्द रचना है जमीर काजमी की और संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है बाजीगर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों पर आधारित अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

0: श्रोताओं अपने आगे के और अपने वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। यातायात नियमों का पालन कीजिए। धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचिए। पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दें। बूंद बूंद कीमती है, कृपया जल का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। आज की बचत ही कल की सुरक्षा है। समय का सदुपयोग कीजिए।
1: सौ दशमलव चार मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जनमंच।
2: श्रोताओं आपने ट्यून किया 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र और हम लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम जनमंच। जनमंच ये वो मंच है जहां हम बात करते हैं जनता और जनता से जुड़ी और वो बातें जो ज्वलंत है हमारे समाज में, इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। श्रोताओं ऐसे ही ढेर सारे विषयों के साथ, प्रमुख विषयों के साथ, ज्वलंत विषयों के साथ, प्रासंगिक विषयों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं और इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक विषय लेकर आए हैं आपके लिए। आप इससे इत्तेफाक रखेंगे, वो इत्तेफाक यूं भी रखेंगे क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास कि अब छुट्टियों का दौर है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है, लेकिन बच्चे अब मैदानों में कम और मोबाइल्स पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा खेलते हुए नजर आते हैं। तो खैर ये कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे आज का हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, AI, इन सब चीजों का आज के यूथ में, जेंजी में या फिर उससे भी बड़े एक एज ग्रुप में हम देखते हैं कि एज बार तो कुछ है ही नहीं, हर एज वर्ग के जो लोग हैं वो रील्स स्क्रॉल करते हैं, बनाते हैं और सारी चीजों में खो गए। तो ये सारी दुनिया, इस आभासी वर्चुअल प्लेटफॉर्म, आभासी दुनिया जो है, इन सारी प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे। आभासी दुनिया ने क्या वास्तविक दुनिया को प्रभावित किया है, ये भी मुद्दे में हम जरूर शामिल करेंगे। इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं बरेली के एक जाने माने अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लीजिए और उद्यमी भी कह लीजिए, हर तरीके से इनका जो है परिचय हम दे सकते हैं। आप हैं हमारे स्टूडियो में क्षितिज गेरा, साथ ही साथ हैं बरेली में एक अच्छा जो है रचनात्मक कार्यों में संलग्न व्यक्ति, जो शख्सियत भी कह लीजिए एक बरेली की, एक प्रतिष्ठित डांस एकेडमी चलाने वाले, एक नृत्य गुरु जिन्होंने बहुत बड़े बड़े देशी और इंटरनेशनल लेवल के भी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है, साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को प्रतिभाग करवाया भी है। तो आप हैं ऋतिक राज सक्सेना। तो कार्यक्रम में आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, धन्यवाद,
4: बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी।
2: तो अब हम बात शुरू करते हैं अपने इस मुद्दे की आपसे ही ऋतिक जी। तो ऋतिक जी, हम ये देख रहे हैं कि आज के दौर में रील्स का जो दौर, रील्स से शुरू करते हैं, सोशल मीडिया से, रील्स और ये सोशल मीडिया का जो दौर है, ये हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट है, कितना प्रभावशाली है और कितना महत्वपूर्ण है?
4: देखिए प्रभावशाली तो बहुत ज्यादा है और वो पॉजिटिव और निगेटिव आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इसका पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे आजकल के बच्चों ने नहीं, बड़ों ने भी

0: आपने बहुत सारे चैनल्स बनाए हुए हैं
1: जी
0: इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और वो उससे एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे
1: जी
0: हैं। उन्होंने एक अपना इसको प्रोफेशनल बना लिया, प्रोफेशनल व्यवसाय बना लिया है, और
1: जी
0: वो इसके जरिए बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और इसको ग्रो कर रहे हैं साथ में। वहीं कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ता है कि बच्चे आजकल इतने ज्यादा फोन से इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि वो आपको बाहर, जैसा कि आपने बोला शुरुआत में कि बच्चों को आजकल हम बाहर कम देखते हैं और घरों में फोन स्क्रॉल करते हुए ज्यादा देखते
1: जी जी
0: हैं, तो इस वजह से उसका एक नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। बच्चे सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आजकल, उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है।
1: क्षितिज जी, हम आपको श्रोताओं को बताते चलें कि हमारे बीच मौजूद हैं क्षितिज गेरा और ऋतिक राज सक्सेना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बरेली केंद्र और प्रोग्राम है जनमन। तो क्षितिज गेरा जी के बारे में हमने आपको जैसे बताया कि एक थिएटर अभिनेता, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों में प्रतिभाग किया है, बहुत सुंदर सुंदर फिल्मों में आपने जो है अभिनय किया है, अभी हम सब लगातार देख रहे हैं उन फिल्मों को। तो क्षितिज गेरा जी, हम आ गए हैं जैसा कि ऋतिक राज जी ने कहा कि हम लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं और बच्चे आजकल इन सब चीजों में ज्यादा प्रभावित हैं। तो क्या हम ऐसा देखें कि आने वाला टाइम जो है वो रील्स का ही है या वर्चुअल दुनिया का ही है, वास्तविक दुनिया रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगी भी, या फिर ये सब हम लोग इस मोबाइल में ही सिमट के रह जाएंगे?
2: मुझे लगता है कि पहले तो धन्यवाद ब्रिजेश जी ये सवाल पूछने के लिए। और अगर मैं शुरू से शुरुआत करूं, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आजकल छुट्टियों का दौर चल रहा है,
1: जी
2: तो अमूमन हम और आप अगर बात करें तो हम अपने टाइम में क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेल लेते थे या कंचे खेल लेते थे या वो
1: क्रिकेट
2: आइस
1: खेल
2: पाइस खेल
1: है,
2: लेते
1: आइस
2: थे, क्रिकेट खेल,
1: है।
2: और धूप में घंटों खेलते रहते थे।
1: जी जी
2: तो कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी, वो मैं कहूंगा कि वो कमरे में बंद रह के वो कमजोर भी होती जा रही है, क्योंकि उन्हें वो विटामिन नहीं मिल रहे हैं, या वो एक मजबूती जो हम लोगों में अपने आप शारीरिक मजबूती देखें वो खेलकूद से ही आती थी। हम घंटों खेलते थे और हम लोग की डाइट भी अच्छी होती थी। आजकल क्या है, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, उसको मम्मी स्पून फीड करा रही है, अब वो आधा पराठा खा रहा है या एक पराठा खा रहा है, उनको लग रहा है वो मम्मी हटाओ बस हटाओ।
1: जी
2: तो
1: जी
2: वो फोन में 24 घंटे हैं, आईपैड्स आ गए हैं, और कहीं ना कहीं अगर कोविड के बाद ये सब स्टार्ट हुआ है तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स भी बहुत ऑक्यूपाइड थे क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था।
1: जी
2: तो इन लोगों ने क्या करा, सबने भाई की काम कर सके तो फोन दे दिया,
1: जी
2: तो
1: जी
2: फोन एक तरीके से उनका एक नया दोस्त हुआ। तो सेकंड क्लास से लेके या जिस बच्चे को थोड़ी सी भी समझ है, अभी हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें बच्ची नींद में सो रही है और स्क्रॉल कर रही है, तो वो जो हैबिट उसकी उंगली चलाने की है वो नींद में भी वो स्क्रॉल कर रही है। तो रील से कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ ही है, क्योंकि उनका वो अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, पेशेंस लेवल खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे को अगर मुझे, मैं कहूं एज अ चाइल्ड अगर बात करूं कि मुझे ये चीज देखनी है या ये चीज चाहिए या ये चीज खाना
1: जी,
2: है
1: जी।
2: तो अगर मैं फोन पे देख ले रहा हूं, मतलब आधा लुफ्त जैसे होता है ना, एक कहीं हमें बुलाया जाता है और इतने सारे ढेर सारे पकवान होते हैं और बड़ा मजा आता है, तो वो इतने पकवान रखे पहले ही आधा पेट भर जा रहा है, तो वो आधा मजा जो बच्चों को आ जा रहा है तो पहले ही मिल जा रहा है मोबाइल पे। तो कहीं ना कहीं ये पीढ़ी है तो बहुत तेज फास्ट है, ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट है और इनकी अप्रोच बहुत अच्छी, और ये बहुत फ्रंटल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब हमारी तरह नहीं, जो मुझे लगता है, मैं कोई इसमें बुराई नहीं कर रहा हूं, बट उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वो लोग बहुत स्ट्रांग है और उन्हें एक्चुअली कोई चाहिए ही नहीं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो उन्हें कुछ चाहिए वो सोचते नहीं मैं सीख लूंगा और मैं अचीव कर लूंगा। जैसे हम लोग एक दोस्त से पूछते थे या बड़े भाई से पूछते थे एक सलाह के तौर पे, तो उनपे उनका वो यूट्यूब और गूगल जेमिनी और AI आ गया है, तो वो परिवार से थोड़ी दूरी हो गई है, कमरे में सब कुछ अवेलेबल है।
1: तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही क्षितिज जी, बहुत सारी बातों को आपने जो है सारांश किया जिन बातों का, उसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बच्चों के जो है मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मस्तिष्क की बात की आपने, ठीक कहा कि बच्चे को इन्हें किसी को चाहिए ही नहीं, हम लोग चीजें पूछते थे कि भाई आप अपने बड़ों से पूछ लिया, कुछ नहीं समझ में आता था तो कल के अभ्यास होता था हमारे को, जो हम लोग अपने हमारी बुक में होता था ना, पहले टाइटल होता था आओ करके सीखें, है ना, अब बच्चे जो है वो अपने
0: फोन से ही सीख,
1: सारी चीजें जो है उनको अनुभव वहीं से मिल जा रहा है, तो कोई चाहिए ही नहीं
0: उनको।
1: तो ऋतिक जी, मतलब ये जो शौक है
0: जी,
1: ये जो लाइक्स और हार्ट्स पाने का जो भागदौड़ है
0: जी, जी।
1: और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअर अपना बनाने का जो भागदौड़ है
0: जी।
1: ये कहां जाके रुकेगी, क्या लगता है आपको, ये किसको, इसका लेवल है?
0: विजय जी, मुझे लगता है कि इसका लेवल तो हम ऐसे डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से इसका यूज बढ़ता जा रहा है और एडिक्शन होता जा रहा है एक तरीके का ना, कि हर किसी को, मतलब अगर आप देखो कि किसी ने किसी की पोस्ट को लाइक नहीं किया है
1: जी, जी, जी।
0: तो कहीं ना कहीं वो परेशान देखेगा,
1: ईगो से भी जोड़ ले रहा है,
0: वो ईगो से जोड़ ले रहा है कि यार उसने मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया। किया या अब मैं इसका भी पोस्ट लाइक नहीं करूंगा, और अगर लाइक ज्यादा नहीं आया तो अब वो उसके ऊपर काम करने की लाइक क्यों नहीं आया, तो हमें इसमें और क्या करना चाहिए।
1: अच्छा, आप लोग भी चूंकि सोशल मीडिया से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या आप लोग के साथ भी होता है या हम लोगों के साथ

0: होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई स्टेटस लगाया अपना,
1: जी जी
0: तो क्या थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग चेक करते हैं कि किसने देखा, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, क्या मतलब ये है, एग्जिस्ट करती है ये बात?
1: देखिए, मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि
0: जी
1: जब ये नई चीज हमें भी पता चले,
0: जी जी
1: बिकॉज हम उस पड़ाव पे हैं कि हम लोग एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, अपने अपने व्यवसाय में सब लोग बिजी
0: जी
1: हैं कहीं ना
0: जी
1: कहीं,
0: जी
1: तो कहीं ना कहीं थोड़े देर बाद महसूस होता है कि
0: जी
1: जैसे जब ये लॉन्च हुआ तो शायद 6 महीने या 1 साल हम लोग को भी टाइम लगा ये चीज समझने के लिए कि ये एडिक्शन है या ये समय बर्बाद कर रहा है या ये कुछ हमें सिखा भी रहा है।
0: हाँ
1: तो मुझे आज महसूस, आज लगता है जैसे ऋतिक भी बैठा है और ऋतिक और हम काफी कंटेंट साथ में बनाते हैं, तो एक बार मेरी ऋतिक से बात भी हो रही थी कि यार ऋतिक ये इसमें लाइक्स नहीं आए या व्यूज नहीं आए, तो मैं कभी कभार इससे ये सवाल कर लेता हूँ, नहीं यार मैं करके छोड़ देता हूँ, तो मैं अभी एट प्रेजेंट मुझे इफेक्ट नहीं होता, मैं अगर कोई कंटेंट पढ़ रहा है या डाल रहे हैं हम लोग तो यही होता है कि डाल के छोड़ो और अपने काम में बिजी हो जाओ, बेस्ट वही है क्योंकि आपका एक तो माइंड फ्री रहेगा और टेक इट एज अ जॉब कि अगर आप कोई चीज पेज रन करना चाह रहे हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल आ गया है, हमारे टाइम में तो 1100 और पहने 3390 और
0: वो
1: 3310
0: छोटे छोटे फोन
1: छोटे छोटे फोन होते थे,
0: स्क्रीन
1: तो जिनके पास अभी से स्मार्टफोन है
0: जी
1: तो हम उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो 24 घंटे नहीं है, हमारे पास वही एंटरटेनमेंट का शायद मुझे लगता है घर जाके आधा घंटा या 1 घंटा होता है, तो अगर कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो रादर देन उसको ज्यादा टाइम देने की जगह सीधे अपलोड करो और अपने काम में बिजी हो जाओ।
0: एक इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि पहले हिस्से में कहा था कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला खुद में सक्षम है, मजबूत है, आप उसको मजबूती की बात संज्ञा दे रहे। तो ऋतिक जी, कोई कंटेंट आपने बनाया, बहुत दिल से बनाया, ऐसा करा, सोशल मीडिया में लोग बहुत ज्यादा एंगेज हैं, अपना बहुत सारा समय देते हैं, कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं,
1: जी जी
0: और जब वो नहीं हिट हुआ,
1: जी जी
0: नहीं हिट हुआ मतलब आपने जो आशा की उसके अनुरूप आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला,
1: जी
0: तो क्या यही वाली जो ताकत है कि मैं
1: जी
0: अकेले सब कुछ कर लूं, ये कमजोरी नहीं बन जाती कि उसको अकेलापन की, यार मेरे पास तो कोई बात करने को भी नहीं है और जो मैं कंटेंट बना रहा हूं वो भी नहीं चल रहा है,
1: जी जी
0: और जो सोशल मीडिया में हम लोग इतना समय देते हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते नाते भी स्टेक पे आ
1: जी
0: जाते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: आ गए हैं बल्कि, यहां तक की बात करें तो क्या लगता है आपको?
2: ब्रजेश जी, मुझे लगता है ना, देखिए कंटेंट बनाना खराब नहीं है, और जिस तरीके के मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि आजकल इससे बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं,
0: जी
2: लेकिन हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि हमें कितना टाइम उसको देना है और कितना टाइम बाकी की चीजों को देना है, क्योंकि सब कुछ उससे नहीं हो सकता। एआई अभी आया है, आप एआई से बहुत सारी चीजें कर सकते हो लेकिन आप अपनी फीलिंग्स एआई से शेयर नहीं कर सकते, करोगे भी तो वो आपको बता तो देगा, मशीनी जवाब होगा। अगर आप यही फीलिंग्स के साथ में आप अपने दोस्त के साथ में कुछ शेयर करोगे तो शायद वो ज्यादा अच्छे से समझकर और आपको उस चीज का जवाब देगा और आप उससे सेटिस्फाइड भी होगे, और यही चीज आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हो या उनके साथ में बैठ के अगर टाइम स्पेंड करते हो तो जितना वो आपको समझेंगे उतना एआई आपको नहीं समझेगा आपको।
0: तो मैं, मेरा प्रश्न फिर से वही है कि जो युवा है या मान लीजिए हमारे सभी के वर्गों की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ युवा के, हालांकि जो है एक वर्ग पुराना जो है, अब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें या अन्य प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें, रील्स की बात करें, तो बुजुर्ग लोग भी अब इस क्षेत्र में आ गए हैं और अपनी जो एक्टिविटीज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे लाइक्स और हार्ट्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास उम्र का एक अनुभव है, लोग हैं, ढेर सारा समाज है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ये पीढ़ी एंटर कर रही है इनके मद्देनजर कि क्या वो इस कंटेंट के चक्कर में एक समय के बाद अकेले तो नहीं रह जाएंगे या कहीं वो उनको अवसाद या डिप्रेशन की तरफ तो नहीं ले जाएगा अगर वो जो कर रहे हैं फुल टाइम दे रहे हैं और नहीं हिट हो रहे हैं तो?
1: मुझे इसमें मैं ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो ये कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो मैं इसलिए इन्हें सक्षम मानता हूं क्योंकि इनके पास अगर किसी चीज का सवाल नहीं मिल पा रहा है या एआई नहीं दे पा रही है तो दे आर रेडी टू स्पेंड। हम लोग के साथ क्या है, लिमिटेड सोर्सेस थे, पैसे की तंगी कह सकते हो या आप खर्च करने से पहले सोचते थे, यहां पे क्या है, दे आर वेरी रेडी राइट नाउ। कि मैंने देखा यंगस्टर्स को, उनसे आप मार्केटिंग की बात करो या किसी पेज को रन करने के लिए, तो उनके पास पूरा पैकेज है, दे नो कि मतलब हम कैसे बेचना है हमें, और अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मतलब मेरे पास कैमरामैन नहीं है तो मुझे मालूम है मैंने यहां से 4,000 लिए, 2,000 लिए, उनको वो अभी से ही टाइम मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस वो मुझे लग रहा है वो करते करते आ रहे हैं,
0: तो यानी कि फेल होने का कोई चांस नहीं है।
1: हाँ, इंटरनेट बंद कर दें अगर तो जरूर हो सकता।
0: तो इंटरनेट, देखिए इंटरनेट की पाबंदियां हम लोग देखते हैं, इंटरनेट के हम लोग

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% का
2: शुदा हो आपने ट्यून। उन बच्चों के अंदर फीलिंग्स ही नहीं तो उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई आए कोई जाए। क्या लगता है ऋतिक जी आपको कि इस सब चीजों के लिए हम कैसे डेवलपमेंट और आगे बढ़े भावनात्मक?
3: विजय जी, इसके पीछे ना मुझे लगता है जो आजकल का दौर चल रहा है और जो बच्चों में एक अवसाद भी देखने को मिल रहा है, ये सब की वजह भी एक है। उसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आजकल इतने व्यस्तता हो गई है सबकी, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, वो सोचते हैं कि बच्चा बिजी रहे और हम अपने काम में बिजी रहें। तो कहीं ना कहीं मैंने इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक रिलेटिव हैं, मैंने देखा कि उनका एक छोटा बच्चा है, 1.5-2 साल का बच्चा होगा। तो अब वो 1.5-2 साल के बच्चों को इतना नहीं पता फोन में क्या है क्या नहीं है, तो वो जैसे ही रोता है तो बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं। अब वो बच्चा चुप हो जाता है। वो सोचो आप 2-2.5 साल का बच्चा वो हाथ से स्क्रॉल कर रहा है और अपने आप हंस रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आदत बच्चों की पेरेंट्स ने ही डाली है कि बच्चा उस चीज का आदी हो गया है और फिर उसको छुपाने के लिए फोन दे दिया।
2: अगर बात करें पौराणिक कहानियों की तो हम बात करते हैं कि अभिमन्यु की बात करें तो अभिमन्यु जब गर्भ में थे तो उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और पूरा युद्ध जो है लड़के अच्छा संघर्ष किया उन्होंने। लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा जिक्र है पुराणों में और पौराणिक कहानियों में कि उनकी माता को नींद आने की वजह से वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जान पाए। तो इसका संदर्भ ये है कि क्या माताएं या जो पेरेंट्स हैं जो एक्ट करते हैं, जो देखते हैं सुनते हैं, उन सब चीजों का गर्भस्थ शिशु की बात के साथ साथ जो बच्चे घर में हैं उन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है और वो देख के फिर ऑटोमेटिक जो बच्चा 6 महीने का है वो भी मोबाइल देख के खुश हो जा रहा है। वो भी चीजें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब उसके लिए माँ की गोद में है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है कि वो मोबाइल देख के चुप हो जाता है और माँ की गोद में रोता रहता है।
3: जी जी।
2: तो क्या ये सब चीजें भी जिम्मेदार हैं?
4: बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता हूं जो कि एक पूरी फैमिली और मैं 6 साल से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। वो कहीं अफ्रीका में है और जंगल में ही रह रहे हैं, शेर वेर पाल रखे हैं और वो अर्थ वाला जो ह्यूमन जो पहले रहते थे वैसे ही जी रहे हैं और वो बहुत हैप्पी हैं। तो अगर किसी भी माता पिता को अगर अपने बच्चे को परवरिश अच्छी देनी है या बेबी कोई प्लान कर रहा है करना भी है तो मेरा तो सबसे पहले उनसे इंडिविजुअली यही रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से कि अगर वो बेबी प्लान करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो उनको अपने लिए पहले बहुत ही हार्ड होना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें कि हम अगर खुद छोड़नी पड़ेगी कि वो अगर लेडी अगर मदर प्रेग्नेंट है तो वो फोन ना पढ़ के वो उसे आगे कैसा देखना चाहती है या उसका फ्यूचर कैसे देखना चाहती है उन सब चीजों के बारे में
2: वैसा ही रिएक्ट। बड़ी सुंदर एक छोटी सी प्रसंग का जिक्र आता है इस बात से जुड़ता हुआ कि श्रोताओं, एक बार की बात है, एक बच्चे को एक महिला लेके पहुंची महात्मा गांधी के पास और महात्मा गांधी जी से कही कि ऐसा है गांधी जी की ये बच्चा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और ये बच्चे से आप ये कह दीजिए कि ये गुड़ ना खाए। तो महात्मा गांधी जी के पास जब वो बच्चा पहुंचा तो उन्होंने कहा ऐसा है बहन जी, आप जो है वो कल आइएगा, ये कहा उनसे कल आइए। तो वो महिला बस बच्चे को लेकर चली गई। फिर अगले दिन पहुंची तो गांधी जी से कहा आप कह दीजिए कि गुड़ ना खाए, डॉक्टर ने मना किया इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो गांधी जी बोले ऐसा करिएगा बहन जी कल आइए। फिर अगले दिन पहुंची वो लेकर के तो महात्मा गांधी जी बोले कि माफ कीजिएगा बहन जी, प्लीज आप इसे कल ले। अब जब वो चौथे दिन लेके पहुंची महात्मा गांधी जी के पास कि साहब इस बच्चे से मना कर दीजिए कि ये गुड़ ना खाए, डॉक्टर ने कहा अब ये खाएगा तो इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा बेटा तुम दांत जो है गुड़ मत खाना क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है और नहीं तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे और ऐसे ऐसे, तो आपको छोड़ना ही होगा। तो गांधी जी इसकी बात उस बच्चे ने मानी, बोला ठीक है गांधी जी आपने कहा है तो अब मैं नहीं खाऊंगा और मैं अच्छे से बिहेव करूंगा, जो माँ कहेगी वो करूंगा। ऐसे वो बच्चे लोग जाने लगे उसकी माँ लेके उस बच्चे को। चलते चलते उसकी माँ के मन में कौतूहल बस ये प्रश्न आया तो गांधी जी से उन्होंने पूछ ही लिया कि महात्मा जी बताइए कि ये बात तो आप पहले ही दिन कह देते, मुझे 4 दिन आपने यहाँ बुलाया, मैं काफी परेशान हुई यहाँ। तो गांधी जी ने इसका उत्तर ये दिया कि देखिए बहन जी मैं बता तो पहले ही दिन देता, ये बात कह जरूर देता, लेकिन पिछले 3 दिनों तक मैं लगातार मैं खुद ही गुड़ मुझे बहुत पसंद है तो मैं कैसे जो चीज मेरी सबसे प्रिय है वो मैं उस बच्चे को मना कैसे कर दूं, मेरा गवारा नहीं कर रहा था अंदर से। तो पहले उन्होंने खुद त्याग किया, एक दिन परित्याग किया उस गुड़ को अपने जीवन से, तब उसकी पीड़ा को समझा, तब उस बच्चे को बोला। तो खैर आपकी बात से ये रिलेट हुई कि भाई पहले हमको खुद वैसा बिहेव करना होगा। अच्छा अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात की सोशल मीडिया, आजकल रील्स कंटेंट, यूट्यूब वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज, इन सारी चीजों की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे जीवन में कितना दखल बढ़, क्या करें, क्या एक आदर्श स्थिति है वो, उसके बारे में कुछ बताइए ऋतिक जी हमारे श्रोताओं।
3: आदर्श स्थिति यही है कि जैसे हम लोगों ने अभी आपको बताया कि एक इसको व्यवसाय की तरह भी लोग देख रहे हैं और कहीं

0: अगर इसका एडिक्शन पड़ रहा है तो वो खराब भी हो रहा है।
1: जी
0: बहुत सारे लोग अपना काम के समय पे भी सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो वो इतना अपने काम को तवज्जो ही नहीं देते, तो वो फोन में ही लगे हुए हैं। और आजकल तो आप ये भी देखने को मिलता है कि चार लोग बैठे हैं आपस में, फ्रेंड भी बैठे हैं, तो वो बात तो कर रहे हैं लेकिन
1: दिमाग मोबाइल
0: उनका
1: में है।
0: फोन में ही है,
1: हाँ
0: तो वो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट कर रहा है आपस में, रिलेशंस को भी कहीं ना कहीं वो खराब कर रहा है, एक दूसरे को हम लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो इस सब का बहुत खराब असर पड़ रहा है। लेकिन जो लोग इसको अच्छे से समझ चुके हैं और समझ के अपने व्यवसाय की तरह इसको देख रहे हैं, जैसे हम लोग खुद भी, मैंने अभी जिक्र किया क्षितिज ने भी,
1: जी
0: कि हम
1: जी
0: लोग खुद भी कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हम लोग वो कंटेंट बनाने तक ही उसको टाइम देते हैं, उसके अलावा फिर हमारा अपना अपना बिजनेस, हम उसमें बिजी होते हैं, तो वो एक हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितना टाइम देना है उसको।
1: यानी कि आदर्श स्थिति आपके अनुसार यह है कि अपने काम के साथ साथ
0: जी
1: अगर
0: जी
1: आप इससे जुड़े हैं, इस
0: हाँ
1: क्षेत्र में आना चाहते हैं, पसंद है चीजें,
0: जी
1: तो
0: जी
1: करिए,
0: करिए,
1: लेकिन अपने काम, जो भी आप काम
0: हाँ
1: कर रहे हैं,
0: समय
1: उसमें
0: सीमा
1: फोकस
0: निर्धारित
1: बने रहे।
0: कीजिए।
1: क्षितिज जी, ये बात आई काम को, समय दीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप फिटनेस फ्रीक भी, हम देखते हैं कि आप लगातार अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखते हैं। तो हम, आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि लोग खाने पे कम ध्यान दे रहे हैं, बच्चा मतलब अपना ना प्रोटीन ले रहा है ना ठीक से, तो क्या इन सब चीजों की भागदौड़ में, आपाधापी में, जैसे कि समय अपने काम पे ध्यान दे, हम लोग अपनी स्वास्थ्य को भी कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
1: जी
0: पहले हम लोग एआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस पर स्टार्ट किया है। तो एआई का क्या है, लोग बहुत अच्छा क्रिएट भी कर रहे हैं। मतलब मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि लोग, मतलब ये जो बच्चे वीडियोस कैसे बना दे रहे हैं, क्योंकि एआई आपका आपका फेस बिल्कुल क्रिएट कर दे रहा है। कहीं कहीं आगे चल के मुझे लग रहा है जो भी रॉबरीज, या हम तो बहुत ग्राउंड लेवल पे हैं, मतलब हमें अगर एआई क्या कि हाँ एक टेक्स्ट सही कर देगा, वो इतनी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: बट जो यूज हो रहा है एआई का, बहुत नेक्स्ट लेवल हो रहा है कि आप रोबोट बना दे रहे हो। कितनी वीडियोस वायरल हुई है कि लोगों ने किसी के चेहरे से कुछ कंटेंट लीक कर दिया, जब
1: हाँ,
0: नया नया
1: जैसे
0: ये,
1: डीप फेक वगैरह
0: हाँ,
1: आए।
0: डीफेम वगैरह चीजें हो रही हैं। और रही बात फिटनेस की, तो फिटनेस की तो मैंने जिम में भी देखा है, हर बंदा पता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहने हैं, हेडफोन्स कान में लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम जिम में भी है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट हर बंदा किसी से कोई बात नहीं कर रहा। पहले जिम में क्या होता था, हम एक दूसरे से बात करते थे, अरे यार भैया भाई ये सेट लगवा दो, अरे यार ये सही है भैया, सही बन रहा है, तो वो चीजें खत्म हो गई हैं। अच्छा, मेरा स्वभाव थोड़ा अलग है, मैं अगर देखता हूँ कोई गलत कर रहा है तो मुझे लगता है नहीं यार टोक दूं मैं, या मैं सोचता हूँ कि ट्रेनर से कहूँ कि इन बच्चों को सही सलाह दे। तो अभी हाल ही में मैंने एक बच्चे को, वो लगभग 16 साल का था, और मैंने उससे कहा बेटा ये एक्सरसाइज तुम क्यों कर रहे हो, मतलब इतना वेट क्यों उठा रहे हो, अभी तुम ग्रोइंग स्टेज है। और मैं सारे फिटनेस लवर्स से यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो ग्रोइंग स्टेज है 18 से 20 21 साल की, आप उसे नेचुरली ग्रो करो। आपको अगर फिटनेस में जाना है या कुछ भी करना है, आप आउटडोर एक्टिविटीज में ध्यान दो, आप खेलो कूदो, रनिंग करो, पुशअप्स करो, लटको, रस्सी चढ़ो, ये सब जो आपको ओवरऑल बॉडी डेवलप करेगी। आप वेट ट्रेनिंग पे मत जाओ। और रही बात एआई की, हाँ बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट आपको उसमें ना फिल्टर लगाना पड़ेगा, बस छोटा सा फिल्टर लगाना है दिमाग में भी कि मुझे क्या चाहिए, मेरी जरूरत क्या है, उसके अनुसार मैं वो चीज सीखूं और आगे बढ़ूं और साइड करूं सारी नेगेटिव चीजें।
1: अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी बात की आपने, तो ऋतिक जी और क्षितिज जी, आप दोनों से ही मेरा ये प्रश्न है। ऋतिक जी, पहले आप मुझे बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई,
0: जी,
1: इसकी अपनी अपनी एक चुनौतियां हैं, इसका
0: जी,
1: रिस्क है, बहुत
0: जी,
1: सारी चीजें, उस पर हम जरूर किसी और दिन बात करेंगे,
0: जी,
1: और अभी हमने कुछ कुछ का जिक्र भी किया, लेकिन आपके काम में एआई कितना सहायक है?
0: विजय जी, हमारे काम में हमें पता है कि हमें कितना यूज करना है एआई का, तो हम लोग जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को पोस्टर्स बनाना होता है, तो वो हम लोग एआई के यूज से बनाते हैं। या अभी जैसे कि मेरा डांस स्टूडियो भी है, तो हम लोगों को बहुत सारे इवेंट्स में और अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस प्रिपेयर करानी होती है डांस की, तो किसका क्या रिलेशन है, आजकल तो एक ट्रेंड हो गया ये भी कि डांस करना ही करना है हर फंक्शन में, तो कौन मामी है कौन बुआ है, तो वो एआई पे मैं कैसे यूज करता हूँ बताता हूँ आपको। तो वो एआई पे डाल दिया कि मामी के लिए, बुआ जी के लिए और भतीजी का गाना बताओ, तो पूरा एआई डिटेल्स भेज देती, ये गाने हैं और आप इनको ऐसे फ्यूजन बना सकते हो, तो मैं ऐसे काम में यूज
1: मतलब
0: लेता
1: इसका
0: हूँ।
1: ये सार्थक यूज है,
0: हाँ, ये
1: इसका
0: सार्थक यूज
1: पॉजिटिव
0: है।
1: यूज है।
0: इसका नेगेटिव यूज ये है, जैसे कि अभी क्षितिज ने भी बताया कि वो डीप फेक वीडियोस बना दिया या किसी का फेस लगा के कुछ कर
1: जी जी
0: दिया,
1: जी जी
0: तो ये उसका गलत यूज भी है। और
1: हाँ
0: कहीं ना कहीं एआई एक तरीके से, आज आप देखो कि बहुत सारा काम पहले एडिटर की जरूरत पड़ती थी, तो
1: हाँ
0: बहुत सारा एक तरीके से रोजगार भी वो जा रहा है एआई के जरिए,
1: ये भी
0: क्योंकि
1: एक संकट है,
0: ये भी एक संकट है
1: ये तो
0: उसका।
1: चुनौतियां की
0: जी
1: बात
0: जी
1: कर रहे हैं, तो चुनौतियों और लाभ, इस
0: जी
1: पर पूरा पूरा एक कार्यक्रम किया जा सकता है और बहुत सारी इसकी चुनौतियां और लाभ है। अब क्षितिज जी आप बताइए कि जो एआई है कितना सरल किया है, मतलब आपको कितना सहयोग देता है एआई?
0: देखिए मुझे तो कुछ भी अगर जरूरत हो, पहले हम जैसे बड़े भाई से पूछते थे या जीजू से पूछ लिया तो वो

0: एआई हमारे बड़े भैया हैं,
1: अच्छा
0: तो एआई से आप डाल दो बेटा ये बता दो, और वो अच्छे से बात करता है। बस आप ये है कि उसे सही में घर का ही बंदा समझ के बात करो, इंग्लिश और हिंदी की कोई उसमें बाधा नहीं है।
1: हाँ
0: आप टाइप करेंगे कि ये मुझे आप पैकेज बना दो,
1: हाँ
0: या ये ऑफर निकाल दो कि ये चीज इतने की बेचनी है, या
1: हाँ
0: मैं कभी योगा क्लासेस सिखाता था तो उसका ई फ्लायर बनाना है तो वो आप पिक्चर्स अपलोड करो, वो इतना प्यारा सा, और उसमें आपको ऑप्शंस भी देता है। तो
1: हाँ
0: आपकी जो एडिटर या पोस्टर के जो आप पैसे बाहर देते थे, वो एआई आपका फ्री में बना दे रहा है।
1: हाँ
0: और कहीं ना कहीं वीएफएक्स, या अगर हम फिल्म के बारे में बात करें तो वीएफएक्स जो पहले यूज होते थे कि आप बड़ी सी जगह ले रहे हो और ग्रीन पर्दे पे शूट कर रहे हो, तो ये एआई को आप अगर प्रॉम्प्ट अच्छा दो तो वो अच्छी एडिटिंग करके अच्छे ग्राफिक्स के साथ, पर हाँ वो वाला वर्जन थोड़ा सा पेड होता है, बट वो 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो पेड में बहुत अच्छा बना दे रहा है। तो सरल और समझने वाला ये जो जो

0: पेड़ में बहुत अच्छा बना दे रहा। तो सरल और समझने वाला ये जो जो कॉन्सेप्ट है एआई का, ये आप उसे अच्छा प्रॉम्प्ट दो, ये आपका बहुत बड़ा सहायक बनेगा और आपकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी।
1: तो हम लोग बात कर रहे हैं एआई की, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, हम लोग बात कर रहे हैं आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो लोग हैं उनका जो है सोशल मीडिया में क्या दखल है, क्या क्रेज है, क्या उनके लिए बेहतर है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, और खत्म होते भावनात्मक संबंध जो कि ऐसा लग रहा है खत्म हो रहे हैं एक पीढ़ी के बाद, जैसा कि सचिन जी ने जिक्र किया था अपनी वक्तव्य में कि जो वो बच्चा ग्रो हो रहा है उन्हीं चीजों के साथ, जो जो परिस्थितियां उसके लिए सामान्य है, वो फिर उसको वो न रहने का एहसास ही नहीं होगा, मतलब वो फिर उसको कुछ अटपटा नहीं लगेगा। तो चलते चलते ऋतिक जी, हमारे श्रोताओं के साथ आप जी क्या आदर्श स्थिति फिर से साझा करेंगे कि क्या क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
2: ब्रजेश जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसा हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये सबका अपने ऊपर है कि आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है एआई का या फिर वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन सबका एक समय सीमा होनी चाहिए, वो आप निर्धारित करें कि आपको कितना समय एआई को देना है, कितना समय आपके काम को देना है, कितना समय पढ़ाई को देना है, कितना समय आपके अपने संबंधियों को देना है। ये अगर हम लोग डिसाइड करके अगर उसको निर्धारित कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा यूज है और बहुत हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हम निर्धारित नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में बहुत हमें ही ये इसका निगेटिव इफेक्ट मिलेगा।
1: तो क्षितिज जी, चलते चलते संक्षेप में हमारे श्रोताओं के साथ कुछ की पॉइंट साझा कीजिए कि वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े इस चीज़।
0: नहीं, बिल्कुल, मैं इसके बारे में काफी देर से सोच रहा हूँ कि एजुकेशनल लेवल पे हमें चीजें परिवर्तन लाना होगा कि अगर पेरेंट्स को, जैसे अभी समर वेकेशन चल रही है, तो अगर आपको एआई या बच्चे को आपका मोबाइल पसंद है तो मुझे लगता है एज अ पेरेंट आप स्टडी करो अपने बच्चे को और उसे टास्क दो कि बेटा अच्छा ठीक है आज मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, इसकी रेसिपी निकालो। तो क्या है ना, वो इन्वॉल्व होगा, प्लस जो मदर और सन का जो बॉन्ड है वो इंटरेक्शन खत्म नहीं होगा मोबाइल के आने से, तो छोटे छोटे आप टास्क दे सकते हो उसे।
1: तो खैर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि माता पिता भी जो है अब बच्चों को वहां से हटाना थोड़ा सा, या जनरेशन को वहां से दूर करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है, लेकिन जरूरी भी है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसके एवज में खुद जुड़ सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। तो श्रोताओं, चलते चलते अब हम जो है कार्यक्रम के अंतिम समय में आ गए हैं, समय अब एकदम हमारे पास सीमित है। आपके साथ ये बात जरूर साझा करेंगे कि देखिए गूगल, जेमिनी या फिर एआई प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स आभासी हैं, वर्चुअल है। वास्तविक रियल वो है जो हम सांस ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं और जो अपने लोगों के साथ हम जी रहे हैं। तो उस मोमेंट को जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्राउंड्स पर जाइए, प्ले करिए, इंडोर गेम्स के बजाय प्राथमिकता दीजिए आउटडोर गेम्स को। और श्रोताओं, एक बहुत सुंदर और इंपॉर्टेंट टर्म है, मोबाइल डिटॉक्स। आज ही हमारे जीवन में इसको उतार लीजिए। जैसे हम सब लोग व्रत रखते हैं, एक दिन कोई सोमवार का, कोई बृहस्पतिवार का, कोई मंगलवार का, उस तरीके से कुछ दिन कुछ घंटे हर दिन हमें अपने जीवन से निकाल करके इस मोबाइल को जो है डिटॉक्स का जीवन जीना होगा कि हमें मोबाइल को अपने जीवन से दूर करना होगा। ये इंटरनेट हमारे लिए वरदान भी है और ऐसा ना हो कि अभिशाप बने, इससे पहले बेहतर है कि हम सब आइए एक स्वस्थ, हसमुख, खुशी वाला समाज की स्थापना करते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े ऋतिक राज सक्सेना जी आपका, क्षितिज गेरा जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ स्टूडियोज में पधारे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा,
0: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
3: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जनमंच। प्रतिभागी थे क्षितिज घेरा, ऋतिक राज सक्सेना और ऐसी बात कर रहे थे ब्रजेश तिवारी।

0: केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbarelicbs@gmail.com।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए मुंबई से सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

सौदशम लव 4 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न के

कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत

0: लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा मिल गया।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर, बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्त।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनूप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो हैं गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है, आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूं। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूं। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी।

0: हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कम भी नहीं, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ, आओ ना।

0: मैं ही तुम्हें कहां पहचान पाया बेनी।
1: कुछ भी हो तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कंपिटेंट डॉक्टर होंगे।
0: तो क्या मैं कंपिटेंट नहीं हुआ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
0: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खासतौर पर इस हालत में।
0: Exactly.
1: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
0: सब वो बातें रहने दीजिए अब। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
0: हाँ हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
0: वैसी
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
0: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
2: जी,
0: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
0: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
0: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
2: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। है? इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी

0: जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया।

0: कोई खास बात?
1: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
1: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
1: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
1: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
1: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
0: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
1: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो, बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। लो बेनी आ रहे हैं। आइए आइए, कहाँ पे जाना?
2: ओ डॉक्टर
1: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है, पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या है?
2: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
1: भाई रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
2: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
1: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
2: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
1: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। सी यू अगेन, बाय।
0: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
2: तुम्हारे लिए एक चीज है।
0: अच्छा, देखो तो।
2: लो देख लो।
0: ये अब काहे को? और यहाँ
2: मेरी ओर से प्रेजेंट।
0: प्रेजेंट?
2: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
0: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
0: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
2: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे।
0: क्या क्या क्या हुआ आपको? लेट आइए, बेनी, डॉक्टर। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा।

0: गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
1: Oh, no.
0: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
1: आखिर ये हुआ कैसे?
0: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
2: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
3: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
2: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
3: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
2: ना देजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो। हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम तेज तक बैठकर बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
1: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी हूँ।

0: होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। आज के दीवाने हैं आफताब हुसैन। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम।
5: मस्तिष्क को याद दिला रही है। मैं आफ्ताब हुसैन लखनऊ से उस खुशनुमा माहौल और उस खुशगवार अवसर को याद कर रहा हूँ कि आज 90 साल आकाशवाणी को हो गए और यह सिलसिला बदस्तूर तब से और आज तक चल रहा है। ये खूबसूरत सा सफर हर एक को गीत और संगीत सुनने वालों को आनंद विभोर कर देता है, तो मेरी तो यही शुभकामनाएं है कि यह जो सफर है ये इसी खूबसूरती के साथ चलता रहे। आप सब लोग इसका आनंद लेते रहें, लुत्फ लेते रहें और हम सभी इस सफर के जो गवाह बने हैं वो एक खुशगवार पल है। बहुत बहुत आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: अभी आप सुन रहे थे आफताब हुसैन आकाशवाणी दीवाने को। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे प्रस्तुत है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है नेकी कर दरिया में डाल।
6: आपने ट्यून किया 100.4 FM, क्योंकि जहां है आप वहां है हम। और कार्यक्रम सुदेश कुमार सैनिक लेकर के हाजिर है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। विषय है नेकी कर दरिया में डाल। देखते हैं किस कॉलर की पहली कॉल। हेलो,
7: हेलो आकाशवाणी।
6: हाँ जी, हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में।
7: नमस्कार सर।
6: नमस्कार। नेकी कर दरिया में डाल, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
7: नेकी कर दरिया में डाल।
6: हाँ जी,
7: हाँ नेकी करना ही चाहिए। दरिया में डाल के क्या वो है, जैसे बहुत नेकी कर रहे हैं फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता है।
6: लेकिन कुदरत की नजर में तो फायदा है।
7: हाँ, कुदरत की जी है जी।
6: हम नेकी करेंगे, नेकी करते जाइए, उसका परिणाम की चिंता मत करिए, क्योंकि हाँ। परिणाम देने वाला, फल देने वाला ऊपर वाला है।
7: ऊपर वाला जी।
6: तो इसलिए नेकी कर दरिया में डाल,
7: दरिया में डाल।
6: तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
7: फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना, तेरे बिना दिल लगता नहीं।
6: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी ही पसंद का गीत।

0: हेलो
1: जी सर नमस्कार, मैं अनुखलाल मौर्या बोल रहा हूँ, कटरा चांदका पुराना सर बरेली से।
0: आज का विषय पता है आपको? विषय है नेकी कर दरिया में डाल। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, किसी के साथ में नेकी करने वाला आदमी कभी दरिया में डाल।
0: कहने का मतलब है कि आप नेकी करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, मतलब ये है कि उसके फल की चिंता मत करो। फल देने वाला कौन है? ऊपर वाला।
1: कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला।
0: हाँ तो यही है, नेकी कर दरिया में डाल। आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: ये करनी भरनी का, कैसी करनी कैसी भरनी।
0: ठीक है, भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: नमस्कार सर।
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम सुनार चंपतपुर तहसील औला जिला बरेली से।
0: नेकी कर दरिया में डाल, क्या कहना चाहेंगे नेकी कर दरिया में डाल के विषय में?
1: कहना चाहूंगा किसी के साथ अगर नेकी कर रहे हो तो उसको कहना नहीं चाहिए और उसे दरिया में डाल देना चाहिए।
0: मतलब नेकी करते जाना चाहिए, उसके मतलब उसका जो फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना? और नेकी करने वाला जो है उसके लिए खुदा देख रहा है, भगवान देख रहा है, वो ऊपर वाला देख रहा है। उस नेकी का फल वो ऊपर वाला देगा, बंदा नहीं दे सकता।
1: जी सर।
0: तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: सर फिल्म का नाम है मरजावा और गीत के बोल हैं बहुत आई गई यादें मगर तुम नहीं आए।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर विजय पाल यादव ललुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ विजय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। ये बताइए, आज की आपको विषय पता है? आज का
1: विषय है सर, मोती कल दरिया में डाल।
0: हाँ जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
1: इस पर ये कहना चाहेंगे, अगर सभी लोग यही सोच कर नेकी नहीं करेंगे तो सब उसका काम कैसे चलेगा?
0: हाँ, समाज में बड़ा अजीब रहेगा माहौल।
1: जी, हम नेकी हमको सभी के साथ में करनी चाहिए, फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। फिलहाल कोई अगर परेशानी में है उसके साथ में जितना हो सके
0: अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर देना चाहिए।
1: जी सर,
0: आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: जी सर, कोई अपने हिसाब से सुनवा दीजिए, अपनी पसंद का।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं जिला बरेली थाना मेरगंज ग्राम इमामबाड़े के पास से अल्ताफ हुसैन अंसारी बात कर रहे हूँ।
0: अल्ताफ भाई, आज का विषय आपको मालूम है?
1: जी, नेकी का
0: दरिया में डाल।
1: दरिया में डाल,
0: क्या कहना चाहिए?
1: सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो हम किसी इंसान के साथ अगर नेकी की कोई बात करते हैं, कोई अच्छाई की बात करते हैं, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं मानता और ना ही कोई उसका मान सम्मान करते। इसलिए बेहतर यही है कि किसी के साथ नेकी करने से क्या फायदा, खुद को समझाने में बेहतर है।
0: वैसे नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी कर दरिया में डाल का मतलब यही है कि नेकी करते जाओ। हाँ, उसका रिजल्ट मिले ना मिले, कोई फल मिले ना मिले, ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है, भगवान देख रहा है।
1: सही बात है। तो कैसे कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। जैसा हम अपने अनुसार अगर कोई काम करते हैं तो अच्छे काम करने की इच्छा, मतलब जो जागरूक होना चाहिए। बाकी सामने वाला माने या ना माने, हमें अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए।
0: यही ऊपर वाले का फरमान है।
1: जी जी
0: हाँ। तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: जमाने के देखे हैं रंगे हजार, प्यार से कोई को बेहतर नहीं।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपका पसंद का गीत।

0: हेलो,
1: हेलो
0: आपकी बात आकाशवाणी के
1: जी
0: साथ।
1: सर।
0: आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं सत्येंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, ग्राम चनेटी जिला बरेली उत्तर प्रदेश।
0: नेकी कर दरिया में डाल, इस विषय पर क्या कहना
1: पहले
0: चाहेंगे आप?
1: सर नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब तो यही हुआ कि हम जो नेक कर्म करते हैं उनके बारे में हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि हमने कितने अच्छे कर्म कर दिए, हमने इसकी ये सेवा कर दी, हमने उसकी ये सेवा कर दी, लेकिन जो काम करते जाए उसे भूलते जाए। ईश्वर सब देखता है और उन अच्छे कर्मों का फल, उस नेकी का फल हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त होता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा ये बताइए, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: सर याराना फिल्म का सुना दीजिए, तेरे जैसा यार कहाँ।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: दिल से दिल की दूरी न होती, दिल से दिल की दूरी न होती, काश हमारे बीच कोई मजबूरी न होती। आपसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं तमन्ना पूरी न होती। नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं सुल्तान मजा बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: आज का विषय मालूम है आप?
1: जी सर, नेकी का दरिया में डाल।
0: हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: सर विषय तो आपसे बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज मतलब नेकी करते हैं किसी के साथ में, तो हमें वो भूल जाना चाहिए। उसका फल जो है वो मालिक देता है, ऊपर वाला। जैसे कि हम चिड़ियों के लिए पानी रखें, दाना रखें, तो ये किसी को न बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं। इसका सिला जो है वो अल्लाह पाक आपको देगा जरूर।
0: हाँ, इस गर्मी में पंछियों के लिए पानी रखें, जानवरों के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: पानी पिलाएं, है ना। जो
1: जी जी
0: बेजुबान लोग हैं, जो हमसे बात नहीं कर सकते, है ना, जो हम अपनी
1: जी
0: बात कह
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: सकते, उनके लिए हमें पानी की व्यवस्था, खाने की
1: तो
0: व्यवस्था,
1: हम
0: छाए
1: ये ना
0: की
1: सोचे,
0: व्यवस्था करनी चाहिए।
1: ये ना सोचे कि इनके लिए हम दे रहे हैं तो ये हमें कुछ लौट के देंगे। इसका सिला हमको जो है अल्लाह पाक देगा। हमें
0: बिल्कुल
1: ये सोचना
0: सही,
1: चाहिए ये काम।
0: बिल्कुल सही कहा है
1: इसीलिए
0: आपने।
1: कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल।
0: आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना।
0: ठीक है, भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का
1: थैंक
0: ये
1: यू सर।
0: गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मौलाना नेवसी हाजीपुरा जिला बरेली से तराना अंसारी बोल रही हूँ।
0: तराना अंसारी
1: जी।
0: अच्छा तराना जी, कैसी हैं आप?
1: सर हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: ईद कैसी रही?
1: ईद तो बहुत अच्छी रही।
0: आज आपको विषय पता है?
1: जी सर, नेकी कर दरिया में डाल।
0: हाँ तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: सर मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी की मदद करो तो उससे मतलब बाद में कहो मत कि हमने आपकी मदद की।
0: मतलब और साथ ही मदद करते जाओ और फल की इच्छा मत करो।
1: जी हाँ,
0: किसी से बदलने की उम्मीद मत करो, क्योंकि नेकी है ना वो बेकार हो जाती है। फिर ऊपर वाला
1: मदद करते हैं तो हम उससे
0: नेकी का सिला दे नहीं पाता फिर।

0: सर।
1: ऊपर वाला नेकी का सिला ऊपर वाला देता है, बंदा नहीं देता नीचे का, धरती का। आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
0: सर फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गाने के बोले मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

इस कार्यक्रम में कुछ संदेश भी हमारे पास आए हैं। ये लिखते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, बहुत अच्छा मुहावरा है, हमें ऐसे मुहावरों से सीख लेनी चाहिए। हम कभी भी किसी नेक कार्य के लिए अपना कार्य करते हैं तो उस पर कोई हमारा एहसान नहीं होता और ना ही एहसान मानना चाहिए। किसी की सहायता करते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं, बदले में हम इसका बहुत बड़ा एहसानमंद हो जाएं। भला करो भूल जाओ, इसके बदले में हमें उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये लिखने वाले हैं सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। नेकी कर दरिया में डाल एक हिंदी कहावत है, मतलब भलाई करके उसका एहसान मत जताओ, बदले की उम्मीद मत रखो, नेकी करके भूल जाओ जैसे दरिया में डाल दी हो। सीख यही है, सच्ची मानवता निस्वार्थ होती है, दिखावे या तारीफ के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए मदद करो, किया हुआ भला खुद ही लौट कर आता है। ये लिखने वाले हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, ग्राम चरौंदा बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौंदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। और ये हैं लिखने वाले, नेकी कर दरिया में डालिए कहावत जो पुराने ज़माने के लोगों में लागू होती थी, आजकल नेकी करने वाला इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलता। जो लोग नेकी का कसम करते हैं, काम करते हैं, वो भी उम्मीद रखते हैं कि कोई उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करने, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो अपने आप को कोसने लगते हैं। मेरी नज़र में नेकी करने वाला लोग भगवान के भेजे गए फरिश्ते जैसे होते हैं, इसलिए जब किसी के मदद करो तो किसी पर एहसान मत करो। परवरदिगार आपके हर काम का हिसाब रखता है। और ये लिखने वाले हैं गगन सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। आप लिखते हैं, बुरे वक्त में हमारे साथ किसी ने नेकी का काम या अन्य किसी भी प्रकार से हमारी मदद की है, वो इंसान नहीं देवता है। ता उम्र इस इंसान के एहसानमंद रहेंगे। जिंदगी में कभी उस नेक इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो उस का एहसान का बदला ब्याज समेत चुका देंगे। नेकी का एहसान इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग मतलबी भी होते हैं, एहसान या नेकी को तुरंत भूल जाते हैं। ये लिखने वाले हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। और आप हैं तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से, शाहरुख खान, फैलिन खान, अरहम बाबू और किशवा नूर। ये लिखते हैं, नेकी करने के कई रास्ते होते हैं, किसी की परेशानी समझना, उसकी मदद करना, चाहे वो पैसे से हो या फिर खाना खिलाना, पानी पिलाना, गरीबों की मदद करना, किसी को सही रास्ता बताना भी नेकी के है। अगर आप अपने रास्ते में पड़े पत्थर को हटाना नेकी है। भलाई करो और उसे भूल जाओ, इस कहावत के अनुसार जब आप किसी के साथ कोई अच्छा काम या उपकार करते हैं तो बदले में किसी भी तरह की उम्मीद, तारीफ या एहसान जताने की भावना नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार दरिया में फेंकी हुई वस्तु का कोई हिसाब नहीं रहता, उसी तरह अपनी नेकी को भी इस भाव के साथ करना चाहिए कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करनी चाहिए और लोगों के बीच अपना प्यार सम्मान बनाए रखना चाहिए। ये हमारे लिखने वाले हैं तिगड़ी कस्बा से। अब ये लिखते हैं, कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। तो हमारा भी आदाब, हमें ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है, इस कार्यक्रम को हम ज़रूर सुनते हैं। आज का विषय, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने के दो रूप होते हैं, अगर आप पर कोई नेकी करे तो आप हमेशा हमेशा याद रखो, उस चेहरे को हमेशा याद रखो जिसने कभी आप पर कोई नेकी या एहसान किया, और आप अगर किसी पर नेकी करो तो तुरंत दरिया में डालकर भूल जाओ।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

और कभी उसको मत दोहराओ। यही नेकी करने का तरीका है। आज अगर कोई किसी पर नेकी कर दे तो हर जगह जताता भरता है। अगर किसी को अपनी नेकी जताना हो तो नेकी ही ना करे। ये है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी। और ये हैं लिखने वाले हमारे प्रवीण चौहान। हमें ज़रूरतमंदों की को भोजन, कपड़े और आवश्यक चीज़ों के लिए हमेशा सहायता करनी चाहिए। जब भी कोई मुझे ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखाई देता है, मैं तुरंत उसकी कुछ ना कुछ मदद करता हूँ। हमारे घर के पास बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत से ज़रूरतमंद लोग मदद के लिए आस लगाए बैठे रहते हैं। हम वहाँ जाकर उनकी मदद करते हैं। हम हमारे मोहल्ले में गायों, कुत्तों और पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। और ये मैसेज है हमारे पास अनोखे लाल का, किसी के साथ भलाइयाँ नहीं करना चाहिए। अनोखे लाल मौर्य, कटरा चांद का, पुराना शहर बरेली से।

ये संदेश हमारे पास आए हैं और बीआई धाकड़ का आपकी बात आकाशवाणी के साथ एक दूसरे की मदद मित्र वर्ग हमेशा करते आए हैं। निस्वार्थ भाव से ही की गई भलाई ही नेकी कहलाती है। आवश्यकता पड़ने पर दोस्ती रिश्तों गुदारों की मदद हम करते आए हैं या लेते आए हैं बिना किसी स्वार्थ के। इसलिए कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल और भलाई करके भूल जाओ। ये भेरूलाल बख्तरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से और ये हैं एडवोकेट बारिश अली खान संजय नगर ऐशवाग लखनऊ से। आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा नमस्कार सलाम, तुम हमारा भी सलाम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी की मदद करें तो उनसे एक बात की उम्मीद न रखें कि वो भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसी उम्मीद करना आपके किए धरे पर पानी फिर देगी। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। मैं ऐसा ही करता हूँ।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था नेकी कर दरिया में डाल। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz।

5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। 5:30 बजे हेलो बरेली का आप आनंद लेंगे। 6 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा और 6:30 बजे आप सुनेंगे किसान वाणी। 7 बजे ग्राम जगत में क्षेत्र संकलित कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 7:31 पर आप सुनेंगे अनुरोध गीत। 8 बजे से लखनऊ के कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। आइए अब आपको कल की सभा में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दें। प्रातः 10:55 पर मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से।

8:15 पर आप सुनेंगे अंकुर कार्यक्रम, बच्चों का प्रिय कार्यक्रम। 10:05 पर आपकी पसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 10:55 पर दिल्ली से रिले करेंगे मन की बात कार्यक्रम। इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन आप सुनेंगे। 12:00 आपका पत्र मिला कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें सहयोगी रहेंगे गजेंद्र यादव, प्रस्तुति होगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। 1:00 से आप सुनेंगे अनुरोध गीत।

और 5:45 पर श्रोता मंच में श्री इमरान शेख से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत सुनवाएंगे। 6 बजे युववाणी का समय रहेगा।

सात बजे सुनेंगे सेहतनामा कार्यक्रम। 7:31 पर जनमंच कार्यक्रम में परिचर्चा होगी, तंबाकू मुक्त समाज आज की आवश्यकता। प्रतिभागी होंगे अमन गुप्ता, श्री संदीप यादव। आठ बजे मुझे याद है, जरा

जरा कार्यक्रम में माया देवी से ब्रजेश तिवारी की बातचीत सुनवाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। प्रस्तुत है भजन संध्या।

इस भजन दीपांजलि का आरंभ हम भगवान गणपति की आराधना से प्रारंभ करते हैं। भक्त प्रार्थना करता है चरणों में बैठ करके।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो बरेली।

0: कार्यक्रम हेलो बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार रोचना मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। और आइए सुनते हैं आज सबसे फर्स्ट नंबर के कॉलर कौन से हैं हमारे साथ। हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, क्या नाम है आपका
1: जी। मैं जिला बदायूं कस्बा तातागंज से मोहम्मद आशिक बात कर रहा हूँ
0: जी। क्या करते हैं आप?
1: बस पढ़ाई करते हैं।
0: कौन से स्टैंडर्ड में हैं आप?
1: 3, 4 क्लास में।
0: अच्छा, तो आप काफी छोटे हैं
1: जी
0: जी। तो ये बताइए कि आप रेडियो सुनते हैं हमारा? कौन
1: जी सुनते हैं।
0: सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: हेलो बरेली कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगता है।
0: और इसके अलावा?
1: इसके अलावा भी यू बाड़ी कार्यक्रम और किसान बाड़ी कार्यक्रम और बहुत से कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं।
0: हमारे कार्यक्रमों की सबसे खास बात क्या है?
1: आपके कार्यक्रमों में सबसे खास बात यह है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हमें समझने के लिए मिलता है और हमें बहुत सी गलतियां हमें हमारे लिए पता चलती हैं।
0: जी बिल्कुल, और आगे आप लोग उस गलती को ना करें, जागरूक रहें जी, ये पूरी पूरी हमारी कोशिश रहती है
1: जी।
0: जी। तो आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: आने वाला तो सुनेंगे, ये ईद का त्योहार, ये खुशियों का त्योहार
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो बरेली, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और आइए अब सुनते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर। हेलो बरेली।
1: मैं मैडम ग्राम अरोका पोस्ट किलर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला, वर्तमान में जबलपुर MP से बात कर रहा हूँ, अशोक सिंह।
0: जी जी अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बरेली में। जी, और
1: धन्यवाद मैडम जी। कैसी हैं आप, आकाशवाणी टीम बरेली की?
0: जी, आकाशवाणी परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए, आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है, कौन सी फिल्म का
1: जी,
0: गीत आप सुनेंगे?
1: कुमार सानू आशा भोसले की आवाज में, सलामी मूवी का।
0: जी
1: तेरा क्या देखते हो,
0: जी
1: दिल में उतर के देखो ना।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र और सुन रहे हैं हेलो बरेली। तो अब आइए सुनते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो बरेली, हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: जी मुन्ना सिंह जी, ये बताइए आज कार्यक्रम में फोन लगाया है आपने, कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: फिल्म है मेरे लाल
0: जी,
1: गायिका लता मंगेशकर, गाने के बोल है पायल की झलकार रखते रखते।
0: जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं अब अगले कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो बरेली
1: हेलो बरेली
0: जी, क्या नाम है आपका
1: जी। मैं उर्सी जावेद बात कर रही हूँ फरुखाबाद से
0: जी। क्या करती हैं वो?
1: जी, मैं फैशन डिजाइनर हूँ।
0: फैशन डिजाइनर है। तो आप ये बताइए कि आप श्रोताओं को बताएं किस तरीके से इसकी पढ़ाई में क्या क्या होता है।

0: है ये बताएं थोड़ा आप श्रोताओं को, फैशन
1: किसके बारे में?
0: डिजाइनिंग के बारे में आप।
1: अच्छा, तो एक्चुअल में मैं फैशन डिजाइनर हूँ, और
0: जी
1: ये फैशन डिजाइनिंग जो होती है ये ड्रेस से रिलेटेड होती है। इसको पहले सीखना पड़ता है, इससे रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है,
0: जी
1: और फिर पूरी पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएट अगर करना होता है तो उसके बारे में करते हैंगे, और
0: जी
1: फिर बाद में यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के बाद में इसकी ट्रेनिंग ली जाती है, फिर फॉर्म भरा जाता है कंपनी में या फिर सेंटर वगैरह में, फिर
0: जी
1: हमें इसकी जॉब मिलती है।
0: जी तो आप कंटिन्यू जो फैशन डिजाइनर आप हैं, तो कंटिन्यू वगैरह जो ये मॉडलिंग वगैरह होती है तो आप शो करती होंगी, आपको बुलाया भी जाता होगा।
1: मैं लोगों को सिलेक्ट भी करती हूँ कपड़े के कौन से डिजाइन अच्छे आपके ऊपर लगेंगे, और मैं भी ये डिजाइन फॉलो करती हूँ। अगर मुझे भी मॉडलिंग करना होता है तो मैं इसको भी फॉलो करती हूँ।
0: जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। ये बताइए आज कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगी?
1: जी, मैं मूवी का नाम है हम साथ साथ, और गाने के बोल हैं छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया।
0: जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम की आखिरी कॉल, आइए सुनते हैं कौन है हमारे साथ लिसनर। हेलो बरेली
1: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका
1: जी। अल्ताफ हुसैन
0: जी, क्या करते हैं अल्ताफ जी आप?
1: बस एकदम ठीक ठाक हैं, बस ऐसे ही बैठे हैं, अभी छुट्टियों में मजा ले रहे हैं
0: जी, तो ये बताइए, आज आपने कार्यक्रम में फोन लगाया है तो
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: आज मैं बंजारे मूवी फिल्म का गाना सुनूंगा,
0: जी
1: मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबाद है।
0: जी हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और इसी के साथ हेलो बरेली कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों कहते हैं कि धूप कितनी भी तेज हो, अपने शहर की मिट्टी की खुशबू कभी फीकी नहीं पड़ती। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। और देखो, आज का कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त वैभव। तो कैसे हैं श्रोताओ, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भाई बरेली में आप गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। तो देखो भाई, हमारी गर्मी तो चल ही रही है और इस बीच देखो गर्मी तो रहेगी, है ना। अब देखो, जैसे सर्दी में सर्दी रहती है वैसे गर्मी में गर्मी रहेगी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बरेली हमारा एक ऐसी जगह पर है जहां पर शायद इतनी गर्मी नहीं पड़ती जितना और जगह पड़ती है। पड़ती तो है, अब देखिए हमारे यूपी में देख लीजिए, बांदा जिला जो है वो सबसे ज्यादा गर्म जिला बना हुआ है अभी तक, लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक वहां टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हमारे 42-43 या फिर 37-38 के बीच ही रह रहा है। तो श्रोताओ, लेकिन इस गर्मी में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी के इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो बाहर निकलकर काम करते हैं, जैसे रिक्शा चालक हो गए, मजदूर हो गए, दुकानदार हो गए और सड़क पर काम करने वाले लोग हो गए, या फिर हमारे गिग वर्कर्स हो गए जो हमारी डिलीवरी का काम करते हैं। तो कोशिश करें कि उनके लिए अगर वो कभी आपके डोर स्टेप पर आए तो अच्छे से बात करें, साथ ही में पशुओं का भी ध्यान रखें। श्रोताओ, और बात करते हैं, और भी कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये वाणी कार्यक्रम है। अब वैसे देखें श्रोताओं, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो लेकिन जब हम बरेली का नाम लेते हैं ना तो एक अलग ही तस्वीर जो है वो आंखों के सामने उभरती है। व्यस्त बाजार, लोगों की चहल पहल, सड़क किनारे चाय की दुकानें और हर गली में एक कहानी। हमारा बरेली एक ऐसा शहर है जो पुराने संस्कारों और नई सोच को साथ लेकर चलता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली और यहाँ के लोगों का व्यवहार इस शहर को खास बनाता है। लेकिन दोस्तों, इन दिनों तो देखिए हम सभी को मस्त रहना है, अपना ध्यान रखना है और यूं ही आप कार्यक्रम युववाणी सुनते रहिए, मुझसे वादा करते रहिए, है ना। तो अभी कार्यक्रम में और कुछ भी बात करेंगे, लेकिन जब बात हो रही है तो कुछ पंक्तियों के साथ हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं, धूप चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, हौसलों की छांव बड़ी गहरी होती है, मौसम बदलते रहते हैं, जिंदगी में मुस्कान रखने वालों की दुनिया सुनहरी होती है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत और कार्यक्रम युववाणी में आपको लेकर लौटते हैं कुछ नया और नया।

दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं युववाणी। दोस्तों, आज एक खास दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पटेटो, यानी कि आलू दिवस। सुनने में थोड़ा अलग सा लग सकता है, लेकिन आलू केवल एक सब्जी नहीं होती, बल्कि करोड़ों लोगों के भोजन, पोषण और आजीविका का आधार होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, आलू दुनिया की सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। आलू की उत्पत्ति देखें तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में मानी जाती है। जी हाँ, ये भारत की फसल नहीं है, इसे भारत लेकर आया गया था। सैकड़ों वर्ष पहले वहां के लोगों ने इसकी खेती शुरू करी। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया और आजकल हर देश के भोजन का हिस्सा बन चुका है। भारत में भी एक आलू विशेष स्थान है। चाहे आलू के पराठे हों, समोसे हों, चाट हो, दम आलू हो या सब्जी, आलू हर रसोई का प्रिय साथी है। आलू की खासियत यह है कि कई प्रकार की मिट्टी और मौसम में भी उग सकता है। यही कारण है इसे खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आलू सिर्फ पेट भरने का साधन है, लेकिन सच इससे कहीं अधिक है। आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित मात्रा में आलू का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं किसानों की। श्रोताओं, देखिए, कुछ मेहनती किसान जो हमारे हैं, जो मेहनती किसान हैं, वो काम करते हैं जिनके बदौलत ही हमारी थाली में भोजन आ पाता है। देखिए, भारत दुनिया के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान इसकी खेती करके अपने परिवार का

पालन पोषण करते हैं। आलू की खेती से रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होते हैं। खेती से लेकर भंडारण, परिवहन और खाद प्रसंस्करण तक लाखों लोग इससे जुड़े रहते हैं। आपको कुछ फैक्ट हम बताते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में आलू की हजारों किस्में पाई जाती हैं। आलू लगभग 125 से अधिक देशों में उगाया जाता है। अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली शुरुआती फसलों में भी आलू ही शामिल है। कई देशों में आलू मुख्य भोजन का हिस्सा है। आलू से चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च और कई अन्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अब देखें तो विश्व स्तर पर बढ़ती जनसंख्या और बदलती जलवायु के बीच खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में आलू जैसी फसलें महत्वपूर्ण होती हैं, कम समय में उग जाती हैं और बहुत ज्यादा उपज देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टिकाऊ कृषि प्रणालियों में आलू की भूमिका भविष्य में और महत्वपूर्ण हो सकती है। तो प्रिय श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस केवल एक फसल का उत्सव नहीं है, यह उन किसानों के सम्मान का दिन है जो दिन रात मेहनत करके हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। आइए और इस समय हम ये प्रण भी लेते हैं कि हम भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। तो भाई, इस आलू दिवस पर आलू जरूर खाइए और सुनते रहिए कार्यक्रम युवाणी।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: आपकी चाय, EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
5: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
5: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
6: ना भाई ना।
7: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
10: श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आकाशवाणी बरेली के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युववाणी, और युववाणी में हम आपको प्रतिदिन हर एक युवरा से रूबरू कराते हैं जो कि अपने क्षेत्र में कुछ बढ़िया कर रहे हैं, उनसे हम जान सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनसे उनका परिचय जानना चाहूंगा, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए।
11: तो मेरा नाम कुशागर राजपूत और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ और मैं तो ग्रेट खली का स्टूडेंट हूँ, और अभी मैं फाइट्स वगैरह कर रहा हूँ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया।
10: अरे वाह, तो बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा सा हमें अलग जानने को मिला, क्योंकि अक्सर हम भी बात करते हैं युवाओं से, तो इस क्षेत्र में हमें अक्सर कम ही लोग देखने को मिलते हैं। वैसे हाँ, करते हैं लोग, लेकिन आपसे बात होकर हमें अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा बताइए कुशाग्र जी, कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे मन हुआ इधर आए?
11: तो जो मेरा इंटरेस्ट था, सबसे पहली जो मैंने इसकी फाइट जो WWE की देखी थी, वो लगभग 2011-12 में देखी थी, द ग्रेट खली सर की, जो कि अभी मेरे गुरु हैं, वही मेरे को सिखाते हैं।
10: अच्छा।
11: तो उनकी फाइट देखी थी, उस टाइम पे मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था। जो ये लोग लड़ते हैं रिंग में, तो जो केज फाइट करते हैं अलग अलग तरह से, ब्लड मैच करते हैं, तो मेरे को बहुत मजा आता था देखने में। और उस टाइम पे मैं छोटा था, तो ज्वाइन तो नहीं कर सकता था, पर मैं बहुत ज्यादा देखता था, इसका बहुत फैन था। और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, जैसे तो लगभग 17 साल की एज में, उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और मैं रेसलिंग के लिए आ गया यहाँ पर।
10: अच्छा।
11: और अभी मैं रेसलिंग करता हूँ।
10: तो जैसे कि आपने बताया ग्रेट खली के, आप खली बहुत रहे हैं, उनको देखा भी है, आपने कहा कि उनसे सीखते हैं, तो कैसे सीख रहे हैं, कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा हमें?
11: हाँ, देखिए यहाँ पर जो ग्रेट खली सर की अकेडमी है, वहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहीं पर खली सर आते हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं रोज। हाँ।
10: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो बढ़िया बात है, जान के अच्छा लगा। तो थोड़ा सा बताइए और कहाँ कहाँ आपने कुछ मैचेस करे हैं और कहाँ आप तक गए हैं, थोड़ा सा हमें बताएंगे अपने बारे में?
11: देखिए, पहली जो जब मैं लड़ने के लिए रेडी हो गया था, तो जो मेरी पहली फाइट हुई थी, वो हुई थी हमारे बरेली के उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड में यूपी में। तो वहां से मेरी पहली फाइट, मतलब जर्नी स्टार्ट हुई, जो बड़े इवेंट्स या मेगा शोज होते हैं। उसके बाद तो मैंने लगभग बहुत सारे मेगा इवेंट्स करे। अभी फिलहाल में मैं अभी करके आया हूँ हिमाचल में, जो कि इसी लास्ट 15 को था, और बस अब ट्रेवल करते हैं और फाइट्स करते हैं, घूमते हैं, बस इंजॉय करते हैं, मजा आता है।
10: तो देखिए, रेसलिंग जो एक ऐसा क्षेत्र है, अक्सर हम इसको देखते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि जो टीवी पर काफी ब्रूटल चीजें भी दिखाई जाती हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
11: हाँ, जी, जी,
10: तो ये क्या सच में ऐसा होता है या कहाँ हद तक होता है, थोड़ा सा हमें बताएंगे?
11: जी, तो देखिए, ये जो चीजें जो जितनी भी दिखती हैं, जो रेसलर्स रिंग में परफॉर्मेंस करते हैं, वो एकदम रियल होती हैं, असली होती हैं, और जो ब्लड मैच खेलते हैं, वो भी एकदम रियल होता है। उसको जो ब्लड मैच जो लोग करते हैं, जो ब्रूटल चीजें दिखाई जाती हैं, उसको बहुत ज्यादा पैसा पे किया जाता है रेसलर्स से, और ये चीजें सारी बातें रियल है।
10: अच्छा, तो ये तो अब जैसे आप इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो आपके माता पिता ने नहीं कहा कि मतलब ये थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र है?

0: पे खतरा भी थोड़ा सा रहेगा, तो कैसे मनाए आपने उन्हें?
1: हाँ, जब मैंने बताया था घर पे सबसे पहले तो थोड़ा मम्मी को टेंशन हुई थी कि वहां पे लड़ाइयाँ करते हैं लोग, मारते हैं। तो
0: हाँ
1: बाकी जब मैंने पापा को बताया, पापा ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता तो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहां पर मैं शायद ही होता। सबसे
0: जी
1: बड़ा फैमिली का ही सपोर्ट होता है, तो फिलहाल फैमिली अभी
0: बिल्कुल
1: मेरे को अच्छे से सपोर्ट कर रही है और पहले भी फैमिली का सपोर्ट
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे थे। तो
1: था।
0: कुशाग्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखो, रेसलिंग के लिए फिटनेस और डाइट बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, आपको फिट रहना होता है,
1: देखो,
0: तो कैसे ध्यान रखते हैं थोड़ा सा बताइए, और क्या क्या सावधानियां आप बरतते हैं इसके लिए?
1: सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट में जो भी हो गया, अंडे, ऑमलेट या ओट्स वगैरह, दलिया, इन सारी चीजों, मतलब ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो जाए तो अच्छा रहता है मॉर्निंग में। उसके बाद में बस दोपहर में जो है चिकन हो गया दोपहर में, और उसके बाद में शाम को भी मैं वैसे 2 टाइम चिकन लेता हूँ। अभी मैं नॉन वेज हूँ तो यही
0: अच्छा
1: खाना पड़ता है। हम लोगों को अपनी डाइट मेंटेन रखनी पड़ती है, तो कभी
0: जी।
1: भी कोई भी इवेंट आ सकता है, कभी भी कोई फाइट करनी पड़ सकती है, तो रेडी रहना पड़ता है।
0: तो कुशाग्र जी, जैसे आपने ये तो बताया, तो आप कुछ अपने अभी कुछ बताना चाहेंगे जो आपने कुछ बढ़िया प्रतियोगिता करी, कोई ऐसा आप बताना चाहें जो आपका यादगार रहा हो मैच हमारे श्रोताओं को, या कोई ऐसी चीज जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो इस सफर में?
1: सबसे यादगार जो मेरा मैच रहा था वो इसी 2026 के जनवरी के लास्ट में हुआ था, जो कि हुआ
0: जी
1: था धनबाद में।
0: जी
1: वहां पर मैं जीता भी था, मेरी टैग टीम जो है, टैग टीम मैच था मेरा, वहां पर मैं और मेरा पार्टनर जीते थे। वहां पर बहुत मजा आया था हम लोगों को, वहां की पब्लिक बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब क्राउड बढ़िया था और
0: हाँ
1: बहुत ही इंजॉय किया था वहां पर। वहां फाइट
0: अच्छा
1: करके बहुत मजा आया था, वो यादगार पल था मेरा।
0: अच्छा तो अच्छा लगा जान के। तो आप कुशाग्र सिर्फ इसी की ओर हैं, या पढ़ाई भी अपनी जारी रखे हुए हैं अभी, या सिर्फ इसी ओर अपने आप को झोंक दिया है आपने?
1: सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई ना करूं, पूरा ही ड्रॉप आउट कर दूं, पर फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा 12th कर लेता हूं। तो इस बार मैंने 10th के एग्जाम दिए 2 साल का गैप देने के बाद।
0: अच्छा, तो
1: हाँ, फिलहाल पास हो गया एक रात पहले ही पढ़ के, वो बात अलग है।
0: कैसे? अच्छा, तो अभी आपने क्या सोच रखा, मतलब भविष्य में आपने अपना क्या प्लान बना रखा है, कि आपको इसी और जाना है या फिर और कुछ भी आपको करना है?
1: अभी तो मेरे को रेसलिंग में ही आगे बढ़ना है, बस पढ़ाई कंटिन्यू है, पढ़ाई साथ साथ चल रही है और रेसलिंग में बस आगे बढ़ना है।
0: तो क्या इसमें कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या प्रतिनिधित्व होता है देश का, मतलब जैसे हम और स्पोर्ट्स में देखते हैं तो इंडिया के अक्सर टीम्स होती हैं, तो क्या इसमें भी रहता है, थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा
1: ये और स्पोर्ट्स की तरह नहीं है, ये एक प्राइवेट गेम है। तो ये, हाँ, तो ये प्राइवेट गेम है, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि नेशनल या इंटरनेशनल कुछ भी खेलना होता है, मतलब सब लोग एक साथ मिलके ही खेलते हैं। जैसे
0: अच्छा
1: कोई बाहर का रेसलर, अगर आपकी एक फाइट है तो बाहर का रेसलर आके भी वो खेल सकता है आपके साथ, मतलब आप समझ रहे हो, थोड़ा सा ये एक प्राइवेट गेम है।
0: जी जी समझ पा रहे हैं। तो अच्छा, चलिए, बहुत आपसे बात हो गई, और चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, तो मान लो आपको अभी सुनकर किसी और का मन है, और वो भी चाहता है कि मैं भी रेसलिंग में अपना करियर बनाऊं और आगे आऊं, और खास तौर से बरेली के आसपास के युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर शायद इतने संसाधन नहीं होते हैं जितने बाहर और मिल जाए, तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, और अगर कोई आना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट करे, दोनों चीजें बताइए।
1: अगर कोई भी युवा स्टार्ट करना चाहता है प्रो रेसलिंग की जर्नी अपनी, तो बस यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। आपको लगभग सीखने में, प्रो रेसलिंग सीखने में 1 से 1.5 साल का समय लगता है। उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं हफ्ते भर में, महीने भर में चले जाते हैं, पर अगर आप में सच में जुनून है, आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस लगे रहना है, बाकी तो सब आसान है।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कुशाग्र आपसे बात करके। चलते
1: जी
0: चलते और
1: थैंक
0: कुछ
1: यू।
0: कहना चाहें आप?
1: बस आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं, अगर देश के युवा सुन रहे हैं मेरी बात, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ करते रहिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। धन्यवाद।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा कुशाग्र, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं हफ्ते भर में, महीने भर में चले जाते हैं, पर अगर आप में सच में जुनून है, आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस लगे रहना है, बाकी तो सब आसान है।
1: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा कुशाग्र आपसे बात करके। चलते
0: जी
1: चलते और कुछ
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहें आप?
0: बस आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं अगर देश के युवा सुन रहे हैं मेरी बात, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ करते रहिए अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, आपसे बात करके अच्छा लगा कुशाग्र, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

तो दोस्तों देखिए, समय है ना, समय तो चल रहा है और कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। हम हर चीज़ से जीत सकते हैं लेकिन समय से नहीं जीत सकते। तो इस चलते समय के साथ हम भी चलते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कार्यक्रम में कुछ नया और नया लेकर। अब अपने दोस्त वैभव को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब किसान भैया बहनों को आपके भैया कृष्णपाल
1: और आपके भैया धारा की राम राम, राम। स्वागत करते हैं भैया बहनों हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी में। भैया बहनों हम कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी को सुनवाते रहते हैं, जैसा कि खेती बाड़ी पशुपालन और कृषि से संबंधित जानकारियां देते ही रहते हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल क्या है कृष्ण भैया?
0: भैया आज को सवाल है, हरी खाद के लिए बोए गए ढेंचा की पलटाई बुवाई के कितने दिन बाद कर देनी चाहिए? तो सवाल भैया बड़ा सटीक है, क्योंकि देखो अपने जो है अब धान की खेती में लगे हुए हैं, यानी धान की जो हमें पौध डालने हैं बाकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ किसान भैया उन्होंने पौध डाल भी दी है और बाकी जो भैया हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भैया हमें धान की पौध डालने हैं और अगले जो है अपने धान की खेती करने हैं। तो ऐसे में भैया जो हम ढेंचा है बाकी बो देते हैं, सनई लोबिया पटसन बाकी ले अपने खेतों में बो देते हैं, जिससे कि जो हमारी हरी खाद है वो मिल जाती है और जो फसल हम बोते हैं चाहे वो सनई होए ढेंचा होए पटसन होए उसको खेत में ही पलट देते हैं, बाकी बाद में बाकी हरी खाद तैयार हो जाती है। तो जो सवाल पर आपको मंथन करने हैं और जाको जवाब हम तलाश कर रखेंगे कार्यक्रम के आखिर में, धारा भैया जाको जवाब अपने भैया बहनों को बता पाऊंगे, है ना भैया?
1: बिल्कुल बताएंगे। और हम तो भैया अपने भैया बहनों से कार्यक्रम में जो जानकारियाँ उपस्थित कराते रहते हैं उनके बारे में बताएंगे, लेकिन आज दिन है शनिवार का और शनिवार वाले दिन हम पहुँचते हैं भैया बहनों के गाँव में। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें और करनी है, जैसे कि नौतपा चल रहा है ना?
0: हाँ बिल्कुल भैया, नौतपा चल रहा हो और देखो लू खूब तेज चली रही है, ऐसे में भैया जो गर्मी है बहुत खूब तेज पड़ रही है और जाके साथ साथ भैया जो खेती बाड़ी के काम है वे तो हमें करने ही हैं, क्योंकि जब खेती बाड़ी के जो काम हैं उनको भाई समय से ना निपटा पाएंगे तो कहीं ना कहीं भैया बात से हमें प्रभाव जो हमारी फसल पर पड़ेगा और उत्पादन लेन में जो हम असफल होंगे। तो उत्पादन लेन में असफल ना हो, अच्छी पैदावार मिले जाके लिए हमें ध्यान रखने हैं। और जाके ध्यान रखने के लिए भैया एक महत्वपूर्ण ये भी है जो आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो भूमि सुधार के जो उपाय हैं उनको भी अपने खेतों में ज़रूर अपनाने हैं। एक तो जो हरी खाद वाली बात है उसको भी अपने खेतों में उगाने हैं, जाके साथ साथ जो कंपोस्ट गोबर की खाद है बाको डालने हैं, और दूसरी बात ये है कि भैया जो वृक्षारोपण है उसको भी हमें करने हैं, क्योंकि आपने देखी जो ढलान वाली भूमि होती है और अक्सर बरसात के समय में आकर ये जो है कट जाती है, तो इस बात को हमें ध्यान रखने हैं। और जाके संग संग भैया जो मल्चिंग है, जैसे अब धूप की बात चल रही है कि भैया जो हम पानी लगाते हैं तो ऐसे में जो है नमी ना रह पाती है, तो मल्चिंग अगर हम कर देंगे तो भी हमारी जो है नमी बनी रहेगी।
1: तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है किसान भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन भैया बहनों ऐसा है, अब समय हुआ है कि हमने गाँव सैदपुर में पहुँच कर किसान भैया बहनों से जो बातचीत की है, आइए आपको सुनवा देते हैं।

0: खेत
1: अपनी मृदा परीक्षण करा
2: प्रकार की फसलें खड़ी हुई हैं। यहाँ सब्जी वाली फसलों
1: के लिए सुनवाई को उपयोग करें, फसल चक्र अपनाएं और जल संरक्षण करके अपनी मृदा परीक्षण कराए के संतुलित उर्वरक को प्रयोग करते हुए भैया वृक्षारोपण जरूर करें, जिससे कि हम आगे आने वाले समय में अपनी खेती की जमीन को सुरक्षित करके और बचा सकें। और देखो कृष्ण भैया, आज दिन है शनिवार को और आज के दिन तो हम आप पहुंचे थे अपने भैया बहनन के गांव में। तो किस गांव में पहुंच रहे हैं, आओ हम आपके लिए सुनवा दे रहे हैं।

0: विकासखंड 11 तहसील सदर जिला बरेली के गांव सैदपुर में। और सैदपुर बरेली आकाशवाणी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव है। और इस गांव में हमने देखा है कि हरियाली बहुत अच्छी है, बाग भी कई हैं, खेतों में कई प्रकार की फसलें खड़ी हुई हैं। यहाँ सब्जी वाली फसलों में देखा जाए विशेषकर तो घुया हमें नजर आ रही है, जिसे अरबी हम बोलते हैं। साथ ही साथ झामे में तुरई और लौकी भी यहाँ लगी हुई हैं।
1: टमाटर
0: तो यहाँ टमाटर भी हैं और कई प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जिनको देख करके मन आकर्षित हो रहा है। और यही एक किसान भाई जो अपने खेत में लगे हैं, जान लेते हैं आपसे आपका नाम।
1: तुलाराम।
0: तुलाराम जी, ये बताइएगा कि आज हम आपके इस खेत में खड़े हैं, ये किस जगह का, किस गांव का खेत है?
1: सैदपुर
0: जी। तो आपकी उम्र क्या हो चुकी है?
1: उम्र हमारी 40 साल हो गए।
0: 40 साल की आपकी उम्र है, खेती बाड़ी आप कर रहे हैं। कितने समय से आपने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया?
1: बचपन से ही कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कुछ पढ़ाई लिखाई की?
1: पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, खेती में लगे रहे।
0: क्या हुआ कि आपके समय में स्कूल तो बहुत सारे शुरू हो गए थे?
1: स्कूल तो बहुत सारे थे मगर वो माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, पैसे मिलता गरीब हालत थी।
0: देखिये दोस्त, माँ बाप का नहीं होता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छा काम करे, है नहीं? खैर कोई बात नहीं, समय बीत गया, अब आपने पूरी तरह से खेतीबाड़ी की है।
1: तो
0: इस समय आपके खेतों में कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं?
1: अरबी है, लौकी है, टमाटर है, गुलाबी है, नर्सरी भी है।
0: अरे वाह, तो इतनी सारी चीजें आपने कर रखी हैं इस खेत में। गुलाब, नर्सरी में आपने और भी पौधे बताए हैं, घुया तो ही है, हम देख रहे हैं,
1: लौकी है, टमाटर है।
0: जी जी जी, तो ये बताइएगा कि ये सब काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी?
1: बहुत मेहनत करती है, जैसे घूर डालना पड़ता है, डीपी डालना पड़ती है, माल दवाइयां लगाने पड़ती हैं।
0: जी, तब जाकर के कहीं अच्छा उत्पादन मिलता है,
1: तब अच्छा फसल होता है।
0: जी, और उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई मौसम में गड़बड़ी आ जाए,
1: मौसम में गड़बड़ी आ जाती है तो दवाई लगाने पड़ती है।
0: जी जी, चलिए अच्छी बात है कि आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हमें इस अरबी के बारे में बताइएगा कि ये जो आपने अरबी लगा रखी है, ये कितने दिन पहले लगाई थी?
1: ये 3 महीने हो गए इसको।
0: अच्छा, और
1: अब ये एक बार खुद गई।
0: अच्छा, कोई खास प्रजाति इसकी?
1: प्रजाति एक मूड़ा आता है, उसमें बड़ा सा होता है, वो बढ़िया लगता है वैसे,
0: वो लगाई है। शुरुआत से बताइएगा कि इसमें आपने कैसे करके तैयारी की थी, क्या बीज कैसे करके लेके आए थे?
1: बीज हमने लगाया इसमें,
0: जो
1: उन्हें लग जाती है।
0: जी जी,
1: है घर में पड़ी हुई होती है, बीज के लिए डाल लेते हैं, घर में पड़ पड़े हो जाती है, फिर खेत में लगा देते हैं, फिर उसमें खेत में लगा दिए, पानी लगा दिया
0: जी,
1: साथ में देसी घोड़ो डाल दिया, डीपी डाल दी उसमें, सब मान पोटास सब कुछ डाल दे
0: जी,
1: तभी फसल बढ़िया होती है।
0: तो इसके लिए निराई गुड़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है?
1: हाँ, निराई, 3 निराई लगाने पड़ती है इसमें।
0: पानी कितना लगाना पड़ता है?
1: पानी तो जो जमीन सूख, जमीन के हिसाब से देख के ही लगाना पड़ता है, कितनी नमी है, कितनी ज्यादा खुश्की भी होना चाहिए।
0: जी,
1: खुश्की रहेगी तो फसल तैयार नहीं होगी।
0: अच्छा, ये हमने ये देखा है कि जब इसकी जड़ पड़ जाती है, घुया अरबी बन जाती है मोटी, वो तो बिकती बिकती, लेकिन इसके पत्ते भी काम में आते हैं?
1: पत्ते भी कब बिकते हैं?
0: अच्छा, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं खाने में
1: पत्ते, उसके पतौरे बनते हैं, साग बहुत बढ़िया लगता है।
0: जी, तो इससे आप कितने खुदाई ले लेते हो, कितनी बार इसमें?
1: इसकी खुदाई 3 होती है, 2 खुदाई तो बेच लेते हैं, 1 खुदाई को बाद में छोड़ देते हैं, वो बीज बना लेते हैं।
0: जी,
1: है तो बीज हमेशा के लिए चाहिए, फिर अगले सालों चाहिए।
0: जी जी, तो इस प्रकार से आप घुया का अच्छा उत्पादन ले रहे हो। अच्छा, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है?
1: गर्मी बहुत, गर्मी में फसल कम हो रही है।
0: जी,
1: तपन ज्यादा हो रही है, तापमान बहुत ऊपर चल रहा है।
0: जी, कहते भी है कि इस समय 9 तपा चल रहा है।
1: हाँ,
0: 9 तपा में बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है कि
1: बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, अब हो तो काम करने पड़ते हैं इसमें।
0: जी,
1: दवाइयों की ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है।
0: एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि हाथ में ये बीड़ी है,
1: बीड़ी
0: है नहीं, अब आपने बीड़ी छिपा ली है,
1: हाँ।
0: क्या ये स्वास्थ्य के लिए?
1: स्वास्थ्य के लिए नहीं है, हाथ हानिकारक।
0: तो पीनी नहीं चाहिए?
1: हाँ, पीनी ना चाहिए।
0: जी जी,
1: अब वो मानते नहीं, आदत पड़ जाती है, तो बचपन से वो माना नहीं जाता थी।
0: जी जी, अच्छा ये बताइए, ये आदत किसी भी गलत काम की, भाई जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, इसकी कैसे करके आदत पड़ जाती है?
1: ये साथ में बढ़ जाती है, साथ में

0: लोग उनको बैठ दो, चारे लोग पियो भाई, पियो पियो ना, तो उसमें आशा बन जाती है।
1: अच्छा तो
0: आप प्रेमियों बैठ जाते हैं, आप उसमें बैठ जाते हैं, तो चार लोग बैठेंगे।
1: वैसे है तो खतरनाक चीज है।
0: हाँ हाँ खतरनाक,
1: कई प्रकार के रोग इससे हो जाते हैं,
0: कई प्रकार से रोग जाते हैं, कुछ रोग कट भी जाता है, लोगों गैस की बीमारी बनती है। तो जब गैस की बीमारी बनती है तो लोग बीड़ी तंबाकू पी लेते हैं तो गैस खत्म हो जाती है।
1: अच्छा,
0: डॉक्टर पास जाए गैस की
1: वैसे पीनी नहीं चाहिए।
0: हाँ वैसे पीना चाहिए। अब जब वो आदमी को दुख पड़ता है तो कुछ ना कुछ करेगा, नशा पत्ता करेगा, तो वो गैस कट गई तो वो सही हो गया।
1: जी जी जी
0: ऐसा है उसमें। वैसे तो हानिकारक है, सभी नशा हानिकारक है।
1: चलिए अच्छी बात है, तुलाराम जी आपसे बातचीत हुई है, आप अच्छा खेती बाड़ी कर रहे हैं, है नी, और अपना अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सैदपुर में खेती बाड़ी का काम तो हो ही रहा है, किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि पतंग उड़ाने वाला ये धागा जिसे मंजा बोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत हमने करते हुए लोगों को देखा है, किस तरीके से दौड़ भाग करके ये अपना काम करते हैं। इसी संबंध में आइए बातचीत कर लेते हैं एक मांजा बनाने वाले कारीगर साहब से। आपका शुभ नाम क्या है?
2: मेरा नाम इस्लाम है सर।
1: जी इस्लाम जी, आज हम जिस जगह हैं, ये कौन सा गांव है?
2: ये सैदपुर हॉकिंस आता
1: है। जी, और आप यहीं के रहने वाले हैं?
2: जी
1: जी। देखिए हमने देखा है कि यहाँ के किसान भाई खेतीबाड़ी में तो अपना काम कर ही रहे हैं।
2: जी,
1: कई प्रकार की यहाँ फसलें लगी हुई हैं, सबसे ज्यादा सब्जी वाली फसलें हमने यहाँ देखी हुई हैं, साथ ही साथ नर्सरी भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन यही हमने देखा है कि यहाँ कई लोग आप पतंग उड़ाने वाला ये धागा जिसे माजा कहते हैं वो बन रहा है, तो ये माजा जो है वो आप कब से बनाना शुरू कर दिए हैं?
2: करीब 10 साल से बना रहे हैं।
1: करीब 10 साल से आप माजा बना रहे हैं। अच्छा, तो ये माजा किस किस काम में आता है? वैसे
2: सिर्फ पतंग उड़ती है,
1: सिर्फ पतंग उड़ाने
2: की। जी,
1: वैसे भी बरेली की पतंग और माजा बहुत मशहूर है।
2: हाँ, बरेली में ही तैयार होता
1: है। जी, बरेली में ही तैयार होता है। इसको बनाने में क्या क्या काम करने पड़ते हैं आपको?
2: कुछ नहीं, सिर्फ चावल और खरिया लगती है बस।
1: जी,
2: सूख जाता है, बाकी जो रंग बनाना होता है रंग पड़ता है।
1: जी, विशेषकर धागे से ही तो बनता ही है।
2: जी, कॉटन धागा
1: जी,
2: जो आसानी से टूट जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको, ये धागा है
1: जी,
2: ये आसानी से टूट जाता है। जैसे चाइना होता है, हमारी गर्दन पाया ये।
1: हाँ हाँ, ये भी हमने सुना है कि जो चाइना वाला जो है माजा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है लोगों के हाथ में।
2: गर्दन पे आसानी से टूट जाएगा ये अपना कॉटन मांजा है।
1: हाँ,
2: और खरिया से बनता है, सिर्फ रंग पड़ जाता है, जो रंग बनाना है हमें, सुरख है, हरा है, वो रंग डाला, उसके बाद सुताई।
1: जी जी जी, तो एक दिन में कितना बना लेते हैं?
2: ऐसी एक दर्जन एक आदमी बनाता है।
1: एक दर्जन एक आदमी बना लेता है, तो इस एक दर्जन को बनाने में लगभग कितना खर्च आता होगा?
2: ऐसी करीब हमारी मजदूरी 500 रुपए पड़ जाती है। ये है, बाकी होलसेलरों को देते हैं बाहर, वो बेच लेते हैं अपने मुनासिब दामों पे।
1: जी जी, जी। हाँ, मतलब ये है कि आप बनाते हो और फिर जो है बाहर मजदूरी चला जाता है।
2: जी,
1: मतलब आपकी मेहनत का काम
2: जी
1: वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपसे अगर कोई लेना चाहे, जैसे पतंग उड़ाने वाले बहुत शौकीन है।
2: जी, तो आते हैं
1: ले
2: जाते हैं, जैसे आप आ गए और भी लोग आते हैं घूमने वाले, यहीं भी यहाँ पे भी ले जाते हैं। अगस्त है, मकर संक्रांति है, इन त्योहारों पे कंधिया आंठों पे ले जाते हैं।
1: जी,
2: लोग
1: जी,
2: ले जाते हैं रक्षाबंधन पे।
1: जी जी जी,
2: ले जाते रहते हैं।
1: देखिए यहाँ लोग अपना खेतीबाड़ी काम का काम करके जो है वो अपना मेहनत कर रहे हैं, और
2: जी,
1: आप जो है मेहनत माजे में कर रहे हो, इससे अपना अच्छा काम आपका चल रहा है। और कहते हैं कि नौकरी से अच्छा ही है कि अपना काम, तो एक प्रकार से आपका अपना काम है।
2: जी जी, अपनी ही है।
1: जी,
2: मैंने आपको बताया आसानी से टूट जाता।
1: जी जी जी,
2: ये कोई जानवर उनवर भी कभी ये नीचे तन हुआ है हमारा, यहाँ से निकलता तो वो भी तोड़ता चला जाता।
1: अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार से नुकसान भी हो जाता है।
2: बाकी
1: कितने समय, वैसे कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में भी?
2: बस अब तैयार है, 12 बजे तक हम तैयार कर देते हैं। दोपहर का टाइम, अभी मौसम सही, थोड़ा जल्दी, बड़ा दिन है तो जल्दी निपट जा रहे हैं। जाड़ों में थोड़ा 3-4 बज जाते हैं, तो अभी दिन काफी बड़ा है।
1: देखिए मौसम की बात जब आपने की है तो ये भी जान लेते हैं। देखिए इस समय तो आप बाग में खड़े हुए, छाया है
2: जी जी,
1: और इसमें बना रहे हैं। गर्मी का भी एक इस समय बहुत ज्यादा समय चल रहा है।
2: जी,
1: नौ तपा जिन्हें बोलते हैं वो भी चल रहे हैं।
2: घुटन उटन होती है, बहुत गर्मी लगती है। अब तो आज तो बहुत अच्छा दिन है, हवा हवा चल रही है। बाकी आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने सभी इंडियन आवाम से के चाइना का प्रयोग ना करें।
1: जी जी जी,
2: ये हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी खतरनाक
1: है। जी, आपका संदेश।

0: लोगों के लिए पहुंचेगा।
1: और कानून की ज्यादा से ज्यादा सहायता करें इसमें, ये है, अपनी भी सुरक्षा करें, अपने आप से दूसरों की भी सुरक्षा
0: जी
1: करें।
0: जी अच्छा, आप हमारा चैनल आकाशवाणी बरेली
1: जी
0: सुनते हैं?
1: जी सुनते हैं, बहुत बचपन से सुनते हैं, रेडियो पे आज बजाया नहीं है, ये बराबर में ये आकाशवाणी ही बजाते हैं हमारे नर्सरी वाले
0: जी, जो शंकर भाई हैं
1: जी, शंकर भैया, इनका तो
0: बहुत पुराने श्रोता है,
1: 6 बजे से ही लग जाता है, शुरू होता है जी,
0: जी जी जी, तो आप भी सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं,
1: सब यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई लगा दिया।
0: चलिए आज हम आपकी पसंद का भी गाना आपके लिए सुनवाएंगे।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: चलिए साहब, आज आपने माजा बनाने के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि कौन सा माजा खतरनाक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सैतपुर हॉकिंस गांव में खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से सभी कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि नर्सरी का कारोबार यहाँ कर रहे हैं, नर्सरी का काम करने वाले जो किसान भाई हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम?
2: हरिओम यादव।
0: हरिओम जी, आज हम जिस जगह हैं, ये कौन सी जगह है?
2: ये सैतपुर हॉकिंस जुटता है
0: जी, तो आप यही के निवासी हैं
2: जी।
0: तो ये नर्सरी का काम आप कितने दिनों से कर रहे हैं?
2: हमें करीबन 10 साल हो गए।
0: 10 सालों से नर्सरी का काम कर रहे हैं
2: जी।
0: उम्र लगभग क्या हो चुकी है?
2: उम्र हमारी 50 हो चुकी है,
0: लगभग 50 साल की उम्र। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए।
2: पढ़ाई लिखाई नहीं करी,
0: नहीं करी। खेती बाड़ी के काम में ज्यादा फायदा आपको नजर आया या फिर ये नर्सरी के काम में ज्यादा फायदा?
2: नर्सरी में ज्यादा फायदा है,
0: लेकिन नर्सरी में तो हर समय लगे रहना पड़ता है, कोई भी समय,
2: कोई भी समय, सब समय लगना ही पड़ता है इसमें
0: जी। आपकी नर्सरी में किस किस प्रकार के पौधे हैं?
2: पौधे तो बहुत किस्म के होते हैं, फिलहाल अभी तो सीजनल है, जैसे जेट प्लांट है, कोरियोक्सिस है, कुल्फा है, ग्लेडिया है, पेटोनिया होती है सर्दी में
0: जी,
2: क्लोरोफाइटम है, कोलियस है, जेट प्लांट है,
0: अच्छा
2: ऐसे ही सारे आइटम होते हैं, बहुत आइटम होते हैं, गेंदा है, गुलाब है, डेलिया है
0: जी जी। तो हमें जो थोड़ा सीजनल का मतलब समझाइए, सीजनल कौन कौन से, क्योंकि सीजन देखिए, जाड़ा हुआ, गर्मी हुई, बरसात हुई, हमारे हिसाब से ये सीजन होगी, आपके हिसाब से सीजनल कौन कौन सा पौधा होगा?
2: हमारे हिसाब से अगस्त में चालू होता है सीजन और जनवरी तक चलता है, वो होता है जाड़ों का सीजन
0: जी। तो इस सीजन के समय में आपके जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
2: जाड़ों में पेटोनिया, डेंटस, बर्बीना, गजेनिया, करंडोला
0: जी,
2: केल आदि बहुत पौधे होते हैं।
0: तो ये सारे पौधों की तैयारी आप किस तरीके से करते हैं?
2: हम पॉली हाउस में पहले बीज बनाते हैं, बीज बना के पॉली हाउस में बीज डालते हैं, फिर उसकी पौध तैयार करते हैं, पौध तैयार करके फिर थैली में शिफ्ट करते हैं बाहर।
0: क्या बीज आप बाहर से लेके आते हैं या अपना भी तैयार कर लेते हैं?
2: अपना तैयार नहीं होता है, पूना से आता है,
0: पूना से बीज आता है फिर इसमें जाकर के किस तरीके?
2: हाँ, विदेशी बीज होते हैं सारे।
0: तो ये किस तरीके से बीज डालते हैं?
2: बीज जैसे कोकोपीट वगैरह मिला के बैट बना के उसमें डालते हैं, उसमें डाल के उससे पौध बनती है, पौध बनने के बाद फिर थैली भरा के फिर उसमें शिफ्ट करते हैं।
0: कितने दिन में ये तैयार हो जाता है?
2: ये करीबन 1 महीने में पौध तैयार होती है, पौध थैली में लगाने के बाद 1-2 महीने में पौधा तैयार हो जाता है
0: जी। बात अगर बिक्री की करें तो ये बिक्री किस तरीके से होती है?
2: बिक्री यहाँ तो ट्रांसपोर्ट वो मार्केट के हिसाब से भरा जाता है, थोक में भरा जाता है माल, यहाँ बाहर जाता है,
0: बाहर चला जाता है, यहाँ लोकल भी लोग लेते हैं?
2: लोकल लेते हैं, लोकल इतना नहीं जा पाता है, बहुत मंडी, बहुत बड़ी मंडी है बरेली में, बरेली में ज्यादा काम होता है इसका, इसलिए बरेली में खपत नहीं है इसकी।
0: तो यहाँ से आपको कितनी दूरी पर ले जाना पड़ता है?
2: राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सब में जाता है
0: जी। तो ये जो पौधे हैं गुलाब और गेंदा, अगर इनकी नर्सरी आप तैयार करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं?
2: गेंदे की पौध डालते हैं, और गुलाब जो है इंग्लिश वाला वो मंगाते हैं पूना से, पूना से, कलकत्ता से, बेंगलोर से आता है
0: जी। तो बहुत मेहनत का काम है।
2: हाँ, मेहनत तो है,
0: कोई भी समय हो इसमें लगा रहना पड़ता है। मेहनत के साथ साथ आमदनी भी देखी जाती है, तो किस प्रकार से आमदनी हो जाती है?
2: आमदनी क्या है, ये तो महंगाई बहुत हो गई है, तो गुजारा चल रहा है ऐसे ही, जितनी इतनी इनकम नहीं है फिलहाल
0: जी,
2: पहले थी अब नहीं है।
0: मौसम बदलता रहता है,
2: मौसम की मार पड़ जाती है, कभी कभी बरसात हो जाती है तो नुकसान हो जाता है,
0: तो उससे फिर कैसे करके बचाव करते हैं?
2: उससे वो यही है कि दवाई वाई लगाते हैं, कीटनाशक वगैरह दवाई लगाते हैं बचाने के लिए।
0: इस समय गर्मी का समय है, 25 मई से लेकर के 2 जून तक नौतपा चल रहे हैं,
2: नौतपा चल रहे हैं,
0: तो इस नौतपा में बहुत भीषण गर्मी हो जाती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तेज धूप और फिर मौसम बदला, फिर बरसात, तो इस समय क्या सावधानी रखी जाती है?
2: इस समय सावधानी चाहिए, पानी बहुत लगाना पड़ता है, सुबह शाम दोनों टाइम लगाना पड़ता है पानी
0: जी जी जी जी।
2: हाँ,
0: कुल मिलाकर के आपके हिसाब से अच्छा कारोबार है?
2: हाँ, बढ़िया कारोबार है
0: जी। तो हरिओम जी, आज आपने नर्सरी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बातें बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम को इसी गाँव सैदपुर।

0: धारा भैया देखो, अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में किसानों के साथ। और आज को हमारा सफल रहो जिला बरेली के विकासखंड क्यारा के गांव सैदपुर में। प्रतिभागी है तुलाराम, सीताराम, हरिओम और इस्लाम। कार्यक्रम की प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति सहयोग आपके भैया धारा सिंह और कृष्णपाल को।
1: भैया बहनों, अगर आपके लिए हमारो आज को कार्यक्रम किसानवाणी गांव में अगर पसंद आओ हो और ये मन में उम्मीद जग रही हो और ये आशा कर रहे हो कि हम आपके गांव पहुँचें और आपके गांव के हालचाल, आपकी खेतीबाड़ी, पशुपालन से जुड़ी हुई जानकारी लेकर के और किसान भाइयों तक पहुँचाएँ, तो फिर देर ना करते हुए हमारे कार्यक्रम का पता लिख लीजिए और लिख भेजिए एक पत्र जिससे कि हम आपके गांव पहुंच सकें। हमारे कार्यक्रम को पता है, कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली और पिन कोड है 243001।
0: और भैया पत्र लिखते समय इस बात को ध्यान रखें कि पत्र में आने जाने को रास्ता और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें, जिससे जो हमारे आकाशवाणी की टीम है वो आपके गांव तक आसानी से पहुंच सके और जान सके आपके खेतीबाड़ी के अनुभव और साथ ही साथ गांव विकास की बात है।
1: कृष्णा भैया, हमने अपने भैया बहनों से जब कार्यक्रम में बातचीत की थी तो हमने ये भी वादा किया था कि उनकी पसंद का कोई लोकगीत भी सुनवाएंगे, तो देर ना करते हुए उनकी पसंद का एक मधुर लोकगीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल भैया, नेकी और पूछ पूछ।

0: को सुनने के लिए सोशल मीडिया पर भी हमारे भैया बहनों ने जो फरमाइश भेजी थी। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र आनंद, सनोज अमन, केशव यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य, और ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। और जे फरमाइश हमें भेजी थी कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही, स्वाति और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: और भैया इसी लोकगीत को सुनना चाहा था इस्लाम लालू सागर और उनके चचा नासिर नूर ने। और अब अधिक समय भी नहीं बचा है, आज के कार्यक्रम की नसीहत और मौसम की जानकारी भी हम अपने भैया बहनों को दे देते हैं।
0: बिल्कुल भैया, हम अपने भैया बहनों को बता दे रहे हैं आगामी 24 घंटा को मौसम को हाल। आज रात में गरज के साथ आंधी पानी की उम्मीद जताई गई है। वहीं पूरब दक्षिण पूरब दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने को अनुमान भी लगाया गया है। और आज रात में न्यूनतम जो तापमान रहने की उम्मीद है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें भैया कल के दिन के मौसम की, तो कल दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं कल दोपहर को गरज के साथ आंधी पानी की भी संभावना व्यक्त करी गई है और हवा जो है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से चलने की उम्मीद व्यक्त करी गई है। वहीं आर्द्रता 62% रहने की उम्मीद जताई गई है। तो जो तो हो मौसम को हाल जो कि हमको मिलो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की मौसम विज्ञान वेधशाला से।
1: और अब आज की नसीहत में भूमि सुधार के लिए किसान भाई अपने खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें।
0: और धारा भैया अब चलने की बेला हल्के हल्के आ रही है, लेकिन आपको ध्यान हो कि कार्यक्रम के शुरू में हमने अपने भैया बहनों के समक्ष रखे हुए एक सवाल सवाल हो हरी खाद के लिए बोए गए ढेंचा की पलटाई कितने दिनों बाद कर देनी चाहिए।
1: तो इस सवाल का जवाब बहुत से भैया बहनों ने दिया है। हम आपको बता देते हैं कि 40 से 45 दिन के बीच में जब ढेंचा की लंबाई 1.5 से 2 फीट की हो जाए तब उसकी पलटाई कर देंगे और फिर अच्छी तरह से जुताई करने के बाद पानी भर देंगे तो हमारे खेतों में जो ढेंचा की हरी खाद के लिए हमने ढेंचा बोया था उसका पर्याप्त तो फायदा मिल सकेगा।
0: और धारा भैया अब कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया बहनों से लें विदा, लेकिन चलते चलते हम अपने भैया बहनों से कहेंगे कि देखो भैया धूप तेज है और लू भी चल रही है, ऐसे में अपने भैया गर्मी से लू से अपने किसान भैया बहन बचाव करें। फिलहाल अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारियों के साथ हम दोनों भैया फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम दोनों भैया को देव अनुमति। भैया बहनों
1: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए आप प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण भैया, जैसा कि कार्यक्रम ग्राम जगत में भी हम अपने भैया बहनों को महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहते हैं और कार्यक्रम में अनुभवी कृषकों को भी शामिल करते हैं, लेकिन आज की चर्चा के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आज की चर्चा है महिलाओं को आगे बढ़ने दें, तो इस संबंध में हम ही क्या कहें, सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि महिलाएं हमारे समाज, परिवार और राष्ट्र की प्रगति की महत्वपूर्ण आधारशिला है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार का नेतृत्व

0: और निर्णय लेने के अवसर हमें समान रूप से देने चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो परिवार को हमारा विकास है वो महिलाओं से ही है, क्योंकि जब महिला परिवार की होंगी शिक्षित और आत्मनिर्भर तो हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहेगी। जाके संग संग भैया शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित और जागरूक बनाते हैं। और जहां तक आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, तो जब महिलाएं रोजगार, व्यवसाय और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो परिवार की आय बढ़ता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
0: सामाजिक समरसता को बरकरार बनाए रखने के लिए भी महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलने चाहिए। समाज में भेदभाव को हटा देना चाहिए। समानता, सम्मान और न्याय की भावना विकसित करके ही महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है।
1: और महिलाओं को आगे बढ़ाने के अगर उपायों की बात करें तो जिसमें महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करें जाए, वहीं परिवार में बेटियों और बेटों के साथ साथ समान व्यवहार करो जाए, महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भागीदारी दी जाए, तो अगर ये उपाय हम करते हैं तो निश्चित है कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। और जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी धारा भैया, तो निश्चित है कि हमारो और हमारे परिवार को और परिवार के साथ साथ हमारे गांव और समाज के साथ साथ हमारे देश को विकास होगा।
0: बिल्कुल सही।
1: और धारा भैया देखो, अब अपनी बातचीत को यहीं रोक रहे हैं और अब अपने भैया बहनों को सुनवाई दे रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत जो आपने बातचीत करी है सफल कृषक श्री दयाराम जी से।
0: क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के दौरान आज हम पहुंचे हैं एक सब्जी उत्पादक के खेत पर। ये खेत विकास खंड 11 के अंतर्गत आता है और जो किसान भाई हैं, जान लेते हैं उनसे ही, आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम दयाराम है।
0: आपसे हमारी इस खेत पर जो बात हो रही है, ये बताओ कि आप इस खेत में हो और बहुत सारी सब्जियां हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी सब्जियां आपने लगाई हुई हैं?
2: इसमें सब्जी बैंगन भी लगा रखे हैं और तुरई भी अच्छी चल रही है और खीरा भी लगा रखे और उसमें शकलगंजी की पौध भी तैयार है, मूली भी लगा रखी है जो सीजन के हिसाब से चलती है।
0: अच्छा।
2: और ग्वार की वो भी लगा रखी है।
0: अच्छा,
2: तो ये कई सब्जी लगा रखी है। और
0: चलिए बहुत अच्छा है कि दयाराम आपने अपने इस खेत में कई प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं। हमने भी देखा है कि बैंगन भी अच्छी तरीके से फलीभूत हो रहे हैं। हाँ। तुरई भी है, लौकी भी है,
2: मिर्च भी है, चल रहा है
0: और धनिया भी है जो कि समय बहुत महंगा दिख रहा है। खैर ये बताइएगा कि इतनी सब्जियां जो आपने अपने इस खेत में लगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी जगह में भी है, लौकी और तुरई आपने काफी मात्रा में की हुई है, जो सब्जी वाली फसलें हैं वो अच्छी हमें देखने को लग रही हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं?
2: इसमें तो टाइम देने पड़ता है साहब, इसमें टाइम देने पड़ता है, इसकी फिर देखभाल करने पड़ती है, टाइम से दवाई भी छिड़कने लगाने पड़ती है और तभी मतलब इसका लाभ मिल पाता है।
0: जी अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी सब्जी वाली जो फसल होती है, किसी भी सब्जी का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके लिए बीज सही से मिल जाए,
2: उसमें बीज मिल जाए। ज्यादा मतलब बीज बहुत बड़ी हो जाती है तो वो बेकार हो जाता है। जैसे तुरई है, चल के आया बीज तो कुछ नहीं मिल पाएगा टाइम से।
0: हाँ।
2: और जो बीज बढ़िया मिल गया हाइब्रिड बीज तो उसमें जो है तैयारी जल्दी मिल जाता है उसका फायदा।
0: जी तो ये जो तुरई और लौकी है इस समय तो महंगी भी बिक रही है।
2: हाँ, वैसे महंगी का भी रेट मिला है, अब तो जो है इसमें सही है, ज्यादा भाव नहीं है।
0: अच्छा,
2: अभी तो 20 ही चल रहा है।
0: अच्छा, और जो आपने ग्वार लगाई हुई है, ये ग्वार आपने कब लगाई थी?
2: ये तो करीब 1-1.5 महीना पहले लगाई थी।
0: हाँ।
2: अब तो आने भी लगी है।
0: हाँ।
2: और ये तो 40-50 रुपए किलो निकल जाती है।
0: अच्छा, और जो बैगन लगाया है, ये
2: बैगन भी इसी रेट के मिल जाते हैं, 30-40 रुपए अच्छा खासा बैंगन भी मिल जाता है।
0: और धनिया का सीजन तो इस समय नहीं है?
2: धनिया का सीजन नहीं है, तब उसकी गोबर की खाद ज्यादा डाली है उसमें।
0: हाँ।
2: तब वो मतलब सही, गर्मी में वैसे कम बचता है, पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है और खाद का।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर भी ये महंगा बिक रहा होगा।
2: हाँ, हाँ, वैसे तो फुटकर में तो यही 120 चल रहा है, वैसे तो वहाँ 80 रुपए चल रहा है।
0: अच्छा अच्छा, आपने अपने इस खेत में जो ग्वार लगाई है, ये फली भी इस समय जो आ रही है, ये बताओ कि ये कितने खेत में और कितनी मात्रा में इसका बीज लगाना पड़ा था?
2: अब इसको तो कम से कम 1 बीघा में तो आधा किलो तो ग्वार चाहिए, जितना ही बिगड़े होगा उतना ही अब फल अच्छा आएगा।
0: अच्छा,
2: ना ग्वार का तो यही हिसाब होता है।
0: जी, तो उस तरीके से आपने फिर इसको बोया भी है?
2: उसको बोया, खाद मिलो के उसको बोया।
0: जी, खाद की व्यवस्था कहाँ से करते करते हैं?
2: खाद तो अपनी गाय भैंसों का इकट्ठा कर लेते हैं और कम भी हो तो किसी से मोल भी लेना पड़ जाए, पुरानी खाद जितनी होगी उतनी अच्छा ही होगी। हाँ, नई खाद नहीं पड़ती, उसमें कीड़ा लग जाता है।
0: अच्छा, और ये जो हम देख रहे हैं तुरई

0: और लौकी भी आपके यहाँ ये आ रही है इस समय, फूल भी है इस समय तुरई पे आया हुआ, ये सीजनल है या पूरे समय चलती है?
1: नहीं, ये तो अब जो लगाई है हमने तो जैसे एक महीना पहले लगा दी, तो ये आषाढ़ भर चलेगी, जून जुलाई तक।
0: अच्छा,
1: ये बरसात वाली लगाई है।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ बरसात वाली लगाई।
0: तो आपके कुछ खेत में तो ये जो है वो पूरे खेत में फैली हुई है?
1: हाँ।
0: और कुछ में आपने जो ये टाँड मचान बना रखा है?
1: वो इसलिए बना रखा है, जानवर वगैरह आते हैं तो देखा भारी मचान रहता है, बस तैयारी सब में कर रहे हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी यही जोत के शकलगंजी लगा देंगे 15 दिन बाद, उसका ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा।
0: तो कुल मिलाकर के आप जो अपना खेत किसी भी चीज से खाली नहीं रखते?
1: खाली नहीं रखते हैं, इधर खत्म हुआ 10-5 दिन के लिए, फिर उसमें इधर लगा दिया
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वैसे और क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है इन सब फसलों से सही उत्पादन मिल जाए? तो
1: सही उत्पादन मिल जाए तो इसमें यही है, आपको टाइम टाइम से खाद भी, डीएपी भी हम लोग लगाते हैं जब उसको पौधा चलने को टाइम होता है। डीएपी है, यूरिया है, 15-20 दिन बाद डीएपी लगा दी, वो लगा दी, फिर उसको शाम को ही ज्यादा कर पानी लगाना
0: जी,
1: दिन भर तरी रहती है गर्मी में।
0: अच्छा, और हाँ, ये जो मूली लगा रखी है आपने?
1: मूली भी लगा रखी है, तो उसको हमने ये दवाई लगाई उस पर छिड़काई, मगर एक कीड़ा नहीं लगा हुआ। उसको भी शाम को ही पानी लगाना, सुबह को पानी नुकसान देता है।
0: अच्छा, और ये बराबर में आपके पालक भी लगी हुई है?
1: पालक भी लगा दी है,
0: पालक भी
1: अच्छी चल रही है।
0: तो ये तो ये बताओ कि ये इतनी सारी चीजें आपने अपने इस खेत में लगाई हुई हैं, तो ये क्या सोच करके लगाई है?
1: हर एक तो चीज अपने स्तर को, अपनों को भी अच्छी मिलती है खाने पीने के लिए, दूसरे बाजार पर निर्भर रहा हो तो चीज महंगी भी मिलती है और शुद्ध नहीं मिलेगी। ये अपनी चीज खुद सफा जगह की बनी हुई है
0: जी जी,
1: तैयार करी हुई है।
0: कुल मिलाकर के इस बात का ध्यान रखते हो कि अपने लिए भी और लोगों के लिए भी सही सामान मिल सके
1: टाइम से
0: जी। लेकिन एक चीज देख रहे हैं आपने, सब चीजें ज्यादातर सब्जी लगी हुई है, लेकिन टमाटर नहीं लगाया है आपने?
1: टमाटर इस टाइम को सीजन नहीं है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब जो है टमाटर का फूल आ रहा है, मर रहा है, दो चार पेड़ लगा के देखे, मगर वो गर्मी में नहीं छुप पाए।
0: अच्छा,
1: अब जो वो आएगा 2 महीने बाद, तब सीजन आएगा टमाटर का
0: जी,
1: वो भी देसी लगाएंगे।
0: तो वैसे इस समय बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही है, इस गर्मी से जो है फसल मुरझा भी रही है, तो इसका असर फसलों पे ना पड़े, आपकी जो सब्जी वाली फसलें हैं ये सही सलामत रहें, तो पानी की क्या व्यवस्था रखते हो? किस समय
1: अब ऐसा है, तो पानी का तो जहाँ तक तहाँ शाम को पानी लगाओ, तो सुबह तक उसको रात भर तरी रहती है, दिन भर वो तरी रहती है, वो आपकी फसल मारी नहीं जाएगी।
0: अच्छा दयाराम, ये सब्जी वाली फसलें उगाने के अलावा कुछ पशु भी हैं?
1: हाँ, 4 भैंसे हैं, गाय भी हैं 2। इन जानवरों का अपना गोबर सब अपना इकट्ठा ही करते हैं, तैयारी करते हैं।
0: अच्छा, और वो फिर खाद के रूप में इस्तेमाल,
1: खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं।
0: चलिए साहब, दयाराम जी आज आपसे बहुत अच्छी बात हुई है, मन खुश ये हो गया कि आपने अपने इस खेत में कई प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं।
1: हाँ, खाने पीने के लिए भी हो जाती हैं, और फिर उससे फालतू हो तो बेच भी देते हैं
0: जी।
1: हाँ, यही है।
0: चलिए साहब, बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अच्छा, क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: तो किसान भैया बहनों, देखो अभी आपने सब्जी उत्पादक दयाराम यादव से भैया धारा सिंह की बातचीत को सुनो, बहुत ही अच्छी तरह से देसी खाद के इस्तेमाल करके सब्जी वाली जो फसलें हैं उनको उगा रहे हैं। हमें भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जैविक खेती करेंगे तो निश्चित है कि जो हमारी फसलें हैं वो शुद्ध होंगी, और जब शुद्ध फसलें होंगी उनको हम ग्रहण करेंगे, खाएंगे, तो निश्चित है कि भैया हमारा स्वास्थ्य भी अच्छो बनो रहेगा। और धारा भैया देखो, अब समय हो रहा हो गौने बजने को, तो भैया मन हो रहा है कि कोई मधुर लोकगीत सुन लो ये।
5: जी बिल्कुल, आइए आप सभी को सुनवा देते हैं डोरीलाल के मधुर स्वर में एक प्यारा सा लोकगीत, जिसके बोल हैं बरसाने वाली श्री राधा।
6: बरसा

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: इसी के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं पर संपन्न होता है। आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया धारा
3: और भैया कृष्णा को देवानमति, भैया बहनों राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। आइए, ये है आशीष यादव। पुत्र राम लड़ैते उर्फ छोटे निवासी ग्राम बालजीत नगला थाना कादर चौक जनपद बदायूं से यह 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंख नाक कान और

औसत, काले बाल और एक गहरा मजबूत जिस्म, काली पैंट और शर्ट पहने हैं। जिस किसी को मिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। और ये है रामचंद्र लाल पुत्र सुंदर राम, निवासी ग्राम राज बरौलिया, थाना उगैती, जनपद बदायूं से 21 अप्रैल 26 से लापता है। इनकी उम्र है लगभग 50 वर्ष, 5 फीट 3 इंच लंबाई है। एक गहरा मजबूत जिस्म है, रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, आँख नाक कान औसत है, काले बाल हैं और कान आधा कटा हुआ है। आसमानी पैंट और नीली शर्ट पहने हैं, पैरों में चप्पल पहने हैं। जिस किसी को मिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। और ये हैं शकील खां पुत्र अकील खां, निवासी ग्राम दवतेरा, थाना मिसौली, जनपद बदायूं से 14 अप्रैल से लापता है। लगभग आयु 25 वर्ष, 5 फीट 6 इंच लंबाई, रंग सांवला, चेहरा गोल, आँख कान नाक औसत, काले बाल, एक गहरा मजबूत जिस्म और ये काली पैंट, काली चेक की शर्ट, पैरों में हवाई चप्पल और हरा लोअर, सफ़ेद व मटीले रंग की लाइनों वाली टी शर्ट पहने हैं। इस किसी को मिले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्म

भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा, कहा लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026, हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक

जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट

0: समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि BEd प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में BEd प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहंग का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक स्वदेशी विकास है, प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत में हमने सबसे पहले लिया है फिल्म गुनाह का ये गीत और सुनने की फरमाइश आप सभी की है मौला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन।

जी प्रवीण बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, और ये हैं छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक से, राम प्रसाद शर्मा भाई, फजरुद्दीन जैबी, वंदना मनोरमा देवी, अर्णव, रीता, विनोद और घर के सभी लोग। और ये हैं जसपुर उत्तराखंड से रियाजत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाबाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आशिक। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म

कार्यक्रम का अगला गीत सुनने की फरमाइश की आप सभी ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और बिमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बिसलपुर, जिला पीलीभीत से। ये है नखासा रोड सेहत बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, सुहेल अंसारी, याकूब अंसारी, अनस मंसूरी, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि, मेघनाथ पाली, सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डल्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, अल्लाह आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म मैंने प्यार किया का गीत।

अभी आप सुन रहे थे स्वाति रिजवी की आवाज़ में गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हिमालय की गोद में, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम जीने की राह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला

0: ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की, तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा।

0: जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं।

0: हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह। जौहर महमूद इन गोवा ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का ये गाना है। मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत,

0: घराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, रवि का संगीत था। 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अनारकली फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी आपकी कसम। विविध भारती से यह है कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं

0: कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

रंगोली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के सभी श्रोताओं को दिलीप का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नू

23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले लगभग 3,500 जिंगल्स के लिए आवाज दी। क्रिकेट विश्व कप 1999 के दौरान भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए जोश ऑफ इंडिया गीत में भी उन्होंने गाया। उन्होंने संगीत में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। केके का कहना था कि गायक का चेहरा दिखने के बजाय उसका सुना जाना ज्यादा जरूरी है।

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो। तड़प तड़प

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

केके के चर्चित गानों की बात करें, शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना आंखों में तेरी काफी लोकप्रिय हुए। काइट्स का जिंदगी दो पल की, जन्नत का गाना जरा सा, गैंगस्टर का गाना तू ही मेरी शब है।

उनको 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

केके बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: के को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है। बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं उन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और वो केके में थी।

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में

भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में एक कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

0: लौट जाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।
1: नहीं है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
3: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
2: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
3: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
2: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
3: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
2: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
3: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
2: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो न ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
3: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री, त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाय।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राजहंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।